सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आप समझते होंगे कि भक्ति मार्ग में हमी को विरोध मिल रहा है आपस में, आप जैसे मन में कि हमारे सामने कोई भी भक्ति की ऊंची भूमिका पर जब चढ़ने के लिए होगा तो परिस्थितियां उसके विपरीत रखी जाती, माया रखती है पूरा जो। वो तो आप अपनी देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। अगर सबसे पूछो और वो कृपा करके बताएं, इसलिए नहीं बताए, कौन व्यर्थ में समय नष्ट करे, वर्तमान में भगवदानंद में डूबो। ऐसे नहीं होता, परमार्थ का जो पार्षद भगवत पार्षद पद है ऐसे हर जगह से उसको, तब वो जाके महावीर बनता है। सहित सहित बाढ़े भगति, प्रकृति का कोई भी वार उसे विचलित नहीं कर सकता। तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की, भगवान पुष्ट बना रहे उसे, मजबूत बना रहे। बिल्कुल सच्ची माने, एक शीशा इसे जरा सी कांच की गोली मारो पूरा ढेर हो जाएगा, एक शीशा उसे गोली मारो बंदूक से चला के तो भी नहीं टूटेगा, शीशा तो शीशा ही है, क्यों नहीं टूटा? बोले इसको पक्का किया गया है, गर्म ठंडा कर। तो अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता करते करते अंतःकरण को क्या बुलेट प्रूफ, हाँ इतना मजबूत कर दिया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी गोलियां चलने कोई फर्क नहीं, शांत। तब कहा जाता है महापुरुष है, विचलित नहीं हुआ, इतने प्रतिकूलताएं तिरस्कार अपमान पर विचलित नहीं हुआ। लाभालाभ परमार्थ के पथिक को देखना चाहिए कि प्राकृतिक लाभ और अलाभ में समान भाव रहे। कब रहेगा? जब लाभ समझोगे नाम जप को और हानि समझोगे नाम विस्मरण को, तब आपकी स्थिति होगी कि प्रकृति के लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानो बड़ी से बड़ी हानि हुई, नाम जप चल रहा है, भगवत आश्रय पुष्ट है, तो आपको भय नहीं होगा कि अब क्या होगा, सब हो जाएगा। सब बड़ा अलौकिक खेल उसका चलता है, आश्चर्य में आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया। एक एक बात आपकी सुन रहा है आपका आराध्य देव, एक एक सेकंड उसकी दृष्टि है आप पर, चिंता मत करो, हो सकता है एकदम हानि कर दे आपकी, जहां जहां सुख की आशाएं लगाए हुए हो बड़ी कृपा है। हाँ, वो सब हटा दिया, अब भी बड़ी कृपा है, अब तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि जिसकी चिंता थी सब हट गया। राधा राधा राधा राधा। बहिर्मुख पुरुषों का, विषयों का, मान सम्मान का सब कुछ सानिध्य प्राप्त है, और उपासक के हृदय में किंचन मात्र उसकी प्रति लाभ बुद्धि नहीं है, उसकी हानि हो जाने पर उसे कभी शोक नहीं होगा। श्रीपाद करे लाभालाभ, लाभ और हानि में तुम्हारे अंदर समान भाव आ जाए। कैसे आ जाएगा? प्रारंभ तो होगा ना, लाभ हुआ, अरे बड़ी कृपा, एक बार दर्शन करने गए सब काम बनना शुरू हो गया, ठीक है चले आओ। थोड़े दिन के बाद उससे ज्यादा गिरना शुरू हुआ, अब क्या हो गया, वहां पावर नहीं रहा या यहां कुछ गड़बड़ी हो गई? कुछ गड़बड़ी की बात नहीं, अब तुम्हें पावरवान बनाया जा रहा है। आना भगवत मार्ग में चलना, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना, जो भागवतिक वृत्ति थी अगर लौकिक लाभ में फूल गए तो हानि में वो छोड़ दोगे भगवत मार्ग। वो करके देखा कोई लाभ नहीं, नहीं भाई नहीं, चूक मत करना। प्राकृतिक लाभ और हानि ये दोनों समान हो करना हमारे स्वामी का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनकी शरण में है तो वो हमारे जीवन में ये करते रहेंगे। कभी अचानक एकदम सम्मान तो कभी भारी अपमान, कभी बहुत लाभ एकदम हानि, अब क्या होगा? अगर ये प्रश्न उठा तो शरणागति में कलंक है। अरे हम जिनकी शरण में है वो अविनाशी है, उनका विधान मंगलमय, वही होगा जो परम मंगल है। जया जयोन्नति विपन्नमाना अपमानादि के श्रीपाद कह रहे हैं, कभी तुम्हारी जय हो सकती है, जो सोचा वो तत्काल हो गया, और कभी सालों मनाते रहे कुछ नहीं बना, पर आपकी भावना कहां है? जैसे आप मना रहे हैं प्रभु ये विकार हमारे मन से चला जाए, देखो आप सामर्थ्यवान हो, मुझे बहुत जलाया जा रहा है इस विकार के द्वारा, नाथ माया बहुत आकर्षित करती, मेरा बल काम नहीं करता, हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन धाम, हे सदगुरु, रो रहे हैं आप, साल भर हो गए कोई सुनवाई नहीं, अश्रद्धा मत करना। जो निष्काम होने से साल भर का लाभ था वो आपका है, वहां जमा है, चिंता मत करो। आपकी जलते जलते आप में ही ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि रोना धोना बंद हो जाएगा और आप उस भूमिका से ऊपर उठ जाएंगे। आपको लग रहा है काम तो वैसे ही है, नहीं, आपका काम बनता चला जा रहा है, हृदय की भूमिका पुष्ट होती चली जा रही है उस ताप से। ये हम अनुभव की बातें कह रहे हैं यहां की, हृदय की आपकी वो तब पता चलेगा जब आप उस ओहो ये तो प्रारंभ से ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और मुझे पुष्ट किया जा रहा था इस जलन के द्वारा, मैं तो समझ ही नहीं पाया, बाद में समझ में आया जब विधान का स्वरूप जागर। ओहो कितने कृपालु प्रभु हो, कितने मंगलमय हो। इसलिए कह रहे जय और पराजय दोनों में तुम्हारा समान भाव हो, संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें अपने प्रभु को लेकर संतुष्ट, भगवत स्मरण चल रहा है, भगवत आश्रित है। अगर हार भी होती तो हमारी जय ही होगी, जो जय का फल होगा वही हार का भी यहां फल होगा, ध्यान रखना। बहुत हिम्मत वाले बनो, बहुत साहसी बनो, ये परमार्थ को समझ लोगे तो तुम निराश नहीं होगे। साधन करते हुए साधन पक्ष का अहम और भगवत शरणागति कृपा भाव की आपका परिचय नहीं तो सीधे उत्तर आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर ये है कि जो कुछ साधन बन रहा है मुझे नीचे में तो सामर्थ्य नहीं, मेरे आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो लड़खड़ाओगे तो बचा लेंगे, ये विश्वास रखना। अहम करोगे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया, इतने माला, इतना पाठ, इतना इतना सब करने पर भी भगवान ने हमें नहीं बचाया। भाई जी ने कहा प्रधान कारण अहंकार। अगर अहंकार है तो फिर ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो करो सदा तिनकै रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। वास्तविक हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि इन महावीरों से लड़ सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के बहुत प्रचंड सेनापति है, पूरे त्रिभुवन को परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो शभीत आवा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो तो हम निश्चिंत हो जाओ, जैसे सबको प्राण प्रिय है ऐसे मुझे शरणागत प्रिय है, वही बचाते हैं वही। तो अपनी जय और पराजय में समान भाव तभी हो सकता है जब भाव प्रभु में लग गया है। ठीक है हम हार गए पर हम हैं प्रभु के, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो आप जीत गए, जो जीतने का फल था वही आ गया, आपकी शुद्ध शरणागति बढ़ती चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे विपन्न माना अपमान आदि के मान अपमान में तुम्हारी समान बुद्धि हो जाए, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मान अपमान यो सेवक जी महाराज ने भी कहा शत्रु मित्र समझानी मान मान अपमान सम दुख सुख लाभ। जब आपको कोई प्रणाम करे तो आप उसके पहले प्रणाम कर लो, शरीर स्वस्थ है तो पंचांग कर रहा है आप भी कर लो। अगर शरीर इस योग्य नहीं रह गया कि बार बार झुके तो मानसिक तत्काल उसके चरणों पर दृष्टि, नाथ अब ठगने वाले नहीं, प्रभु आप कुछ भी लीला करो, मेरे आराध्य देखो स्वामी इस शरीर रूपी मंदिर में आप विराजमान हो, हे राघव लाल कृपा करो। कभी ऐसा भाव ना पावे कि मैं पूज्य हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको भूल कर किसी व्यक्ति को देखूं कि मेरा वो पूजन कर रहा नाथ। कभी ऐसी अधम वृत्ति ना आवे, सदैव यही वृत्ति बनी रहे कि मैं सचराचर का सेवक हूं, स्वामी रूप से सचराचर है और मैं उसका सेवक हूं, स्वामी रूप भगवंत मेरे भगवान ही सब। तो मान अपमान व्यापेगा नहीं, तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंद्यताम। ऐसे धैर्यवान बनो कि तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम से कभी अलग ही ना हो। अगर आप मान अपमान में लाभान में जय पराजय में चित्त दोगे तो प्रभु को भूल जाओगे, तभी प्रभाव पड़ेगा। और प्रभु का अखंड स्मरण चल रहा है तो प्रभाव देखो, तुम किसी को मनाने की चेष्टा मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो, उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना ये भी यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फसाव फसाए हुए है, उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना इसके हृदय में प्रभु बैठे नाथ। आप तो जानते हैं हमारी स्थिति कि आपके चरणों के बल से ही है, प्रभु आप प्रसन्न होइए नाथ। आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग, प्रभु को भूलकर उस व्यक्ति को अगर मनाने की चेष्टा की तो फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना दृष्टि में आराध्य देव मानकर भावना होनी चाहिए, तभी क्षमता आती है। इसकी क्षमता तभी आती है, तभी हानि लाभ मान अपमान शत्रु मित्र सुख दुख में आपकी समान बुद्धि होगी। जब सम तत्व तो भगवत तत्व तो को आप देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे तो फंस जाएंगे। पकड़ लेना हमारी बात, ये अध्यात्म की गूढ़ वृत्ति है, अगर इसे नहीं पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये माया है, ये ऐसे जाल फेंकती है, इससे बचने के लिए ही सत्संग है। बड़े भाग पाइप सत्संगा तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। ये क्योंकि प्रयास करके उन्होंने अनुभव किया और आपको बता दिया, सामने व्यक्ति को रिझाने की जब जब चेष्टा की गई है तब तक असंतोष और क्रोध आया है। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीर अधिवशन, आप परास्त हो गए, इसका परिचय प्रभु को भूल गए। अगर भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवत दास्ता पुष्ट हो रही कि अब तो किसी काम का नहीं रहा नाथ, आप हारे नहीं, आप जीत गए, आप गिर नहीं रहे, आप चढ़ रहे हैं। उस समय आपको अनुभव नहीं होगा लेकिन परिणाम में आपको अनुभव होगा।

0: बहुत अमृत में बचा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान् नीचैः कृतान् कोटिशो, करोड़ करोड़ तुम्हें दुर्वचन बोले जाएं और नीच पुरुषों द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाए शास्त्रों प्रकार से, पर तुम्हें विचलित नहीं। दूसरे श्लोक में भी श्रीपाद, ये भागवतिक स्थिति है, ये संसारिक माया ग्रसित जीव इसको थोड़ी समझेंगे। जितना तुम सहते जाओगे उतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, ये सीढ़ी है, सच्ची मानिए। वो नहीं सहन कर रहा, गिरता चला जा रहा है, आप सहन कर रहे हो, ऊंचे उठते चले जा रहे हो, और सामने वाले का भी परिवर्तन आपकी सहनशीलता से हो जाएगा। श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान करने रोज जाते थे, नित्य स्नान। ऊपर से एक मार्ग में अन्य धर्मावलंबी का महल था बड़ा, जिनके पास सत्संग रूपी महाधन नहीं है और सब कुछ है, वो बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं, बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। जिनके पास सत्संग रूपी धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो विवेकवान महासंपत्तिवान होते हैं। ये भी सबको समझ में नहीं आएगा, तो बुद्धि का गरीब आदमी प्रकृति भाव में देखने पर धनी आदमी ऊपर महल में खड़ा देखा बाबा जी स्नान करके फूंक दिया, ऐसे तो बनता है ना, कौन थूकता, ऐसे भी नहीं देखा, गए फिर स्नान कर, 100 बार थूका, 100 बार स्नान कर, हार गया, ऐसे भी नहीं देखा। नीचे उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, जब कहा क्षमा करो, ऐसे महान हृदय वाले का मैं अपमान कर रहा था, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत नीच हूं, मैंने बड़ा अपराध किया। तो भैया आपने तो कोई अपराध नहीं किया, जो लाभ हमें 100 दिन में मिलता वो मुझे आज 1 दिन में आपने प्रदान किया, 1 दिन में आपने 100 बार स्नान का मुझे सौभाग्य दिया, मैं आपका ऋणी हूं कि जो 100 दिन में मैं स्नान करता वो 1 दिन में करवा दिया। ये आपके क्या विचार, क्या परिवर्तन, देखो सत्य का परिवर्तन। ये जीवन में जब तक आपके अध्यात्म नहीं आएगा तब तक आप अध्यात्म को समझेंगे कैसे। अगर हम कहीं विचलित होते तो मेरी कमजोरी है, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे आराध्य देव मुझे पुष्ट करेंगे। हमको इस पर भी बेपरवाह रहना है कि मैं कमजोर, मेरे आराध्य देव गुरुदेव पुष्ट करेंगे, वो पुष्ट कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान् नीचैः कृतान् कोटिशो, आपके अंदर भी अहंकार कितना बचा है इसकी परीक्षा है। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान् नीचैः कृतान् कोटिशो, नीच पुरुषों द्वारा करुण प्रकार से दुर्वचन या आदि आदि तिरस्कार आदि, आपका हृदय भगवत स्मरण नहीं छोड़ा, ये बात रही, भगवत स्मरण नहीं। भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः, कई कई दिन तक आपको भोजन नहीं मिला। ये तो धाम है, यहां तो सुविधा है, ये भूखा नहीं रह सकता, धाम की बड़ी कृपा है। कई जगह ऐसे संत महात्माओं की करुणा से भोजन पवाए जाते हैं, बिना किसी टिकट पैसे की भी आप चले जाइए भोजन, और लाडली जो बड़ी करुणा में। ये भ्रमण करने वालों को ज्यादा सहन करना पड़ता है, जो संत सुखी विचरण तुम्हें विचरण करते रहते हैं राग द्वेष रहित चित, कई कई दिन भोजन की व्यवस्था नहीं संयोग बैठता। यहां धाम के लिए कह रहे कि आप अगर धाम आए हो, धामवासी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो आप ये समझ लो कि अगर आपको भोजन की भी कई कई दिन तक अव्यवस्था सहनी पड़े तो सहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। और ये देखा है प्रभु नवीन उत्साह देते हैं, जैसे भोजन नहीं मिला तो निराशा कभी नहीं आई, उदासी कभी नहीं आई, एक नवीन उत्साह आता था, नवीन उत्साह, और बहुत ही मन को कसा जाता है गुरुदेव के द्वारा, भगवान के द्वारा। काशी के घाट में थे कई दिन, 2 दिन में 3 दिन में कभी ऐसे जैसे सतुआ, ऐसे सतुआ मिल, ऐसे जैसे किसी ने 1 किलो सतु ली, अब आप 100 भिक्षुक हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ढक्कन ऐसे कमंडल कर देते, जो तो गंगा जल से जैसे औषधि नहीं आयुर्वेदिक चाटी जाती, ऐसे मिला चाट लिया गंगा जल पे, आपको कैसे बताए, एक अद्भुत आनंद। एक दिन देखा कि एक कोई यात्री आए तो टिफिन खोल के दाल सब्जी रोटी सब ऐसे दृष्टि गई, मन ने कहा यार अरे, पर अब वो तो जैसे छोटा बच्चा अरज गया मन, आज तो भरपेट भोजन चाहिए ही। अब मन में जब ये आई कि तो आया कि गुरुदेव भगवान को वचन दिया किसी के दरवाजे नहीं जाएंगे, बहुत अंतःकरण फंसाने में प्रवीण है। दरवाजा घाट की तरफ ही था, तो हम कहीं जा थोड़ी रहे, उस घाट के किनारे वाले दरवाजे की सीढ़ी पे बैठ जाएंगे, और उसका दरवाजा है पीछे की तरफ भी होता है, चलो भाई बैठ गए। संकल्प के अनुसार एक व्यक्ति निकला, हर हर महादेव महादेव, कैसे बैठे, कैसे बैठे, भोजन पाओगे, जैसे महादेव जी बैठो चाबी लाते हैं, चलो ऐसा 2 घंटे के तक तो हमें लगा रसोई बनाने में समय लगा। बाद में आया तो उसने कहा प्याज लहसुन पाते हो, हम कहा नहीं, हमारे यहाँ तो बनता है, वो नहीं हम ऐसा तो नहीं पाते, तो ये महादेव, हाँ मन से खूब हंसेगा, ठीक ठीक उत्तर मिला, नहीं रोटी लगे दे देता ना देता सब्जी, भगवान महादेव। फिर वो कई कई दिन तक भोजन न मिलने पर भी निराशा नहीं आती, एक नवीन उत्साह रहता, तब स्त्री भाव की ऐसी बन आज मिलेंगे, मन अति हर्ष जनावनते ही, आज देखे हो परम सने, रोज ऐसा होने लगा, चिलचिलाती धूप और पंडों की छोटी सी छतरी उसी के नीचे में, आज महादेव जी मिलेंगे, रोज आने लगा, आज महादेव जी, आज महादेव जी। जब नाना प्रकार की सुख सामग्रियों का सेवन किया जाता है तो मन संतोष कर लेता है, अच्छा जीवन चल रहा है भाई। अच्छा जीवन तो जब बाट जो होने लगे, दृश्य बिन दुखन लागे नयन, आज की भी रात गई स्वप्न में नहीं आए, पूरा दिन भी गया साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसे एक एक मिनट व्यतीत होने लगे, तब समझ लो बिल्कुल आ गए हो साक्षात्कार की भूमिका में। कोई मान, कोई दुख सुख, गर्मी सर्दी बरसात, इसकी स्मृति न रह जाए। सी बात है, भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः, ये महापुरुष की स्थिति में पहुंचने के लिए जरूरी है। भोजन आदि के कई कई दिन ना मिलने पर भी आपके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ना। विषयी पुरुष वैराग्यवान को क्या सुख होता है अनुमान भी नहीं कर सकता, वैराग्य में क्या सुख है अनुमान भी नहीं कर सकता। जब जितना तुम सहनशील बनते जाओगे, देखो एक बार चना भुन जाए फिर चाहे जितना खाद पानी लगा दो उसमें अंकुर होने वाला है, एक बार तो भुनना ही चाहिए, आकृति वही रहती है चने की, वो परंकुरण रहित हो जाता है, आकृति तो वही रहेगी चने की, व्यवहार में तुम्हें सब चना के समान ही नजर आएगा पर उसमें अंकुरण होना बंद हो जाएगा क्योंकि भुन गया। इसलिए सहित सहित बाढ़े भगत उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ये बात जरूर जरूर। भक्षाद्यान वास कुट्य मिलनाद, रहने की जगह, कपड़ा, भोजन, इनकी कितनी भी असुविधा हो भगवत चिंतन नहीं छूटना चाहिए, लक्ष्य में निराश नहीं होना चाहिए। फिर और बढ़िया बात करें, कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम्, ये कामादि तुम्हें भारी पीड़ा देंगे, ये भारी पीड़ा को विषयी पुरुष नहीं समझ पाते। जैसा भाव आया वैसा विचरण करें तो उनको क्या पता चले कि इसकी पीड़ा क्या होती है। भाव आया और उसको रोका, वो जो चलन व्याकुलता व्यथा पैदा होती है उसको सहना। देखो यदि काम वासना की तुम मार को नहीं सह पाए तो प्रेम को सहने की योग्यता तुम में आई ही नहीं, प्रेम तो प्रभु को भी विकल कर देता है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को जो गृहस्थ में है, धर्म संज्ञा केवल संतानोत्पत्ति, जो वैराग्य आजीवन इससे युद्ध करके से। और ये कुछ दिन का युद्ध है, अगर स्वीकृति नहीं बनी ना भोगों की तो कुछ दिन के बाद ये शांत हो जाता है, ऐसे शांत हो जाता है जैसे हवा रहित स्थान पे दीपक रख दो ऐसे शांत, एक तार भगवत स्मृति विक्षेप ही कामनाओं से होता है। अच्छा, काम सुख सपने उनाही और बिन संतोष न कामना चाहिए। धैर्य पूर्वक एक बार निश्चय कर लो अब ये जन्म निष्काम था, पर वही संभल पाएगा कुसंग रहित, कुदृश्य रहित, कुवाक्य रहित, गंदी बातें नहीं करनी, गंदे दृश्य नहीं देखने, गंदा संग नहीं करना, गंदा भोजन नहीं करना और लक्ष्य पे दृढ़ रहना है। दृढ़ता का स्वरूप है हर समय भगवत स्मृति प्रायण और निष्कामता, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। मुख में नाम चल रहा है, हृदय में प्रभु का ध्यान है, कोई कामना नहीं, सबके प्रति प्रेम व्यवहार, श्रीधाम वृंदावन हमारी विश्राम भूमि, श्री राधा रूप चरण निवास, महामहिमामय स्थिति। पर सहना पड़ेगा प्यारे, सहना बहुत कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति की तैयारी बड़ी कठिन है। तो इसीलिए गुरु को मोरे मन प्रभु विश्वास आराम ते अधिक राम कर दासा, कि गुरुदेव भगवान ने मुझे तैयार कर दिया। बस वस्तु तो तुम्हारे हृदय में ही, कहीं आनी जानी नहीं है, बस उस तैयारी में हमको थोड़ा एक भाव रखना है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी टांगों पर लिटा करके तेल मालिश करके उसे पुष्ट करती है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा पे रख के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी धज्जियां उड़ा देना, पर वो बच्चा की सामर्थ्य नहीं कि उनके चरणों से हट जाए। तो ऐसे ही हम अगर कई बच्चा के पेट और घर करे विनाशन, अब आप चाहे अपमानित करो चाहे सम्मानित करो चाहे प्यार दो चाहे तिरस्कार दो, प्रभु आपको जीवन समर्पित है, आपके सिवा सच्चे महात्मा बन जाओगे। हो सकता है कि कई कई महीने संभाषण किसी से ना हो, पर एक मिनट भी ऐसा नहीं जो तुम गुरुदेव की दृष्टि में ना हो, तुम नहीं समझ पाओगे उस बात को। कोई भी शरणागत ऐसा नहीं है बाहर का या समीप का जिसमें हमारी लाडली रूपी कृपा गुरुदेव की दृष्टि ना हो, भूलना मत ये बात हमारी। कोई भी चाहे बाहर का हो चाहे यहां का हो, वो अनंत सामर्थ्यशाली, उनकी करुणा दृष्टि एक एक पर एक एक पे करुणा, उसी करुणा दृष्टि से हम सुरक्षित हैं, उसी करुणा दृष्टि से हमारा परमार्थ बढ़ रहा है। कामाद्यैः रति पीड़या, बस इसको सह जाओ प्यारे, बहुत आवश्यक है सहना, बहुत आवश्यक है सहना। कुछ समय बाद आप निर्विकार हो जाओगे, सह जाओ, स्वीकृति मत करो। स्वीकृति करोगे तो वही व्यवस्था कर देगा, ध्यान रखना, जो इच्छा करी हो मनमाही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। आप अगर हट करोगे कि नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो इशारा दे देंगे माया को, खिलाओ इसको पहले। जब ये फिर रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, मेरी तरफ भागेगा, फिर संभाल लेंगे, खेलो जा, खेलो जाके। अगर ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु मैं कहूं भी तो कभी मेरी इच्छा की पूर्ति मत करना, उसका परिचय वो अधीनता स्वीकार ही किए रहता है, और जब अधीनता से अलग दिखाई देता है ये तो प्रतिकूल ही प्रतिकूल व्यवहार करते चले जाते, छूट दे देते माया को, उन्हीं की माया है। ठीक है, देखो खिलौना इसको, खेलने दो, जब ये खेल के उबेगा फिर मैं अपनी गोद में ले लूंगा, क्योंकि वो भी अविनाशी, वो भी अविनाशी, अविनाशी का बच्चा अविनाशी, खेल ले लो, कल को खेलो, जब रोगे फिर गोद में ले लेंगे, समय काहे को बर्बाद करो। इन खेलों को बहुत खेला है, अब तो हरि के साथ खेलना है, हरि प्रिया की लीला में सम्मिलित होना है, इसलिए इसे सहना पड़ेगा। कामाद यही रति पीड़या च मनुष्य वैकल्य मात्यंतिकम, अत्यंत विकलता पैदा होने पर भी। आपको बताएं अत्यंत विकलता किस स्थिति में होती है? जब भगवत स्मृति छूट जाती है और आप तन्मय हो जाते हैं किसी भी विषय पर, उस समय भारी कष्ट होता है। और अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो यह शब्द नहीं आएगा, मनुष्यो वैकल्य मात्यंतिकम नहीं आएगा, वो आने ही नहीं देगा। इसे आकर्षण होगा पर इतने विकल हो जाओ कि होश खराब हो जाए, ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब प्रभु का नाम छूट गया, आप देख लेना, प्रभु का स्मरण छूट गया तभी आप अत्यंत विकल हो जाएंगे किसी भी विकार से, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह कोई हो।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

मुनि याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्या वासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18744।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
11: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की हो गई मौत, डीएम ने की कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक, जिले के प्रभारी मंत्री का हो रहा है आगमन और सदर अस्पताल का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे एक 23 वर्षीय युवक की दौड़ लगाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बसडीला नौका टोला निवासी 23 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई है। ये जयप्रकाश सिंह कुशवाहा के पुत्र थे और बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार रंजीत कुमार तेलंगानी मैदान में सुबह दौड़ का अभ्यास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 3 राउंड दौड़ पूरी करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, वह जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों ने और स्थानीय लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों का निरीक्षण किया और कई विभागों के साथ बैठक भी की। बताया जा रहा है कि डीएम ने बलथरी चेक पोस्ट का भी औचक निरीक्षण किया, वहां संचालित व्यवस्थाओं और जांच कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच, सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की उन्होंने समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। राज्य की सीमा पर आने वाले सभी वाहन के निर्धारित मानकों के अनुसार सघन जांच सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, शराब तस्करी एवं नियमों के उल्लंघन पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मी पूरी सतर्कता और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करें। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को अस्पताल की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी आवश्यक दवाएं एवं जांच सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान जर्जर हो चुके पुराने इमरजेंसी वार्ड भवन का भी निरीक्षण कर उसे शीघ्र ध्वस्त यानी तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का उन्होंने निर्देश दिया। इधर जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने मॉडल सदर अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया और वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का व्यापक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी ओपीडी, एक्सरे कक्ष, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, प्रसव वार्ड, सिविल सर्जन कार्यालय सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से निरीक्षण कर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था और अन्य सेवाओं का भी बारीकी से अनुसंधान कर आवश्यक निर्देश दिया। जिले के प्रभारी मंत्री और सूबे के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का गोपालगंज में दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि वे सेमराव में आयोजित पंचायत सहयोग शिविर में शामिल होंगे। इसकी जानकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी ने दी। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री के स्वागत को लेकर जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह है, तो वहीं जिला प्रशासन के भी अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं और प्रभारी मंत्री का स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने राजस्व विभाग को लेकर भी समीक्षा बैठक की। सभी अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश दिया। साथ ही ई म्यूटेशन, जमाबंदी, ई मापी, सर्वे, सेटलमेंट, राजस्व न्यायालयों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आम लोगों के कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अभिलेखों के डिजिटलीकरण और राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत आम नागरिकों के गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाया जा रहा है। इसी क्रम में विजयपुर थाना में भी गुम हुए एक मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक बरामद कर उनके वास्तविक स्वामी पूनम देवी पति अरविंद कुशवाहा साकिन नैनापार थाना विजयपुर को सुपुर्द किया गया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के बंगाल खाड़ पंचायत भवन परिसर में नालसा के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम, स्थायी लोक अदालत का गठन इत्यादि विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता हैदर अली और PLV हीरा लाल राम की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को आवश्यक विधिक जानकारियां दी। पुलिस अधीक्षक ने आज अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ मामलों का संबंधित अधिकारियों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्य दिवस के समय जन सुनवाई की जा रही है। इस दौरान भारी संख्या में फरियादी पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए पुलिस अधीक्षक भी आवश्यक निर्णय ले रहे हैं। अब गोपालगंज से बेतिया मार्ग में सफर करना महंगा पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार राज्य मार्गों और चयनित पुलों पर टोल व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस पुल से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों से निर्धारित दरों के अनुसार टैक्स वसूला जाएगा। टोल टैक्स के रूप में फिलहाल अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही टोल व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हथुआ पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए हथुआ क्षेत्र के मछागर जगदीशपुर में ग्रामीणों की सूचना पर 103 लीटर देशी शराब बरामद किया। साथ ही शराब को जब्त करने के बाद पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और दो विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद मैनुद्दीन, जो मोहम्मद राजू का पुत्र है और रामपुर हाजी गाँव का निवासी है, थाना मनिहारी जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और दो विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। इस मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने भी 9 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी जय प्रकाश मुखिया, पिता चंद्रिका मुखिया, साकिन शिवराजपुर, थाना नौतन, जिला पश्चिमी चंपारण का निवासी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि लगातार अभियान चलाते हुए जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलपुर पुल के पास से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात करते हुए कई मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए कई दर्जन फरियादियों के मामलों को सुलझाया गया। उचका गाँव थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही पिता सहित कई लोगों पर मारपीट किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी की पत्नी पिंकी कुमारी ने पुलिस अधीक्षक को आज आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति अर्जुन कुमार, जो लोहसी थाना उचका गांव के निवासी हैं, उनके पति का पिछले 6 महीनों से किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बना हुआ है। इसको लेकर लगातार वे घर की संपत्ति और बहुत सारे कीमती सामान उस महिला को दे रहे हैं। साथ ही पूछने पर पत्नी के साथ मारपीट की जा रही है। इस मामले में पत्नी के आवेदन पर अब पुलिस अधीक्षक ने महिला थाना को निर्देश देते हुए मामले में जांच पड़ताल करने का आदेश दिया है। महिला थाना अब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
9: दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की हो गई मौत। डीएम ने की कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक। जिले के प्रभारी मंत्री का हो रहा है आगमन। और सदर अस्पताल का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण।
8: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
16: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
17: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
18: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
18: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
18: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
19: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
20: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
21: मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते, कि अभी पराजित नहीं हुए। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए।
22: इतिहास में शायद ऐसे शास्त्रार्थ, डिबेट या बहस का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है। इस शास्त्रार्थ का नतीजा क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि प्रश्न पूछने वाली महिला का नाम उभय भारती था और पशुपेश में पड़े सन्यासी कोई और नहीं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य। नमस्कार, मैं अनुपम खेर, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष के इस एपिसोड में कहानी उस महान सन्यासी की, जिनकी लिखी किताबों को हम में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, जिनके लिखे श्लोक उससे भी कम लोग जानते हैं। लेकिन जब सवाल जीवन और मृत्यु का हो, व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच के संबंधों का हो, उसी सन्यासी के विचार 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के विचार बन जाते हैं। जब एक राजनीतिक भारत की जगह एक आध्यात्मिक भारत की चर्चा होती है, तब इसी महामानव की याद आती है। भारतवर्ष में इस बार महागाथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य की।
23: यह है आज के भारत का राजनीतिक मानचित्र। लेकिन क्या राजनीतिक सीमाएं ही भारत को बनाती हैं? अब आप एक आध्यात्मिक भारत की रूपरेखा देखिए। उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ। इस आध्यात्मिक भारत के पीछे जिनकी सोच है, उन्हें ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं।
24: रक्षा के दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से, जो है आध्यात्मिक एकता की दृष्टि से, ये सारी चीज है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मतलब ऐसे व्यक्ति हो नहीं सकते दूसरे जो इस तरह का चिंतन रखते, और उन्होंने सफल प्रयोग किया।
23: आज से 1200 साल पहले जब भारत राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी बटा था, तब धर्म के नाम पर आडंबर था, कर्मकांड था। जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो 84 से भी ज्यादा अलग अलग संप्रदायों में बंटा था। यहां तक कि बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र करने वालों का बोलबाला था।
25: बौद्ध धर्म
0: का जो उस समय स्वरूप है वो हीनयान नहीं है, महायान नहीं है, वो समय है जब वज्रयान आ गया है, यानी तांत्रिक बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है।

शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। मकसद था भारत को धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर एक करना। भारत का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा होगा जहां की यात्रा आदि शंकराचार्य ने नहीं की हो। उन्होंने भारत के हर कोने में अलग अलग धर्म और संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और धर्म विजय की नींव रखी।

0: इस महान दार्शनिक और धर्म की रक्षा करने वाले आदि शंकराचार्य की जीवन यात्रा शुरू होती है केरल के एर्नाकुलम जिले के काल्टी या कलाडी गांव से। निम्बूदरीपाद ब्राह्मणों के उस गांव में शिव गुरु नाम के विद्वान रहा करते थे। कहते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। आमतौर पर इतिहासकारों की राय यही है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। कुछ लोग आदि शंकराचार्य का जन्म 2500 साल पहले भी मानते हैं। जन्म से ही शंकर अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको चकित कर रहे थे। कहा जाता है कि वो इतने प्रतिभाशाली थे कि 3 साल की आयु में ही मातृभाषा मलयालम सीख ली, वेदों को पढ़ डाला, धर्म के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगे।
1: वधोही को बंधा हुआ कौन है?
2: ऋषियानुरागी, वासनाओं में जो अनुरक्त होता है वही बंधनग्रस्त है।
1: वासनाओं में जो अनुरक्त है, घोर नरक क्या है?
2: अपना शरीर ही घोर नरक है।
1: अच्छा,
0: आचार्य एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे थे और 3 साल के बालक शंकर उनके हर प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रहे थे मानो उन्हें हर शास्त्र का ज्ञान हो।
1: ऐसा तेजस्वी बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा।
3: आचार्यगण, ऐसे पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए।
0: लेकिन बालक शंकर 3 साल के ही थे तभी पिता शिव गुरु का देहांत हो गया।
4: पिता की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में हो गई। अब माँ और बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। माँ पुत्र के लालन पालन और भविष्य को लेकर चिंतित थी। परंपरा के अनुसार माँ ने 5 साल की उम्र में बालक शंकर का उपनयन संस्कार करवाया। इसके बाद बालक शंकर को शिक्षा के लिए आचार्य के पास भेजा गया। यहां एक चमत्कार हुआ। जिन शास्त्रों के अध्ययन में शिष्यों को 20 वर्ष लग जाते थे उसे बालक शंकर ने 2 वर्ष में ही समाप्त कर दिया और वापस मां के पास कलाड़ी लौट आए।
0: बालक शंकर के बारे में जो कहानियां कलाड़ी के साथ साथ पूरी दुनिया में चर्चित हैं उनमें से एक इस पूर्णा नदी से भी जुड़ी हुई है। अब इसे पेरियार नदी कहते हैं। अभी यह नदी कलाड़ी को छूकर निकलती है लेकिन शंकर के समय यह गांव से काफी दूर बहा करती थी और उनकी मां को पानी और स्नान के लिए जाने में काफी दिक्कत होती थी। मां को परेशान देखकर बालक शंकर ने प्रार्थना की और पूर्णा नदी ने धारा बदली। लेकिन मां की चिंता कुछ और ही थी। एक दिन अगस्त ऋषि बालक शंकर के घर पहुंचे।
5: हे देव, मेरे बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए।
6: ये संभव? 8 वर्ष, इसके उपरांत 8 वर्ष अर्थात 16 वर्ष, फिर कुछ कारणवश और 16 वर्ष अर्थात
3: आचार्य

0: केवल 32 वर्ष। क्या कह रहे हैं देव? नहीं नहीं
1: तीस वर्ष की आयु में पुत्र के देहांत की बात सुनकर मां कांप उठी। दूसरी तरफ मां की इस चिंता से अलग बालक शंकर कुछ और ही सोच रहे थे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746 64।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 97665750।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
0: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
0: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
0: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
0: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
12: माँ।
13: हाँ बेटा।
12: माँ मैं देखता हूँ कि लोग जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कोई सुख नहीं, इसलिए मैं संन्यास लेकर इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ।
13: इतने निष्ठुर ना बनो, मुझसे ऐसे वचन ना कहो बेटा। ये संन्यास लेने का विचार छोड़ दो।
12: पर क्यों माता, इसमें अनुचित क्या है?
13: तुम गृहस्थ बनो, यज्ञ करो, आराधना करो, पूजा करो, उसके बाद सन्यासी बनना। और तुम तो कितने विद्वान हो, कितने शास्त्र पढ़े हैं तुमने। तुम्हें तब भी अपनी माता की बिल्कुल चिंता नहीं? क्या तुम्हें अपनी माँ से कोई प्रेम नहीं?
12: मेरा मन इस संसारिक जीवन में रहना नहीं चाहता, किंतु मेरी माँ मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मेरी माँ मेरे हृदय की बात क्यों नहीं समझती? माता की आज्ञा के बिना मैं कैसे सन्यास ग्रहण करूं?
14: माँ ने जब सन्यास लेने की अनुमति नहीं दी, तब शंकर ने एक लीला रच डाली। वो नहाने नदी में गए, किनारे माँ खड़ी थी, अचानक वो डूबने लगे। शंकर चिल्लाए, मुझे बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे उसे तो घड़ियाल खींच ले जा रहा है। ये सुनते ही आर्यम्बा शंकर को बचाने के लिए नदी में उतर गई। पीछे पीछे दूसरे लोग भी भागते रहे, लेकिन शंकर को घड़ियाल खींचता ही जा रहा था। तभी शंकर ने कहा, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो तो ये घड़ियाल मुझे छोड़ देगा। माँ आश्चर्य से शंकर को देखती है। बालक शंकर ने फिर कहा, कुछ ही क्षण बचे हैं माँ, बोलो माँ। आखिरकार माँ ने उन्हें संन्यास की अनुमति दे दी।
15: While giving permission,
16: अनुमति देने के वक्त बालक शंकर की माँ ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है। तो बालक शंकर ने पूछा कि वो क्या है। तब उनकी माँ बोली कि मेरी मृत्यु के समय तुम ही मेरे पास आना और मेरा अंतिम संस्कार करना। तब बालक शंकर ने कहा कि जब भी आपको मेरी उपस्थिति चाहिए होगी मैं अवश्य आऊंगा।
15: माई प्रेजेंस।
1: जिस आयु में बच्चे माँ की ममता के आंचल में पलते बाते हैं, जिन दिनों मासूम बच्चों की दुनिया घर आंगन और गांव तक सिमटी रहती है, उस उम्र में घर परिवार, सखा संबंधी और माँ को छोड़कर बालक शंकर सन्यास के मार्ग पर निकलने वाले थे। इस दृश्य की अब बस कल्पना ही की जा सकती है। घर छोड़ने के बाद शंकर कई दिनों तक घूमते रहे। उन्होंने मार्ग में कई नदी, पर्वत और जंगलों को पार किया। बालक शंकर गुरु की खोज में घर से निकले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो अपने जन्म स्थान केरल के कलाड़ी से निकलकर तुंगभद्रा की ओर मुड़े और फिर इसके बाद श्रृंगेरी से गोकर्ण होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु श्री गोविंदपाद का आश्रम था। श्री गोविंदपाद अपनी विद्वता, योग बल और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु श्री गोविंदपाद आश्रम के पास एक गुफा में समाधि में थे।

0: मैं पृथ्वी नहीं हूँ, ना जल हूँ, ना तेज हूँ, ना वायु हूँ, ना आकाश हूँ, ना उनके गुण हूँ, ना इंद्रियां हूँ, अपितु इन सबसे परे जो परम तत्व है वही मैं हूँ।
1: तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे उत्तर से अद्वैत का साक्षात्कार होता है।
2: उन्होंने एक तरीका अपनाया कि अपना परिचय देने के लिए कि मैं जो कुछ भी आप आमतौर में समझते हैं कि वो मैं नहीं हूँ। आमतौर में क्या समझते हैं कि शरीर को समझते हैं कि ये गोरा गोरा है तो ये स्वरूप इनका परिचय है, तो कहते हैं कि ये तो शरीर हो गया, मैं नहीं हूँ। तो नाम तो मेरा शरीर को रखा है, तो मैं नाम से मेरा परिचय कैसे कराऊँ? मैं शरीर से भिन्न हूँ, इंद्रिय से भिन्न हूँ, अंतकरण से भिन्न हूँ। जो कुछ भी आप दिख रहा है, आपका व्यवहार जिस किसी रूप में हो रहा है, उन सबसे मैं भिन्न हूँ।
3: सदा आनंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मैं जाति हूँ, न धर्म हूँ, न महाभूत हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य मूल तत्व हूँ। तो अब ऐसे जो स्टेटमेंट जब आप देखेंगे ना, तो यही आदि शंकराचार्य को और से बहुत ऊपर लेके चला जाता है कि कहते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है, या हमारा नहीं सबका मूल स्वरूप, या इस सृष्टि के कण कण का मूल स्वरूप जो है, वही एक सत्ता है जो मैं हूं।
4: शंकर 9 साल के थे जब वो श्री गोविंदपाद से मिले। श्री गोविंदपाद ने शंकर को सन्यास की दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। कहते हैं श्री गोविंदपाद के कहने पर सन्यासी शंकर ने महाभारत में लिखे विष्णु सहस्त्र नाम पर श्लोकों की रचना की, जिससे लोग परमात्मा के 1000 रूपों को समझ सके। विष्णु सहस्त्र नाम की गूंज आज भी सुनाई देती है। तरह तरह की परीक्षा के बाद श्री गोविंदपाद ने ही शंकर को शंकर आचार्य या शंकराचार्य का नाम दिया, यानी जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण धर्म गुरु शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। श्री गोविंदपाद ने शंकर को 4 महाकाव्यों में ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था।
1: तत्वमसि, वह पूर्ण ब्रह्म तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा रूप उपाधि वाला आत्मा ब्रह्म है। अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। अयम् आत्मा ब्रह्म, यह सर्वानुभव सिद्ध अपरोक्षात्मा ब्रह्म है।
5: ब्रह्म जो है वह चरम सत्ता का नाम है, जो अंतिम सत्ता है, जिसे हम सारा जीव और चेतन जगत, जड़ जगत उत्पन्न होता है, उस सत्ता का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, ब्रह्म जो है वो चरम सत्ता का रूप है, जो अंतिम सत्ता का रूप है, जिससे कि सारा विश्व निकलता है।
6: शंकर 4 वर्षों तक गुरु गोविंद पाद की सेवा में रहे। इस दौरान वो शंकर से आचार्य शंकर बन गए। उन्हें आश्रम के शिष्यों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। वो अब शंकराचार्य नाम से चर्चित हुए। उनकी चर्चा की वजह एक और थी, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में सवाल जवाब होते थे, दर्शन और जीवन से जुड़े प्रश्नों पर बहस होती थी। जाहिर है इसमें शामिल होने वाले विद्वानों के लिए ये प्रतिष्ठा की बात होती थी। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर किया। ध्यान रहे, उस वक्त शंकराचार्य की उम्र सिर्फ 12 साल बताई जाती है, लेकिन वो कितने बड़े विद्वान हैं, उसकी असली परीक्षा काशी में ही हो सकती थी। आचार्य शंकर भी कई दिनों की यात्रा के बाद काशी पहुंचे।
4: काशी में कई लोगों ने आचार्य शंकर की प्रेरणा से विधिवत संन्यास ग्रहण किया और उनकी सेवा करने लगे। एक नवयुवक आचार्य के चरणों में वृद्ध और ज्ञानी लोगों को बैठे देखकर लोग चकित रह जाते थे। उस समय बौद्ध सन्यासी परंपरा भी वाराणसी में काफी प्रभावशाली थी। यहाँ बौद्ध सन्यासियों से भी शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन स्वयं आचार्य शंकर के ज्ञान की परीक्षा होनी अभी बाकी थी।

0: एक दिन काशी में उनका रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने वाला शव को जलाने वाला व्यक्ति था।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
14: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
14: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
15: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
15: सेंट जॉन स्कूल
6: सासामुसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
16: आचार्य को जाने दो।
17: मैं रास्ते से नहीं हटूंगा, पहले आचार्य शंकर मेरे प्रश्न का उत्तर दें।
16: कैसा प्रश्न?
17: हे महात्मन, आपने कहा दूर हटो, आप किससे दूर हटना चाहते हैं, मेरे शरीर से या मेरे शरीर में विद्यमान आत्मा से? जब हर व्यक्ति का शरीर अन्न से पुष्ट होता है तो आपके और हमारे शरीर में क्या अंतर है? और जब हर शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तो आप में और मुझ में कैसा भेद? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम चांडाल हो? आपने मुझसे क्यों कहा कि दूर हटो?
0: अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति ने ये सवाल आदि शंकराचार्य से किए। जाति धर्म छोटे बड़े में भेद कैसे हो सकता है जबकि सब में एक ही ईश्वर का अंश मौजूद है? ये दरअसल आदि शंकराचार्य की परीक्षा भी थी। कहा जाता है कि वो शिव ही थे जो ये प्रश्न पूछ रहे थे। आचार्य शंकर ने अनुभव किया कि जीव और परम सत्ता एक ही है, ठीक उसी तरह जैसे गुड़ से उसकी मिठास अलग नहीं है।
16: हे प्राणियों में श्रेष्ठ, अभी आपने जो कुछ कहा वो परम सत्य है। आप आत्मज्ञानी हैं और मैं आपका दास हूं, और इस शरीर और बुद्धि से मैं आपका ही अंश हूं।
18: वैसे ही हम सारे जो लोग हैं, सारे पशु पक्षी जीव जंतु, इवन जो जिसको हम जड़ कहते हैं वेदांत में, उसको भी चेतन माना जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जितने हैं सब आकार हैं अलग अलग, लेकिन मूल में एक सत्ता है। यदि उस मूल एक सत्ता को यदि हम ध्यान रखें तो हमारे अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता है। लेकिन यदि हम ये समझते हैं कि ये ऐसा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई इस जाति का है, कोई इस धर्म का है, तो आपके मन में उसके आधार पर तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है।
0: कहा जाता है कि काशी में चांडाल के रूप में मिले भगवान शिव की प्रेरणा से आचार्य शंकर ने व्यास रचित ब्रह्म सूत्र, श्रीमद भागवत गीता और उपनिषद को समझने के लिए भाव्य या किताब लिखने का निर्णय किया, ताकि उनके गहरे अर्थों को सरल बनाया जाए और आम जन भी आसानी से इसे समझ सके। ये तीनों ग्रंथ प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं।
19: काशी में आचार्य शंकर विद्वान पंडित और शिष्यों से घिरे रहते थे। वो ग्रंथों के रूप में, किताबों के रूप में धरोहर छोड़ना चाहते थे। उन्हें एकांत की जरूरत महसूस होने लगी और तब उन्होंने काशी छोड़कर बद्रीनाथ जाने का फैसला किया। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ कई दिनों तक यात्रा करते हुए दुर्गम पहाड़, नदी नालों को पार करते हुए अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ पहुंचे। कहा जाता है कि बद्रीनाथ में आचार्य शंकर ने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर उसे मंदिर में स्थापित किया था। इसके बाद वो बद्रीनाथ के ही व्यास गुफा में रहने लगे।
0: आचार्य शंकर ने व्यास गुफा में रहकर चार वर्षों तक ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद पर ग्रंथ या किताबों की रचना की। उन्होंने भगवान गणेश, गंगा, शिव, देवी भगवती जैसे देवी देवताओं की भावपूर्ण प्रार्थनाओं की रचना की। उन्होंने वेदांत संबंधी कई छोटे छोटे आसान ग्रंथ लिखे जो प्रकरण ग्रंथ कहे जाते हैं। इन्हीं में भज गोविंदम भी है। भज गोविंदम को आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ

0: किसी मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ते हैं उसमें केवल केवल रस ही रस मिलता है, उसी प्रकार केवल रस केवल आनंद ही आनंद जिसमें है, उसी प्रकार के गोविंद का भजन करो, वही ही संसार से पार कराने के लिए समर्थ है और कोई नहीं।
1: आचार्य शंकर 8 साल की उम्र में संन्यास लेकर घर से निकले थे। सुदूर दक्षिण केरल से काशी और काशी से बद्रीनाथ तक की यात्रा में उन्होंने गुरु से शिक्षा ली और शंकर से शंकराचार्य बने। उन्हें जगह जगह प्रशंसा और प्रसिद्धि मिली, लेकिन जिस विचार को वो फैला रहे थे उस पर सवाल अब भी थे। सवाल उठाने वालों में उस समय के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र थे। मंडन मिश्र से शंकराचार्य का शास्त्रार्थ में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती।
2: मंडन मिश्र अपनी पत्नी के साथ माहिष्मती नगरी में रहते थे। यह जगह भी बिहार के सहरसा जिले का महिषी कस्बा है। मंडन मिश्र कितने बड़े विद्वान थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर का पालतू तोता भी श्लोक बांचता था। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती भी अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। आचार्य शंकर शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र के गांव पहुंचे।
3: मंडन मिश्र से के जब वहां वो पहुंचे थे शास्त्रार्थ के लिए, तो उन्होंने पहला शब्द यही बोला था, कुतो दंडी, दंडी सन्यासी कहाँ से आ गए, क्योंकि वो गृहस्थ थे और वो कर्मकांड की बात करते थे, ये ज्ञानकांड की बात करते थे। डिबेट का मुख्य विषय यही था, कर्म वर्सेस नॉलेज।
2: आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तय ये हुआ कि शास्त्रार्थ की मध्यस्थता मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती करेंगी।
4: सर्वप्रथम आप दोनों अपने अपने विषय की स्थापना करें।
5: देवी, आचार्य हमारे विचार जानने हेतु हमारे गांव महिषी आए हैं, इस कारण वे ही पहले अपना मत प्रस्तुत करें।
6: अवश्य। जब उपनिषदों के महावाक्यों से जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है तो संसार और अज्ञान के सारे प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। जीव सच्चिदानंद में लीन हो जाता है, वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उपनिषद इसी का प्रमाण है, यही मेरा सिद्धांत है और यही मेरा विषय। इस शास्त्रार्थ यदि मैं पराजित हुआ तो इस काशे वस्त्र और सन्यास का त्याग कर
5: मैं वेदों के बाद आए उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानता, मैं वेद के कर्मकांड को प्रमाण मानता हूं। दुखों से मुक्ति कर्म से मिलती है, काम से मिलती है, शब्दों से नहीं। शब्दों की शक्ति तो केवल कर्म को प्रकट करने तक ही सीमित होती है। इस कारण मनुष्य को अपनी पूरी आयु कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। यदि शास्त्रार्थ में मैं पराजित हुआ तो मैं गृहस्थ धर्म छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा।
0: इनका मिथिला में जाना और उस समय के जो सबसे बड़े मीमांसा के आचार्य मंडन मिश्र हैं उनसे उनका शास्त्रार्थ होना, क्योंकि वैदिक कर्मकांड के माध्यम से वैदिक परंपरा को सब कुछ समझने का काम मीमांसा दर्शन करता है। तो वो जो धार्मिकता है जिसमें दार्शनिकता नहीं है।
1: आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं लिया। 5-6 दिन बीत गए लेकिन आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ नहीं थमा। नियम के मुताबिक केवल नित्य क्रिया कर्म और भोजन के लिए आराम करते थे और फिर शास्त्रार्थ शुरू हो जाता था।
5: आचार्य, आप कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, ये कैसे पता चलेगा? आत्मा और परमात्मा को एक ही कैसे माना जाए? जीव ही ब्रह्म है, ये सिद्धांत कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसी को नहीं है और न ही इसका कोई अनुमान है। हर व्यक्ति का अनुभव है कि ये ईश्वर नहीं है।
6: शिरोमणि,
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कोलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-74-86164।
12: ओम नमः शिवाय।
13: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
12: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
13: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
12: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
13: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
13: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
12: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
13: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
12: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
13: बोलबम, हर हर महादेव।
6: जीव और ब्रह्म एक ही, और इसका स्मरण इंद्रियां अर्थात आंख, नाक, कान, जीभ से नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इंद्रियों से तो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। इंद्रियों की पहुंच ब्रह्म तक है ही नहीं, परमात्मा ब्रह्म इंद्रियों और बुद्धि से परे, और इसका प्रत्यक्ष अनुमान या ज्ञान कैसे हो सकता है? और इसीलिए आपका प्रश्न ही गलत है।
2: आखिरकार शास्त्रार्थ में आचार्य शंकर के अकाट्य तर्क से मंडन मिश्र निरुत्तर और परेशान होने लगे। अंततः उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली।
5: आचार्य, अब तक मैं और मेरे जैसे लोग यही समझते थे कि इस शरीर के अंत के बाद हम दूसरे लोक में जाएंगे, वहां पर तरह तरह के भोग को भोगेंगे और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात अब हंसने योग्य लगती है। आचार्य, अज्ञानतावश और अहंकार में मैंने आपको कई अप्रिय और कटु बातें बोली है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सन्यास लेकर आपके शरण आना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आचार्य मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश कीजिए।
14: सभा सन रह गई। महान विद्वान प्रकांड पंडित मंडन मिश्र निरुत्तर होकर शंकराचार्य के शिष्य बनने को तैयार थे, तभी उभय भारती खड़ी हुई।
4: मेरे पति अभी सन्यास नहीं ले सकते, ये अभी पराजित नहीं हुए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए।
1: मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती की बात सुनकर सभा में हलचल मच गई। आचार्य शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उभय भारती अपनी बात पर अटल थी। अंततः आचार्य शंकर उभय भारती से शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए।
6: यदि आपकी इच्छा है तो आप आसन ग्रहण कीजिए।

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
4: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
2: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
6: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit.

0: They reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samanvaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sundeep Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime, security, digital, connectivity, critical minerals and trade sectors.
1: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would of course.
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87-894-18744।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम, हर हर महादेव।
8: इसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052612 पे।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लाकी ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4th वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। ऐसे रैयतों के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल खारिज कराने के लिए अब अंचलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में अंचलवार समीक्षा करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी जन्म मृत्यु निबंधन अभिलेख, चौकीदारी रिपोर्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। यह कर्मचारी आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगी।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: श्री शाह ने एक राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा शुरू करने की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को मान्यता दी जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4th वर्ष में प्रवेश के लिए 7.5 CGPA की बाध्यता खत्म कर दी गई है। लोक भवन के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन कर यह शर्त खत्म की गई है। संशोधन के बाद अब 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर यानी 4th वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को केवल कम CGPA के कारण 4th वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। इस बारे में राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों को इसके अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क या सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्र निर्माण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन उपलब्ध भूमि और आवश्यकताओं के आधार पर किसी पार्क या सड़क का चयन करेगा। आवश्यकता पड़ने पर नए पार्क या सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इधर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भर में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। इस दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे। गौरतलब है कि आज लोगों की समस्याओं के प्रभावी और समयबद्ध समाधान के लिए प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति शिकायत या समस्या के लिए सहयोग हेल्पलाइन 1100 या सहयोग पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा की संस्था प्राइड के प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल नामांकन के पहले दिन राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र सहनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा, वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। उपचुनाव के लिए राजद ने रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं एनडीए की ओर से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इस सीट से जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में मंत्री अशोक चौधरी का बयान उनका निजी राय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह पार्टी या सरकार की राय नहीं है।
2: उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको समझ बूझ करके बातचीत करना चाहिए या समझ बूझ के बातचीत रखना चाहिए।
0: प्रदेश में पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती अब ई नीलामी सह निविदा का माध्यम से कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इस कार्य की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को देने का निर्णय लिया है। खान और भूतत्व विभाग के अनुसार अब खनन पट्टों का आधार मूल्य पहले की तुलना में अधिक होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खनन पट्टे में उपलब्ध पत्थर की वास्तविक मात्रा के आधार पर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इससे ई नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में 1-2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से पर्यटन के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पर्यटन विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 15 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग का लिंक अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इस संबंध में बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने लोगों से थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग या भुगतान नहीं करने की अपील की है। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क में रहने के मामले में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार देवेंद्र ने बताया कि मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2: उनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके 2 और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में लगातार अनुसंधान भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस संबंध में एक थाना में कांड दर्ज किया गया है जो BNS की धारा 113(3)(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(26) के अंतर्गत दर्ज करते हुए फर्दर अनुसंधान में इनके जो भी सहयोगी हैं और इनका जो भी नेटवर्क है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
0: आरोप है कि मिल्की खानपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में था, जो बिहार ATS से जुड़े एक मामले में भी नामजद है। निगरानी जांच की टीम ने धनरुआ अंचल कार्यालय के लिपिक शैलेश कुमार को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लिपिक परिमार्जन प्लस के तहत जमीन के कागजात ऑनलाइन अपलोड करने के लिए रिश्वत ले रहा था। भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रदेश में शराबबंदी कानून समाप्त होने की भ्रामक खबर फैलाने के मामले में आरा के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि भ्रामक वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने भाषण की आवाज को AI से एडिट कर यह झूठा दावा किया गया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया है। टीम में पहली बार तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा को भी शामिल किया गया है। 23 जुलाई से शुरू हो रहे इस दौरे में 3 T20 मैच खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 3रा मुकाबला आज नॉटिंगहम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चंपत राय को राम राम, कृष्ण मोहन को कमान। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे। प्रभात खबर लिखता है, BRO के फंड के गबन से जुड़े मामले में बिहार समेत 11 राज्यों में CBI का छापा। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार के मॉडल स्कूलों में शामिल की जाएंगी राजस्थान की विशिष्टताएं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, मानहानि केस में बेतिया कोर्ट ने प्रशांत किशोर को किया तलब। आज अखबार की सुर्खी है, सक्षमता पास नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार मृत रैयतों की जमाबंदी स्वयं अपडेट करेगी। अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता हर महीने करेंगे अंचलवार समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 4थे वर्ष में प्रवेश के लिए CGPA की बाध्यता खत्म। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
12: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
13: हेलो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
14: नमस्ते मैडम जी।
13: नमस्ते।
14: भारती जी बोल रही ना आप? आपका नहीं, मैं सोता हूँ। मैं गोपालो जगराम का पास आज लगुना से बोल रहा हूँ मैडम।
13: कैसे हैं आप?
14: बढ़िया है मैडम जी, अभी तो बारिश हो रही है।
13: अच्छा जी, आपकी तरफ बारिश हो रही है, कभी हमारे तरफ भी भेजिए।
14: आपके उधर नहीं हुई क्या बिहार में बारिश?
13: नहीं हुआ था परसों, उसके बाद कहाँ हुआ,
14: कल हुई थी हमारे उधर।
13: इधर और भी मौसम गर्म हो गया है।
14: यहाँ तो अभी ठंडी है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है थोड़ी थी।
13: चलिए तो बढ़िया है।
14: कैसी हो आप मतलब?
13: हम तो ठीक है।
14: गाना सुनना है?
13: बता दीजिए।
14: सुपर स्टार फिल्म का सुनना है, कुमार सानुअल का एक आवाज में गाना। गाने के बोल बताऊं, चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है, ये वाला गाना है।
13: ओके, और सॉन्ग किसी?
14: डेडिकेट है ना जी, हमारे ज्योति साहू जी है, मकसूद अनवर का सुनील साहू जी है, मांगीलाल चंदेल जी है, इनके लिए और डेडिकेट और आपके लिए भी है मैडम।
13: ओके,
14: पहले कर दीजिए
13: फिर गाना प्ले कर रहे हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4
0: पॉइंट
1: नमस्कार
0: मैडम। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: गाना सुना दी आज भी?
1: नाम बता दी पहले।
0: नाम परमात्मा मत हो काला मठिंग से हाल चाल ठीक बा?
1: ठीक
0: बागोपालगंज में
1: तो बाबे कबूत भूख होता कबूत छाव होता ऐसे ही आवाज जाता होता
0: ऐसा ही तो बोलिए पता होता कब छाया होता कब धूप होता। बारिश और से भाई अगर बारिश होते नहीं थे
1: गर्मी भी तो ऐसी ही बात
0: गर्मी बहुत बहुत 35 चालीस रहता है। गाना सुनवा दी के आज अपने अपने पसंद के बजा
1: अच्छा तो अपना
0: पसंद सही
1: था है रहो लोग इनका अच्छा बताए नहीं लोग
0: बताओ नहीं करे अपने पसंद के बजाई
1: बुझाई का है ना बताए तब
0: ना पानी खराब गाना बात गाना बाजबे करता
1: ना ऐसा कोनो बात नहीं है। अब
0: ना ना तो कोनो बात नहीं तो रवे बजा दे रवे बजा तीन बात तो रवे अपने पसंद से बजाओ आज भी अपने पसंद से बजा दे
1: ना आज रवो बता दे
0: सावन के महीने में बोलने में गाना खूब बोल रहा हूँ गाना बढ़िया सावन पे सावन के महीने चलते
1: पूरी में हिंदी में
0: भोजपुरी में
1: और गाना क्यों सुनाबो कर
0: रहे हैं सब लोग बेटिया के बारे में देना है इनका नाम भगत सिंह और बहुत लोग वीरेंद्र वीरेंद्र पहले देना सब अपने मुजफ्फरपुर से हम सुनने लगे रेडियो में ऑनलाइन बहुत लोग भाई के सुने वाला
1: चलिए तब ठीक बात है गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास

0: दसवीं तक कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308.
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजी 90.4 FM में।
4: हेलो नमस्ते दी।
3: नमस्ते।
4: राधे राधे।
3: राधे राधे।
4: और कैसी हैं आप?
3: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
4: बिल्कुल मस्त हूँ। और आप बताएं आपकी नाम क्या है?
3: मेरा नाम भारती है। और आपका?
4: जी मेरा नाम है रानी।
3: और कहाँ से हैं आप?
4: जी मैं हरखुआ से बात कर रही हूँ आपसे। और आपकी मैं आवाज बड़ी दिनों से सुन रही थी, बाकी नाम में कंफ्यूजन थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आपसे बात करूँ वगैरह। मैं सोची कि आज मैं हर हाल में आपसे बात जरूर करूंगी, और आवाज सुनकर तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा था। ये सोच रही थी कब आपसे बात हो जाएगी, मुझे थोड़ी सी टाइम दिक्कत था, मैं फाइनली आ जाऊँ। और नाम में मैं बहुत कंफ्यूजन थी, मैं सोच रही थी आपकी भारती नाम है कि आरती नाम है, वही मैंने सोचा आज मैं दोनों क्लियर करूंगी आपसे बात करके। मैंने एक सुना था, एक लिस्नर पूछ रहे थे आपसे, बात किए थे तो मैंने कंफ्यूजन थी कि फिर दी के नाम भारती है कि आरती है, तो मैंने सोचा था दिव्या दी से तो बात है, सनी दी से बात हुआ है, बहुत पहले बात हुआ है, अभी मैं बहुत कम बात करती हूँ, मैं बहुत पुरानी लिस्नर हूँ आप लोग का चैनल का, मैं बात नहीं करती हूँ, बल्कि आपकी आवाज सुनी थी तो मुझे अंदर से खोता है ना कि कोई की बात अंदर से होता है, काश मेरे से बात भी हो जाता मेरा खुशी ऐसा तो आपको पता चलता होगा। आपकी आवाज बहुत प्यारी है दी, और उससे ज्यादा आपकी नाम बहुत अच्छी है।
3: अच्छा
4: जी, जी जी। और बताए आपने नाश्ता किया है कि नहीं?
3: हाँ हमने नाश्ता कर लिया। और आपने?
4: जी जी जी, हम लोग भी हो गया है, और मौसम थोड़ा सा दुष्काल कर रहा है, बारिश से एक दिन पूरा जम के हुआ था जी, और काफी गर्मी से परेशान थे हम लोग, तो थोड़ा बहुत राहत मिला है, लगी फिर वही हाल है,
3: लेकिन थोड़ा बहुत मतलब धूप कभी हो रहा है कभी ना हो रहा है, तो उससे थोड़ा राहत मिल रहा है।
4: वही है दोनों मिला के।
3: तो घर परिवार में सब कैसे हैं?
4: घर परिवार में सब कोई अच्छा है, और मैं दिक्कत की बात करूँ तो थोड़ा मेरे माँ की तबीयत खराब है, तो मैं इसीलिए आप लोग सुनती थी बाकी मैं जुड़ती थी नहीं। और जी और मेरी माँ की थोड़ी भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनकी डॉक्टर बोला है ऑपरेशन करने को, तो हम लोग काफी दिन से परेशान है दी, तो अभी तो हुआ नहीं है, उनकी दवा चल रहा है और थोड़ा सा कमजोर भी है, तो थोड़ा सा रिक्सी वाला कार है दी,
3: तो ख्याल रखिएगा माँ का आपने।
4: हाँ और हाँ माँ तो हॉस्पिटल में है और हम लोग घर पे है, और मैं बड़ी हूँ तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, फिलहाल मैं थी मैं माँ के पास, लेकिन मुझे यहाँ भेज दिया लोग, और
3: अभी ठीक है ना?
4: हाँ ठीक है, और अभी आप लोग के दुआ के जरूरी है कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी, और उनकी तो जो डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो देखिए आप मनी में लगे हैं लोग, और मैं इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा था, बाकी आपकी मैं हमेशा से सुनती थी, लेकिन मैं सोचा आज तो थोड़ा सा टाइम आप लोग के लिए निकालूंगी आपसे बात करने के लिए।
3: चलिए ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
4: और जी मुझे सॉन्ग सुना है मेरी माई के ऊपर है, एक लाडला मूवी के अनिल कपूर जी का, तो वही सॉन्ग, उसमें एक सॉन्ग है तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के जी, मुझे
3: सॉन्ग माँ को ही डेडिकेट है ना,
4: और मेरी माँ के लिए और आपके लिए और सोनी दी के लिए और दिव्या दी के लिए और बाकी जितने रेडियो की मेरी रेडियो दोस्त है उन सभी को रानी की तरफ से है, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा दी, और अपने बिजली से पानी पीते रहिए, आपकी बात बड़ी सेट है
3: जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है।
4: जी जी तो एक गाना उन्हीं के लिए बजाइए और थोड़ी सी आप लोग को दुआ चाहिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए। हम लोग तो काफी दिन
5: है कि माँ आपकी बहुत जल्द ठीक हो जाए।
4: जी जी जी मुझे यही चाहिए और मैं काफी दिन से माँ के रिलेटिव से हम लोग परेशान है, पूरा फैमिली परेशान है दी। और अभी उनकी इलाज हो रहा है, उनकी जो मेन काम है दी वो भी बाकी है, जो उनको ऑपरेशन करना है। थोड़ा हम उनकी देखिए जब बात माँ करते हैं हम लोग अंदर उस टाइम से हंस कर बात की आपको टाटा रखो वही थोड़ी सी माँ के बात आता है तो पानी टूट जाता है दी।
5: माँ तो माँ होती है ना।
4: हाँ जी जी और वो अल्लाह जाता है। और देखिए घर में सब कोई है यहाँ पर, बाकी नहीं लग रहा है कि घर कोई है। हम लोग इस रूम में से उस रूम में इस रूम से और थोड़ा बहुत आप लोग को सुनते हैं तो थोड़ा सा मन हल्का होता है दी, और ना तो थोड़ा सा तो मियाँ थोड़ा टेंशन हो ही जाता है।
5: तभी आपके साथ है
4: जी जी, और इतने साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया आपको। और आप बहुत अच्छी है, बात से तो बात करती है सभी लिसनर से तो अच्छा लगता है।
5: जी जी धन्यवाद। चलिए फिर बातें होंगी।
4: जी जी
5: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कैसे हैं मैम?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: थोड़ा धूप गर्मी वगैरह सब हो रही है ना, थोड़ा तबीयत खराब हो गया मैम।
0: अच्छा जी, क्या हो गया है?
1: थोड़ा बदन वगैरह सब दर्द कर रहा है, धूप हो जाता है कभी, बहुत गर्मी लगती है, थोड़ी बारिश होती है इसी वजह से।
0: तो धूप से थोड़ा बच के रहिए। और
1: धूप से कैसे बचा जाए मैम? ड्यूटी पर जाना पड़ता है, धूप के टाइम छुट्टी होती है, 3 बजे धूप नहीं निकलना पड़ता है, विद्यालय बंद हो जाती है ना।
0: तो थोड़ा कुछ गमछी वगैरह ओढ़ के जाइए आइए।
1: वो तो रहता है, टॉवेल रहता है, गमछी वगैरह रहता है साथ में, थर्मस वगैरह तो रहता ही है साथ में।
0: कोई नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगा।
1: जी, ऐसे कोई विशेष ही नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऐसी तबीयत खराब है। आज सुना दीजिए मैम, आया सावन झूमके का गाना, टाइटल सॉन्ग।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
12: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो।
15: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
15: नमस्ते मैम।
14: नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका?
15: अच्छा, अपना बताइए कैसा है?
14: हमारा भी ठीक है,
15: पूजा का काम है।
14: आप अच्छा रहे तो हम लोग रिकॉर्डिंग चल रहा है।
15: हेलो।
14: हाँ बोलिए।
15: बोलते हैं आप अच्छा रहे, ख्याल रहेंगे तब तो हमारा रिकॉर्डिंग चलेगा।
14: जी जी, हम तो अच्छे ही रहते हैं, भगवान की कृपा है जो अच्छे रहते हैं और आप लोगों की भी कृपा है।
15: नाश्ता हो गया?
14: हाँ हाँ, नाश्ता हो गया। और बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
15: गाना सुना दीजिए मोहब्बत फिल्म का।
14: जी हाँ बोलिए।
15: बोला है मोहब्बत फिल्म का गाना सुना दीजिए।
14: और गाना कौन सा है?
15: गाना है आके गले से लगा लो।
14: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
15: जी, आपको जितना रेडियो रिमझिम आगे सब सुनता है और दोस्त सब सुनते हैं सबके साथ।
14: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
15: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल?
1: तो हाल चाल तो अच्छा है, आजकल ट्यूमर का काम सब चल रहा है। उसी में लगे हैं कि एक गाना का रिक्वेस्ट कर लें।
0: तो बता दीजिए।
1: वो गाना है लता मंगेशकर का, जाना जाना है कहीं दूर चले जाना है, ऐसा गाना है। सिंगल लता मंगेशकर का गाना है
0: जी।
1: जाना जाना है कहीं दूर जाना है, ऐसा ही गाना है। तो उसी गानों को हम सुनना चाहते हैं ना। अगली बार तो अच्छा आइए। आप जो सोनी जी प्रोग्राम देती हैं 1 बजे से, वो आप नहीं दे सकती हैं क्या?
0: आज तो बैठना है।
1: आज बैठना है। तो उसका नंबर मालूम है क्योंकि हम सोच रहे हैं तो उसका नंबर लगाया के जाए।
0: उसका नंबर तो मुझे नहीं मालूम है, सोनी जी से पूछना पड़ेगा।
1: अच्छा तो छोड़िए तुम, क्योंकि नंबर हमारा अच्छा देखेंगे। 1 बजे से आप बैठिएगा ना, तो आज सुनेंगे आपका खास का प्रोग्राम। तो उसका रिहर्सल कर लिए?
0: नहीं, अब वो देखेंगे कैसे बोल रही है, उन्हीं से सीखेंगे।
1: सीखिए, उसमें भी आप आजमाइश कीजिए, क्योंकि ये तो प्रोग्राम चलाना तो आपको इजी हो गया है
0: जी।
1: तो ऐसा ऐसा प्रोग्राम आप डेवलप करते रहिए। तो उसमें हम भी चाहते हैं कि आप भी कभी आए 1 बजे वाले में,
0: है ना? बुलाएंगे।
1: तो क्या बोलता है वो, हेलो
0: योर
1: वॉइस योर चॉइस। तो उसी को हम आपका प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, आप इतने दिनों से हैं इसके लिए। तो आज सुनेंगे गौर करके। ये गाना में तो हमें सुनाइएगा।
0: बिल्कुल सुना दे।
1: वो तो सोनी जी पानी पीपी के वो अपना प्रोग्राम देती हैं वो।
0: इतना बोलना ही पड़ता है कि प्यास लग जाएगा।
1: हाँ प्यास लग जाता है, भूख लग जाएगा। और पूछ रही थी आप पानी पी है? मैडम पानी पी लीजिए, खाना खाई है, भूख तो लगा है पर अभी नहीं खाए, खा लेंगे प्रोग्राम के बाद। इसी इतना मजा आता है सुनने में उनका, सोनी जी का। और चुटिला जो आवाज होता है ना, है ना, तो सुनने में बड़ी मजा लगता है। खासकर सोनी जी का आवाज सुनने में मजा लगता है। गाना उन्हें छोड़िए बाद में जाए, है ना,
0: एकदम पूरे स्पीड में बोलती हैं,
1: बॉडी स्पीड में, मतलब उसका स्पीड का सब कोई कायल हो गया। उसमें भी गाना जो है साथ में गाती है ना, है ना, गुनगुनाती रहती है, वो भी अच्छा लगता है। तो आप भी वैसा प्रोग्राम दीजिए मैडम, हम लोग को भी अच्छा लगे, है ना, और ऊपर वाला चाहे तो आप तो वैसा ही कीजिए। ठीक है मैडम, तो
0: ठीक है फिर गाना प्ले कर रहे हैं
1: जी, सुनाइए गाना को।
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: जान, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
3: हेलो,
15: नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
15: हम रमान गुप्ता पेनुरा खास से बोल रहे हैं।
3: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
15: हाल चाल बल्लेवाही कराओ चनी, बल्लेवाही कराओ चनी, या खेत में बन गया रोपनी होता।
3: अच्छा,
15: घाम बड़ा उगल बा, घाम बड़ा उगल बा, रोपनी होता सरकार।
3: घाम तो उगले ही बाबे,
15: घाम तो भर बाकी एकदम टहा घाम, रोपनी कराओ चनी शाम के दिन आदमी है जा जाई, बाकी धान ना जरे के चाहिए।
3: तो पानी तो लगाए,
15: पानी चला के अल्लेवाही होता, बस धान रोपवाओ तनी से। गीत सुने के बाद सरकार
3: बता दी, कौन सा गीत सुने के बाद?
15: गुलाम अली के कोई दर्द भरा गजल, गुलाम अली का कोई दर्द भरा गजल।
3: गजल आप नहीं बताइएगा कौन सा, मतलब गजल
15: कोई गुलाम अली का कोई गजल हो, गुलाम अली का कोई गजल हो सुनवाइएगा, कोई गजल गुलाम अली का।
3: और गजल किसी को सुनाना भी है?
15: सुनवाएंगे शाहबू चक्कर वाले और गुरु चक्कर वाले, सतंदर है सतंदर, हमारे गांव का सतंदर नाती है का सुनाए भाम।
3: चलिए ठीक
15: है, कार मैडम नमस्कार। नमस्कार,
3: गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ।
15: नमस्कार,
3: 90.4 नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजी 90.4 FM में।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार।
0: और सब?
1: और सब बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: बस चाय पी रहे थे, टाइम हो गया। तो
1: इतनी गर्मी में चाय?
0: तो अब लीजिए, काम करते हैं तो चाय तो दो टाइम चाहिए ही।
1: नहीं मतलब गर्मी है इसलिए पूछ लिए।
0: नहीं, गर्मी तो गर्म को काटता है। काम करने वाला आदमी चाय तो जरूर पिएगा। वो टाइम 11 बजे हो गया और 4 बजे हो गया, चाय तो चाहिए।
1: जी जी, चलिए, चाय राहत देता है थोड़ा बहुत।
0: राहत तो देता है, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं देगा लेकिन ये तो जरूर देता है।
1: हाँ, ये भी उतना तो नहीं पीना चाहिए।
0: क्या आपसे बताएं, काम कर रहे हैं तो दो चाय तो चाहिए ही चाहिए।
1: हाँ, वो तो चाहिए ही।
0: अब एक बात और है कि अगर चाय पी रहे हैं तो आपसे बात भी कर तो कर लिए, 2 मिनट आराम भी तो मिल गया है कि नहीं?
1: बढ़िया है। तब तो रोज चाय पिए कीजिए।
0: हाँ, तो रोज की टाइम है ये। तो आज उसी टाइम ही चाय आया है कि आपके पास कॉल कर लिया।
1: तब तो बढ़िया।
0: और सब
1: ठीक है?
0: नाश्ता पानी हो गया?
1: हाँ, हमारा हो गया है।
0: बारिश वारिश बंद करा दिए?
1: नहीं, होगा बारिश अभी तो, वैसे ही कभी कभी मौसम बना रहा है, हो जाए तो अच्छा है।
0: ये किसी हाथ में है? कहने के लिए सबने कहते हैं लेकिन किसी के हाथ में है ये। चलिए फिर, आज एक गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए कौन सा गाना।
0: नीलकमल सिंह का लूट गई बर्बाद हो गई।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: बस आपको और सोनी जी को, और जिसने मेरे नाम से जानने वाले हैं सब सुन लेंगे। मैं गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। चलिए फिर प्ले कीजिए,
1: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4।
11: नमस्कार, कैसे हैं भारती?
12: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
11: भारती में बोल रहे हैं ना?
12: हाँ,
11: बढ़िया।
12: हाँ हाँ, बढ़िया है।
11: आपसे इंतजार तो हम बुधवार से ही कर रहे हैं कि कब आपसे बात होगी।
12: जी,
11: बुधवार से आपसे इंतजार कर रहे हैं बात करने के लिए आपसे।
12: अच्छा जी, क्या हो गया है बताइए।
11: बस उस दिन मतलब फरमाइश पूरा हो गया था, इसलिए थैंक यू बोलने के लिए मैम।
12: अच्छा जी,
11: तो गाने की फरमाइश कर दे अपना गवाते हुए और एक बात बोलेंगे।
12: जी बोलिए।
11: जी मैम, और एक चीज और बहुत अच्छा लगता है कि रिपीट चलता है सुबह में, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए डायरेक्टर सर को थैंक यू बोलते हैं। बोलिएगा
12: जी। चलिए, आपको अच्छा लगता है खुशी हुई जानकर।
11: जी मैम, वक्त करना गवाते हुए गाने की फरमाइश करें।
12: बिल्कुल,
11: गाने फरमाइश है चंदा सितारे से गाना है ना, उदित नारायण का।
12: कौन सा गाना?
11: चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारे, ऐसा ही गाना है।
12: हाँ हाँ है,
11: उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा।
12: आप तो अच्छा फरमाइश करते हैं, अच्छा तो लगेगा ही।
11: नहीं, अलग अलग पहचान रहता है ना, मतलब पसंद रहता है।
12: नहीं, मैं भी सुनूंगी, देखते हैं कैसा है, सुन लेंगे हम भी। और किसी को गाना डेडिकेट भी करना है
11: आपको? सोनू सर को, अभी सुनने वालों को, जितने भी 90s के फैन है।
12: तो
11: मैम, जल्दी जल्दी यही बता दीजिए कब बजेगा, मतलब कितने नंबर पे हैं?
12: अभी तो 3 नंबर पे हैं।
11: हम डेली अब सोचते हैं कि 1 नंबर पर लगेगा, लेकिन लगता ही नहीं है। 3 नंबर पर लगता है, 2 नंबर पर लगता है।
12: जी, तो 11 बजे से कुछ मिनट पहले शुरुआत कीजिएगा तो जरूर लगेगा।
11: जी मैम, इसके लिए धन्यवाद गाना बजाने के लिए, अभी बोल देते हैं।
12: जी जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
11: ओके मैम।

0: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगजीम 90.4 एफएम में।
0: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे, इंतजार अभी खत्म हो गया मैम, फोन भी लग गया।
1: जी जी आपका पहला ही कॉल है।
0: जी जी जी ट्राई कर रहे थे, बाकी फोन लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है, तो और सब बताइए, और सब ठीक है ना?
0: हाँ जी मैम सब ठीक है, बस आपका यहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम?
1: मौसम कभी धूप कभी छाँव वैसे ही हो रहा है।
0: जी जी जी आप सोनी मैम बात कर रहे हैं?
1: नहीं
0: भारती मैम। जी मैम तो आज ये कार्रवाई है,
1: बता दीजिए।
0: फिल्म बलमा और गाने का बोल है मैम, ये मौसम भी गया और सुनवाएंगे कितने रेडियो रंजन दो लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
15: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein.
14: Hello.
15: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
17: क्या कर रहे थे?
16: हेलो,
17: क्या हाल है?
16: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
17: मेरा भी ठीक है।
16: आवाज आपको बहुत स्लो आ रहा है।
17: मेरा भी ठीक है।
16: अच्छा, चलिए ठीक होना चाहिए।
17: आप सब बताइए, तबीयत सही नहीं है क्या सुनी जी?
16: क्या
17: तबीयत सही नहीं है क्या? आपकी आवाज बदली बदली सी है।
16: हम सोनी थोड़ी बोल रहे हैं।
17: हाँ,
16: हम भारती बोल रहे हैं।
17: क्या?
16: मेरा नाम भारती है।
17: अच्छा, भारती जी। आज बताइए क्या तबीयत है आपका?
16: हम तो ठीक हैं। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं?
17: हम लोग भी ठीक हैं।
16: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा?
17: हम सुनना है भरोसा कर लो तुम, शांति में आएंगे।
16: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
17: सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, सोनी सर को, सुनने वाली और लिसनर।
16: ओके, नाम बता दीजिएगा अपना।
17: ओके,
16: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीत 90.4 FM।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल श्रोता संग्राम कोरामन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब। संजय कुमार साहब बात कर रहे हैं।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आप सुनिए, आप कैसी है? आपको रेडियो रिंगम का फोन परिवार कैसे है?
1: सब बढ़िया है। आपकी
0: दुआ से? आपकी दुआ से हम भी ठीक है, घर परिवार भी चलता है। अब बाकी थोड़ा लुकाछिपी चल रहा है, कभी बारिश कभी गर्मी। मौसम बताइए। हमारे तरफ तो गर्मी है लेकिन हवा चल रही है, लेकिन गर्मी है।
1: यहाँ पे भी यही हाल है।
0: धूप ज्यादा है, थोड़ा कभी कभी छा जा रहा है, कभी कभी गरम लगता है। इसी विषय को लेकर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा गर्मी वाला गाना सुन लिया है। क्या गर्मी से गर्मी गाना है की दुकान काटेगा? तो इसीलिए हम लोग एक गाना रखे है जैसे की दोपहरी नेपाल ऐसे करके है। वो ऐसे तो लेडीज के आवाज में तो हमें गाना नहीं, लेकिन इसमें कुमार खान शायद है इसी सुना दीजिए। जेठ के दोपहरी में पाँव जली है, फिर ये पाँव जली है।
1: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना
0: भी है? मतलब सबसे तो पहले आपको, आपको रेडियो इंजन संपूर्ण परिवार को और दोस्त में हो गया सिखाना समा सागर जी, महेश उत्तम कुमार जी, राम सबको सुहाज कृष्ण बघा से अर्जुन कृष्ण बघा से राम सबको सुहाज अर्जुन कुमार कला भरपूर धाम से मरेश स्वामी दीपक दास उदय भन ठाकरे जुमना साहब धनराज सबको सुहाज राम बदन राम भारती संतलाल गौरव हमारे नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्तों, विशेष करके मोहम्मद सलार अंसारी है मजवलिया को विशेष करके करते हुए अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार
1: जी। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे।
13: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
14: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
15: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
14: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
15: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
14: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
15: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
14: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
15: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
14: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
15: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
16: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
17: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
16: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
17: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
17: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
17: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
18: Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
19: जब फोन बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
20: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
21: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिंग 90.4 FM में।
22: नमस्ते दीदी।
21: नमस्ते,
22: क्या हाल
21: है? बढ़िया बात, आप अपना बता दी।
22: ठीक है,
21: कुछ ना, बस रोज बात होता अभी। तो आप नाम बता दी और कहाँ से?
22: कृष्णा कुमारी तीर्थ
21: होता
22: बैठले बनी।
21: खाना वाना हो गई?
22: हाँ, खाना ना हो
21: गई। मौसम कैसन बा?
22: धूप से निकल बा
21: पीने की धूप के निकल रहा। फिर बता दी कौन से गाना सुने?
22: नीलकमल सिंह की बजाय दी कौनो भी नीलकमल।
21: अच्छा, जैसे कि सैड सॉन्ग या फिर रोमांटिक या फिर कैसे?
22: कौनो बजाय।
21: और गाना कैसे सुनवाई तुम चाहते हैं?
22: सबसे पहले लगुआ के सोनी मैम के भैया। हाँ, इतना सुनते
21: चलिए गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
22: ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
1: हेलो
0: जी,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून,
1: क्या हाल है?
0: बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया।
0: चलिए, अच्छी की बात है। ये बताइए आपका नाम?
1: बोलिए
0: जी, आपका नाम और कहाँ से?
1: नहीं पहचान रहे क्या?
0: नहीं,
1: इतना दिन भूल जाती है, खाली है, बुधवार को कॉल नहीं किया तभी भूल जा रहे हैं आप।
0: अरे नहीं नहीं, मैं भारती नहीं बोल रही हूँ।
1: अच्छा
0: जी,
1: भारती कहाँ से है?
0: भारती का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है ना।
1: तो आप दूसरा जाना है क्या? आपका नाम क्या?
0: जी मेरा नाम मनोरमा है।
1: मनोरमा, इसलिए तो पहचान है, भारतीय आवाज करने आवाज नहीं आ रहा है। छुट्टी लिए हैं क्या?
0: नहीं नहीं, इनका शो चल रहा है दूसरा।
1: नहीं तो भारतीय शो नहीं चला रही, सोनी सोनी जन चला रही है।
0: दोनों लोग चला रहे हैं लोग।
1: अच्छा, दोनों लोग चला रहे हैं।
0: और बढ़िया है, उधर का मौसम कैसा?
1: मौसम ऐसा ही है, बादल आ रहा है, धूप फिर हो रहा है, फिर बादल आ रहा है। ज्यादा दूर से थोड़ी हूँ, सिवान से हूँ। बढ़िया के पास ही है, मेरा मतलब मेरा घर बढ़िया में पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा, वैसे आप करते क्या है?
1: अपना खुद का काम करते है, हम लोग कुम्हार है, अपना ही काम करते है, मिट्टी के बर्तन वाला।
0: बहुत बढ़िया,
1: हम लोग बहुत बढ़िया से जानते है, बहुत हम लोग पास चार मिल रहा है।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना आपको?
1: सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग याद ही नहीं आ रहा है। ये गाना बजा दीजिए, चोरी चोरी वो मेरे पास आया, हिंदी सॉन्ग है।
0: और ये
1: यही सुनना
0: है, और ये
1: यही सुनना
0: जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: सबसे पहले आपको सोनी मैम को, आरती दीदी को, दिव्या मैम थी उसको, कृति मैम को, अवसर सर को, डायरेक्टर सर को, पूरा रेडियो रिंजिम को सुनवाना
0: है। चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-9-11। जी हाँ, 8009-94-9-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: नमस्कार मैम।
8: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
9: जी मैम, मैं विजय दीवाना, शंकरबाग, पटना से।
8: जी, क्या हाल चाल है आपका?
9: ठीक है मैम। तो एक गाना सुनना था मैम।
8: जी बता दीजिए।
9: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी।
8: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेटेड भी है?
9: जी मैम, आपको और हमारे जो ग्रुप में है, राजू जी है, वीरेंद्र जी है, सरोज जी है, मनोज जी है, जितेंद्र है, सभी आदमी बैठ के इंतजार कर रहे हैं आपका शो का 1 घंटा। कब सुनने को मिलेगा मैम ये गाना? भी
8: ये गाना मिलेगा आपको कल मिलेगा सुनने के लिए।
9: अभी सुना दीजिए मैम ये गाना।
8: अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना।
9: ओ मैम,
8: तो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, उसके बाद कल बज जाएगी।
9: कल कब मिलेगा मैम?
8: कल शाम 5 बजे।
9: कल शाम को आपका शो नहीं आएगा मैम, आ जाएगा ना?
8: जी
9: आपका शो कल आएगा मैम।
8: हाँ
9: जी मैम, शाम को 5 से 7 बजे तक आज सुना सकती हूँ?
8: जी बिल्कुल
9: जी मैम, थैंक यू,
8: वेलकम। चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: कुलदीप कुमार जंगलिया से।
1: क्या हाल चाल है कुलदीप जी?
0: ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा है?
0: ऐसे ही है मैम।
1: तब खाना वाना हो गया?
0: ना अभी खाना नहीं हुआ है, स्कूल कल उठेंगे तो खाना खाएंगे, अभी आए थे स्कूल से।
1: अच्छा जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
0: 11th में।
1: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
0: अच्छी चल रही है।
1: ओके, चलिए बढ़िया। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: सुना दीजिए थी कोको कोलाला।
1: अच्छा, भोजपुरी या फिर हिंदी?
0: भोजपुरी खेसारी लाल का।
1: अच्छा जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मम्मी पापा को, सबसे पहले आपको
1: जी,
0: और आपको पूरा जितने रेडियो रिमझिम के उतने आदमी को।
1: अच्छा जी, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 90971602।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899225767 या 97714861464।
11: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइस के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। समय 9:27 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग तो जानते ही हैं कि पुराने गाने के फरमाइशों को पूरा किया जाता है, तो आप लोग पुराने गाने की ही फरमाइश करेंगे ताकि आपकी फरमाइश भी पूरी हो। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, प्लीज़ मेरे सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं सोनी, आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू सर नमस्कार, मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते सोनू सर, रंजन कुमार पंजाब से जुड़े हैं और हमारा भी फरमाइश है माँ तुझे सलाम मूवी से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है ना। बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, बिल्कुल बने रहा हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहा हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कमलेश जी आज सबर करेंगे और आपकी केवल हाजिरी बनेगी आज। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कार्यक्रम से हम जुड़ गए हैं लेकिन हमें भी आज एक गाने का फरमाइश है सोनू भाई, और गाने का बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्कार सर जी, मिस्टर साहिद अफरीदी विलेज गोपालगंज से और सॉन्ग नेम एकाश कैसी दीवाने को हमसे मोहब्बत हो जाए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से तो पूरा करने की खुशी है। फिलहाल हम अनु दुबे की आवाज़ में गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस गाने के फरमाइश उन्हीं की पड़ोसन सोनी सरे वार्ड नंबर 1 गोपालगंज से ही। तो आपके फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो रेम झीम 94 एफएम पे इस प्यारे से दर्द भरे गीत को सुन रहे थे हम सभी अनुदेव जी की आवाज़ में। और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और ध्यान रखना है कि पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी देनी है। और यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं रंजन कुमार जी, पंजाब से जुड़े हुए हैं। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है माँ तुझे सलाम मूवी से, मैंने तुझको दिल दे दिया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज है, कुछ देख ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया हो, अभी तक याद ही रखे हैं क्या जी।

अब तो भूल जाए। खैर, गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश रहेगा और साथ भी देने का। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सर, आज प्लीज सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है और इस मैसेज को पहुंचाते हैं संदीप जी। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है? और आज हमको भी गाना सुनना है, सुना दीजिए। गाने की बोले मत कर इतना गुरूर सूरत पे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस मैसेज को करती हैं शानिया शाफी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ओहो, तो चलिए आपकी मैसेज हम शामिल करेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश। माँ तुझे सलाम, मम्मी से मैंने तुझको दिल दे दिया।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम 96.4 एफएम पे सो एसएमएस फरमाइश में। और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए हैं और आगे भी गाने की फरमाइश पहुंची है तो आगे भी गाने सुने जाएंगे। यहाँ पे एक हमारे श्रोतागढ़ कह रहे हैं कि हम 2 नंबर पर थे, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले हैं मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने की फरमाइश करते हैं मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे कुछ मैसेज है, मैसेज में लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। और तुझको मैंने दिल दे दिया, नाइस सॉन्ग, रोशनी कुमारी मानिकपुर से मैसेज करती हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मैसेज देख कर इग्नोर कर दें रहे हैं सोनू भाई, ऐसी बात नहीं है महबूब जी, आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है, बस शामिल नहीं किए। हम समझे आपके मैसेज को और आपकी फरमाइश, तो आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र कर ले। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि भैया मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सबकी फरमाइश एक करके पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, एक बार एक ही गाने हम सुना पाएंगे, अब एक बार में 2 गाने तो सुना पाएंगे ही नहीं, तो थोड़ा सा सब्र करते हैं आप लोग। तो हम आपकी फरमाइश बारी बारी से जितना समय मिला है उतना मैं जितना हो सकेगा उतना हम सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गाने प्ले करते हैं मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, और सुनते हैं

फ्लोरेडियम झीम 90.4 FM सुन रहे हैं, काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो आगे भी मैसेज हम शामिल करेंगे और अगली गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। और ये गाने थोड़े लंबे हैं और हमें लगता है कि अभी 2-3 मिनट है गाने, तो इस गाने को रुकते हैं, अगले गाने भी हम प्ले करते हैं। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं हमारे श्रोतागण महबूब आलम जी केरला से, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। और लिखते हैं कि कर न सके हम प्यार का सौदा, किम्मत ही कुछ ऐसी थी। जल्दी से प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सर, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रामछम सुनने के लिए और आगे भी बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और तो एक एक करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल गाने प्ले करते हैं महबूब जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रामछम 90.4 FM पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग और मैसेज करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि चुड़िया खन की खनकाने वाले आ गए। सुरेश जी तिरबिरवा से मैसेज करते हैं तो स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि गाने प्ले करने के लिए थैंक यू शुक्रिया आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और इस मैसेज को करते हैं महमूद जी तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करते हैं तो गाने की फरमाइश पूरा।
0: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा क्या करूँ।
2: अब चिंता छोड़िए गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक जहाँ दांत जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत रूट कैनाल चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजम 90.4 FM और मैं हूं आपके अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी, आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। 12:02 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आपको भी जुड़ना है कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98527888291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रमजम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को भेज सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 72-77-16-65-96 पे और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बिना देरी किए आज के शो की आगाज करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ और तब तक आप सभी मैसेज करिए और गाना कैसा लगा ज़रूर बताइए, आवाज़ पहुँच रही है मेरी कि नहीं बताइए और आपके उधर का मौसम का हालचाल कैसा है ये भी ज़रूर बताइए। तब तक जब आप मैसेज करते हैं तब तक एंजॉय करते हैं इस गाने को रेडियो रमजम 90.4 FM पर।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और 12:11 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं हमारे पास। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि सुपर गाड़ी है मैम, मज़ा आ गया और मैं भी आ चुका हूँ। हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष कनौजिया जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिखते हैं कि आपने मेरा गाना चोरी करके बजा दिया। बिल्कुल नहीं, मैं किसी का गाना चोरी करके नहीं बजाई हूँ। मैं तो घर से ही सोच के आती हूँ कि आज का गाना कौन सा प्ले करेंगे ओपनिंग सॉन्ग में। और आगे यहाँ और भी सारे काफ़ी सारे मैसेज है लिख रहे हैं कि मैं भी उत्तर प्रदेश से जुड़ गया हूँ। संजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि आज मुझे भी गाना सुनना है। बिल्कुल, गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, का हाल चाल बा? बिल्कुल बढ़िया। मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि क्या ओपनिंग गाना है, ज़बरदस्त, और कहाँ से ढूंढ के लाती हैं ऐसे गाने, बस मिल जाते हैं। और यहाँ एम डी महमूद जी केरला से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। एक और यहाँ मैसेज मिस्टर कुमार मोतिहारी जिला से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि पहले ही राउंड में गर्दा उड़ा दिया मैम आपने, और कल मेरा गाना नहीं बजाई थी आप। राम कुमार जी हैं बालाघाट एमपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिल्कुल कल नहीं प्ले किए थे, और कल आप ही का नहीं, और भी कई सारे जो फरमाइश थे बचे हुए थे। यहाँ अजय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी जी, कल तो आपने मेरा गाना सुनाया नहीं, आज पूरा कर दीजिएगा। बिल्कुल, और आज पूरी कोशिश है कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि क्या खूब है आपकी पसंद का गाना। और मैसेज के साथ हैं नई मंसारी जी जामतारा से, बहुत बहुत स्वागत। राम कुमार पांडे जी लंदन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी ओपनिंग बहुत ही खूबसूरत गाने से मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। इरशाद मास्टर जी धनाव से, बहुत बहुत स्वागत। अनिल जी छोटपुर से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि अर्ज किया है सूरज निकलती है तो मौसम का सुगुहाट अच्छा लगता है, यकीन मानिए जब आप गाती हैं तो आपका गुनगुनाहट अच्छा लगता है। और बहुत बहुत स्वागत अनिल जी आपका भी। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, और आपका आना मानो बाहर आ गए। मोस्ट वेलकम सोनी जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैसेज के साथ है नाम इनका मनी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ उमर शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि झकास ओपनिंग सॉन्ग। अली अख्तर जी जुड़ चुके हैं फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ अर्ज़ अमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि और मैम जी आपका, ओहो सोनी मैम किसको चुन लिया है? बिल्कुल किसी को तो चुने हैं, लेकिन सबको तो नहीं बता सकते बस। और आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, मैसेज अभी भी काफी सारे हमारे पास हैं, लेकिन मैसेज के सिलसिला को रोकेंगे और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास है मनीष कनौजिया जी का, और इनको सुनना है गाना साथ छोड़ो ना तेरा। तो इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: फरमाइश और वीरा देरी की है। बढ़ेंगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और मैसेज है इरशाद मास्टर जी हैं लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग सोनी जी। और आगे यहाँ और भी मैसेज है, मुस्तफ़ा जी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं गाने को। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हम भी तो अपना दिल लिख दिए हैं अख्तरी के नाम हो। और अहमद अली जी हैं। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्कार, राधे राधे। 25 जून से मेरा एक भी गाना नहीं बजा है, क्या आज मैं गाने की फरमाइश कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज के साथ है नाम है इनका अनामिका चौधरी जी, जो कि लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, बिल्कुल फरमाइश भेजिए, प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि जब इस तरह के गाने बजते हैं तो रेडियो के अंदर रेडियो के अंतर आत्मा भी हंसी होगी, साथ छोड़ू ना तेरा। और अनिल जी हैं छोटपुर से। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है उससे पहले एक और यहाँ मैसेज पहुँच गया। नंद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। और लिख रहे हैं कि बता दीजिए मैम, हम लोग भी तो आपके अपने ही हैं। बिल्कुल आप लोग मेरे ही हैं और हमारे ही हैं। और मिस्टर कुमार जी हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास कॉल के माध्यम से गाने की फरमाइश पहुंची है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं अगली फरमाइश को। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दी। जी का हाल चल बा?
1: ठीक बाई,
0: बिल्कुल बढ़िया। का लागत था सुन
1: के? एक जमाना के बाद भेटाइल बानी।
0: भेटा गई नी?
1: हाँ भेटा गई नी, खोजला से ता अल्लाह मालिक भेटा जाए, रघुवा पहुँच के जाए।
0: बिल्कुल सही बात बा।
1: तब और सब बताई, का समाचार बा? तबियत पानी सही बानू?
0: जी जी बिल्कुल, तबियत पानी सब एकदम बढ़िया बा, झकास बा।
1: झकास झकास रहे के चाहिए।
0: जी जी,
1: झकास बानी तबे न इतना झकास झकास आवाज में गाना सुनावत हूं।
0: बिल्कुल, तो रोगो को नहीं को झकास गाने के फरमाइश बता दी।
1: झकास गाना तो हम तो लव सॉन्ग सुने नहीं है, झकास कौन बा ये बड़ा याद नहीं के पड़त भुला गेल बानी।
0: डॉक्टर जी होके तो पूछ ली वहां से
1: तल्ली रहुए बतिया ने आइन करे फरमाइश बजा दी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, का हाल चाल बा राउर?
2: ठीक बा, अपन सुनाए।
0: हमरो बढ़िया बा, तो बता दी कौन गाना सुने के बाद?
2: आज शुरुआती कुमार सानू की आवाज में बा, मिया इन्हें जो तुम्हें कम पसंद करते
0: हैं,
2: इन्हें खबर है कि तुम्हें हम पसंद करते
0: हैं। तो गाना सुनवा देनी चली?
2: पूरी टीम अच्छा बा?
0: जी जी पूरा टीम अच्छा बा, सब कोई अपन अपन काम में जुटल बा।
2: कोई छुट्टी हो के आए?
0: जी बिल्कुल कोशिश रही। जी गाना प्ले कर दे।
2: ओके
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के, एंजॉय करें।

और यहाँ अहमद अली जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए। राम कुमार पांडे जी लिख रहे हैं वेरी नाइस सॉन्ग। मुस्तफ़ा है सऊदी से लिख रहे हैं कि धमाल मचा दिया मैम आप। और आगे यहाँ मनीष कनौजिया जी हैं लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा मोबाइल ओहो हाई हो गया था इसलिए मैसेज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। और आगे यहाँ एक और मैसेज नहीं महमद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बहुत सारी फरमाइश पहुंची हुई है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। रंजन कुमार जी थावे से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। सन्यासी रंजन बाबा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 12:32 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और हम मैसेज की बात करें तो काफी सारे मैसेज है लिखने हैं कि आज कार्यक्रम बहुत ही मस्त चल रहा है सोनी जी, और नमस्ते नमस्कार हम भी जुड़ गए हैं। और नान बाबू जिला बलमपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ और भी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमारा भी फरमाइश है कब बजेगा, तो आपकी फरमाइश तो अभी पहुँच रही है। और ये जो आप मैसेज किए हैं वो सुबह का किए हैं, और शो का टाइम 12 बजे से है, तो 12 बजे के बाद जो फरमाइश आती है अभी आपका फरमाइश पहुँचा हुआ है हमारे पास, तो जब आपकी बारी आती है हम आपकी फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंजन कुमार जी हैं पंजाब से, और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि आपके साथ में जो कल एक मैम थी वो आज नहीं आई हैं क्या? बिल्कुल आई हैं, लेकिन वो दूसरा काम कर रही हैं। और मैसेज करने वाले हैं एमडी कुमार जी मोतिहारी, मिस्टर कुमार जी। और यहाँ आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं फ्रॉम साके खास से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और मैसेज लिखने के, हेलो मैडम जी नमस्कार। और धर्मेंद्र कुमार जी हैं अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनके दोस्त हैं जितेंद्र कुशवाहा पहाड़पुर जिला गाजीपुर मेघना छपरा बिहार के रहने वाले हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और गाने की फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि हम लोग गानवा सुना दी बिल्कुल। और मंजेश सोनी जुड़ चुके हैं जमसर बाजार से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और करीना पांडे की आवाज़ में गाना सुनना है तो थोड़ा वेट करिए, आपकी बारी आती है हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ प्ले करेंगे हम गाना जो हमारे पास गाने की फरमाइश है, सनी जी जुड़े हुए और उनको सुनना है गाना, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, इंजॉय करिए अपने गाने को। और आ कहीं दूर चले गाने की फरमाइश है, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे सोनी जी उत्तर प्रदेश से और लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए, थैंक यू। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं सोनी जी प्लीज़ मेरा गाना सुनवा दीजिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कितने दिनों के बाद आज जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। और अहमद अली जी हैं और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज हैं, लेकिन बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है अली अख्तर जी का वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हाय, मैं अली अख्तर सिरीपुर से बोल रहा हूँ, हमको गाना सुनना है कुल्ली फिल्म का कव्वाली।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। और अलेक्टर जी माफ़ करिएगा, अलाउ नहीं है कोई भी धार्मिक गाना बजाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश भी हमारे पास जो है मंजू सोनी जी का जमसर बाजार से और करीना पांडे की आवाज़ में गाना सुनना है। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रंजन 90.4 FM पर।

और यहाँ मंजीत सोनी जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, थैंक्स मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पप्पू ठाकुर जुड़ चुके हैं बगही बाजार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, सुतरिए रेडियो रिमझिम।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है लिख रहे हैं कि कव्वाली बजाना इसमें मना है क्या? कव्वाली बजाना मना नहीं है, कोई भी धार्मिक गाना बजाना मना है। और मैसेज के साथ है नाम है इनका नान बाबू, जिला बलमपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जब भी मैसेज करिए अपना नाम पता मेंशन किया करिए साथ में। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि प्रेम चिन्ह लाना आदमी कौन जाता सॉन्ग, सही बात है मैम क्या बात है। और दिल ना लगी है गाने की फरमाइश के साथ है धनेश मिश्रा जी। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास है अयोध्या से, अजय जी जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना गुरु करे पीना शुरू। तो एंजॉय करिए अपने गाने को गुरु करे पीना शुरू और सुनते रहिए रे डुरम चिम को।
1: लेते हैं
2: अरे
3: मारा है। अब फिर यहाँ ना फिलहाल मुख में शोर मचा रिया चौके कहीं के

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं अजय जी की फरमाइश है अयोध्या से और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि धन्यवाद गाना बजाने के लिए और पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दारू कभी नहीं पीना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज दस मिनट पहले लगभग 10 साल बाद DAV स्कूल के बेंच पर बैठा था और सोच रहा था वो भी क्या दिन थे जब स्कूल की घंटी बजती थी तो लगता था कि अब हम आज़ाद हो गए और आज जब नौकरी कर रहे हैं तो टाइम का कोई ठीक नहीं और आज़ादी समाप्त। जी हाँ बिल्कुल। और मैसेज के साथ है अनिल जी छोटपुर से, लेकिन आप बताइए कि आप आज DAV स्कूल में करने क्या गए थे? वैसे तो शायद रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो आप किसका रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे ज़रूर बताइएगा। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल सबकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। यहाँ विजय कुमार कुशवाहा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी रूसिया से हो। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि वेदर कैसा है मैम गोपालगंज में? तो यहाँ आज काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैं भी वेट कर रहा हूँ गाने की फरमाइश का। रंजन कुमार जी हैं, जी हाँ बिल्कुल आप वेट कर रहे हैं तो आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है हमारे पास और अनुराधा गुप्ता जुड़ चुके हैं थावे से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए कि आप कैसी हैं। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है और अनामिका चौधरी जुड़ी हुई हैं लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी हैं। और गाना सुनना है इनको बाली उमर को सलाम, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी उत्तर प्रदेश से अनामिका चौधरी जी का, और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया। लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको गाना बजाने के लिए। और आगे हाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि डीएवी स्कूल में भैया का लड़का पढ़ता है, उसी को लाना था और आज भैया नहीं थे तो मुझे लाना था, हो तो इसलिए गए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। और आगे यहाँ विजय कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना भी सुना दीजिए, मूवी का नाम है कितने दूर कितने पास, और इस मूवी से आपको कौन सा गाना सुनना है। हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता पूछ रही थी। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308। ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-93
2: और 9097-6160-02।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और देखते देखते एक घंटा निकल चुका है, 1:15 हो रही है स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज है, और अभी यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, कैसी हैं? और वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफ़रत भी तुम्हारी थी, वो अफसाना वो अपनापन और वो ठुकराने की आदत भी तुम्हारी थी। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगे, वो शहर भी तुम्हारा था और अदालत भी तुम्हारा था। गाना सुनना है तो कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैसेज करने वाले हैं अमरजीत शुक्ला जी दुबई से, गाने की फरमाइश बता दीजिए। यहाँ मनीष जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी। और लिख रहे हैं कि हेलो हाय, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। और बहुत बहुत स्वागत है मनीष पांडे जी आपका। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अगर बरसात का मज़ा लेना चाहे तो इन आँखों बैठो, और बरसों में कई बार बरसता है, ये बरसों सी बरस रही है। और मैसेज के साथ है नाम इनका शाहबुद्दीन अंसारी जी फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ और भी सारे बहुत सारे मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल सबकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, कौन कहता है कि सिर्फ नफरत में ही दर्द होता है, कभी हद से ज़्यादा मोहब्बत भी बहुत तकलीफ देती है, और हमको मोहब्बत ढूंढ रही है। वेरी नाइस सॉन्ग मैसेज के साथ है मनीष कनौजिया जी। यहाँ राजेश कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं नमस्कार सोनी जी, क्या हाल है? सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा। राजेश प्रसाद सूरत से, और आपको सुन रहा अभी सोनी मैम। अभी सूरत में बहुत सुहाना मौसम है, 3 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। आज मुझे भी एक गाना सुनना है, और गाने का बोल है थम के बरस जरा थम के बरस। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। गोविंद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ अगली फरमाइश हम लेंगे, हमारे पास कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करेंगे, देखेंगे कौन है, कहाँ से जानेंगे फरमाइश को। हेलो,
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग जी में।
1: हम नवाज प्रसाद खाड़े मार्केट से
0: जी, का हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा, सब कोई आज खूब मजा लेता हवा के। धना वाला भाई अब लोग उनका नाम रखे हवा
0: धनाव से।
1: हाँ,
0: तिरसाद जी तैले बनी जुड़ नहीं बनी, मैसेज भी जी जी जुड़ल बनी, अभी फरमाइश भी वहाँ के। अच्छा अच्छा, हाँ
1: ना गाना सुना दे आज बदरी वाला। घेरी आयल करिया बदरिया, मेरिया तूफान हो गयी
0: जी जी।
1: हाँ,
0: और डेडिकेट भी रही
1: सब कोई कह रही, हम बने रहो बने जितना लोग सुनता सब कोई बा।
0: चलिए तो प्ले कर दे बनी गाना।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करनी, एंजॉय करें।

और यहाँ भी अभी दस्तक दिए हैं रेडियो फैन पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं राम राम सोनी जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि वाह क्या खूब गाना, और घेरिया करिया बदरिया इंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे यहाँ और भी राधे श्याम जी के आवाज़ में गाने की फरमाइश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है आपकी फरमाइश।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी राजन मार्केट थावे से रामाजी प्रसाद की और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश। बढ़ेंगे बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो है हमारे पास वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
1: हाय मैम नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासरीगंज जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ। आपके कार्यक्रम में जुड़ चुका हूँ और पूरे रेडियो रिमझिम आप लोग परिवार कैसे हैं बताइएगा। और गाने का लिंक भेज दिया हूँ, बजा दीजिएगा। और हम लोग सभी लोग रोशन ट्रेलर में काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं आपका कार्यक्रम। एक महीने बाद जुड़ा हूँ आपके कार्यक्रम से। और नौशाद भाई, शाहिद मुखिया, सलीम हजाम, असलम हजाम और जितने हम लोग रोशन टेलर में काम करते हैं, सभी लोग आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं। विक्रमगंज के नौशाद भाई को भी सुनवाना चाहता हूँ और जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को। ओके, धन्यवाद।
0: तो आपके गाने की फरमाइश जो है, प्यार तो प्यार है, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ इरशाद मास्टर जी की तरफ से मैसेज भी पहुँच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया गाना चलाने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है, और सजाद आलम जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ में है आसिफा खातून और परी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ का मौसम बहुत ही कूल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शो से जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भोरी खेल पर बोल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना चल रहा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बनी रही हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। यहाँ सरफरोज अली जुड़ चुके हैं गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो लिख रहे हैं कि यहाँ और लिख रहे हैं कि मैसेज आधा पढ़ती हैं जी, नहीं आधा तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन काफ़ी सारे मैसेज रहते हैं इसलिए कभी कभी शॉर्ट में मैसेज पढ़ देते हैं, नाम मेंशन कर देते हैं सिर्फ कि ये जुड़ी चुके हैं। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम आज बहुत खुशी की बात है कि अभी तक बहुत तेज़ बारिश हो रहा है और हमारे यहाँ चलिए बढ़िया बात है, खुशी की बात तो है कि मौसम ठंडा हो गया। और मैसेज करने वाले हैं धनिश मिश्रा जी, तो चलिए बिना देरी के आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी दिल्ली से धनेश मिश्रा जी की और इन्होंने गाना सुन लिया। बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ और यहाँ लिख रहे हैं कि रात से अमरसिया जी की आवाज़ में सुनना है गाना भुलाई लसान ना होला। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका अमरजीत शुक्ला जी जो कि हैं दुबई से। तो एंजॉय करिए अपने गाने रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

पर अब तो ये शराब भी असर नहीं करती। समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम्हारे बिना जीने की तमन्ना बाकी नहीं रही गजल। तुम्हारी बेवफाई मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभती है, और जब दिल का दर्द आंखों से आंसू बनकर बहता है तो टूटा हुआ दिल रो रो कर यही कहता है गजल, हाथ में हाथ लिया ही क्यों था, हाथ में हाथ लिया ही क्यों था, मेरे इस चाक गिरेबां को सिया ही क्यों था, दिल लगाया था, दिल लगाया था तो फिर साथ निभाया होता, दिल को ये दर्द बता तूने दिया ही क्यों था, क्यों गजल क्यों।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
11: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
11: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
11: कॉल करें 85070-32042 पे।
13: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
14: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
15: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 1:47 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि भारती जी तो फ़ोन ही ना उठावे नहीं, ओहो, और फ़ोन करना कार्यक्रम में ना उठावे नहीं, ज़रूर बताएं। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका अमरजीत शुक्ला जी दुबई से, तो आप किस कार्यक्रम में कॉल करते हैं कि कॉल नहीं रिसीव होता, ज़रूर बताइएगा। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सोनी जी कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, और वहाँ का मौसम कैसा है और बारिश हो रहा है या भटक गए हम राहों से मंजिल का ठिकाना नहीं था, भटक गए हम राहों से मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई ज़िंदगी उन राहों में जहाँ हमें जाना नहीं था, और कुछ किस्मत की मेहरबानी कुछ हमारा कसूर, हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ पाना नहीं था। हो, और इस मैसेज के साथ है रोहित जी देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और एक और यहाँ मैसेज है रितेश कुमार जुड़ चुके हैं फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने की फरमाइश है तो हम आपकी फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे और अगली फरमाइश एक सप्ताह बाद प्ले होगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करते हैं, लेकिन आपकी फरमाइश जो है बुधवार को प्ले किए थे, अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है, जैसे ही होता है करेंगे। नई मंशारी जी है जामतारा से, तो सुनते रहिए रेडियो रमजिम को। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि हेलो जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, भी नाम पता मेंशन करिए। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, बात करेंगे, देखते हैं कौन है, कहाँ से और फरमाइश क्या है। हेलो,
1: हाँ हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन में
1: जी।
0: जी हेलो,
1: जी
0: कैसे हैं कृष्णा जी, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। अब जोन फरमाइश है तो ने तो चली
1: चुन के रख ले बानी के जाने बाकी नहीं।
0: जी जी बिल्कुल बोली, चुन के रख ले बानी तो होबे करी,
1: ओई बहुत पुरान गाना है के जाने होई
0: ना, गाने के नाम सही हो गए चाहिए,
1: गाने के नाम तो चाहिए ना,
0: हां तो फिर तो मिल जाए के चाहिए। आवाज तो नहीं धीरे आवाज, अच्छा से बोली,
1: जवरा या पाटी सच्चाई के सूते खाती, अब हम कैसे डाटी, रौरा जाके बसती गई नी गोहाती, अब हम कैसे डाटी, खोजी कबा
0: केकरा आवाज में बा,
1: अभी भुला गई बनी बहुत दिन हो गए जाने,
0: ब्यास के नाम याद नहीं किए, एगो तो बाटे यहाँ अजय पांडे की आवाज में,
1: कौन पांडे की ओल्ड एल्ड है बहुत दिन,
0: और जियाल ठाकुर की आवाज में भी बा, हाँ तो कौन पुरन का सुने के बार हुआ,
1: हाँ पुरन का,
0: चलिए प्ले कर दल बने, ठीक बानो, ना खाना तभी नहीं क्या बोलते नहीं कि गाना पूरा ठीक बानो ये पूछनी हम, चलिए ठीक बात है, गाना प्ले कर दे ले बनी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करने।

0: कही हम कैसे डांटी,
1: बताई कैसे डांटी।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिम जिम 90.4 FM में। 1:59 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 2 घंटा कार्यक्रम का निकल चुका है। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास और लिख रहे हैं कि खाली हमरे से दुश्मनी बा का मैडम जी, बिल्कुल ना कोई से दुश्मनी नहीं कि हमार। और राम कुमार जी हैं बालाघाट से, गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और गाना सुनना है दिनेश लाल यादव निरहुआ की आवाज़ में 4 महीनवा, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे यहाँ और भी मैसेज है, और मैसेज है लिखने की सोनी जी एक दिन भारती जी और वॉइस योर चॉइस में आई थी और नाम मैसेज पढ़ रही थी और फ़ोन भी उठा रही थी। ओहो, और जी हाँ उठा रही थी। और उनका पहला दिन होने के कारण काफ़ी सारे मैसेज जो है उनको समझ में नहीं आ रहे थे, नाम पता नहीं होने के कारण वो शामिल नहीं कर पा रही थी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, आपकी आवाज़ ठीक है। और सगीर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं तेजपुर आसाम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम सुनता रहूँगा मगर मैसेज नहीं करूँगा। और

लिख रहे हैं कि मैम जी आपको भी मेरे जैसा ही गुनगुनाने का शौक़ है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत स्वागत है सगीर आलम अंसारी जी है तेजपुर आसाम से। लाल बाबू जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, सूरत से जुड़े हुए हैं। और आगे एक और यहाँ मैसेज, और मैसेज करके डिलीट कर दिया है। लिख रहे हैं कि आवाज़ सिर्फ आवाज़ साफ नहीं की आवत, ओहो, और गाना काफ़ी पुरान रहे के कारण आवाज़ साफ नहीं की जात। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नाम पता मेंशन करिए कि आप कौन हैं, कहाँ से। और नए लिस्नर जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमारा घर वजलिया है, नया घर एक डेरवा में बन रहा है, और सुपर सॉन्ग सुनी जी पहले नाच प्रोग्राम में ये गाना बजत रहे, ओहो, और ये बात हमके ना पता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़े खातिर, बन रही साथ में। और आगे एक और हाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्ते नमस्कार मैडम जी, सुनील शर्मा जुड़ चुके हैं सेमरिया टोला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल हैदराबाद से सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को, और फरमाइश है बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है चार महीना गर्मी के दिन, वहाँ राम कुमार जी हैं बालाघाट एमपी से, तो एंजॉय करिए अपने गाना को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी हमारे पास बालाघाट एमपी से राम कुमार जी के, और इनको सुनना था गाना। लिख रहे हैं कि मन खुश हो गया मैडम जी गाना सुन के, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे यहाँ मैसेज है, और सरफरोज अली है गोपालगंज से, लिख रहे हैं कि हम भी लाइन में लगे हुए हैं मैम, और बिल्कुल आपकी फरमाइश है और आपके मैसेज जो है हम तो शामिल कर ही दिए हैं। और फरमाइश जो है अब तो समय नहीं है, दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। और यहाँ सिवान से विनोद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे हम। और अगली फरमाइश हमारे पास है फिल्म मेरे हमसफर से, और गाना का बोल है चल, किसी राह में किसी मोड़ पे। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, अपने गाने को एंजॉय करिए। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका केशव राज जी, बेगूसराय जिला से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। और इसी गाने के बाद हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार के तरफ, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद यहीं पे आपकी फरमाइशों के साथ।

यहाँ मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि दिल से शुक्रिया सॉन्ग प्ले करने के लिए केशव राज जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी इंजॉय करिए। और 2:10 हो चुके हैं, 2:15 में दोपहर समाचार आता है, तो हम आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
2: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
9: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
8: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
9: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया के भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
9: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
8: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
9: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।

0: गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति AY कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
4: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज PRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट

0: इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 9939966999।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम।
11: सुनो दिल।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87894-18744।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

तो फिर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 2:40 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से 4 बजे तक समय है आपकी फरमाइशों के लिए। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी सारे मैसेज है और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 7277165696 पर। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, और प्रिंस चौहान जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाना सुनना है अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले कर दिए, एंजॉय करें अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे प्रिंस चौहान जी और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया कि गाना सुन लिए हैं और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ काफ़ी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी मेरा भी गाना है और बहुत ही बढ़िया फरमाइश चल रहा है। अभी पप्पू ठाकुर जी हैं बगही बाजार से कटिया गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बिल्कुल बने रहिए। और यहाँ विमल कुमारी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, लिख रहे हैं कि दोस्ती में ठीक है। कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और आगे के और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही पुराना गाना चलत बाटे मैडम जी। जी हाँ बिल्कुल। और सिवान से देवानंद जी वानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, बहुत मुश्किल होती है आप अपनों को समझाने में। एक पल में किसी को भुला ना देना, जिंदगी लग जाती है किसी को अपना बनाने में। हो और मैसेज के साथ धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और यहाँ एक और मैसेज लिखने के, हेलो हाय गुड आफ्टरनून, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए बिल्कुल। और अगर टाइम मिले तो एक गाना सुनवा दीजिएगा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया बिल्कुल। और फरमाइश के साथ है डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी, जी छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ सरफरोज अली है, लिख रहे हैं कि हम भी लाइन में खड़े हैं सोनी मैडम जी, बिल्कुल लाइन में है तो आपकी गाने की फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ एम डी नौशाद जी जुड़ चुके हैं बजाजी रोड लालगंज से। और साथ में इनके हैं एम डी सदाब जी, रिजवान जी और अभिनंदन टेलर के सभी साथी हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुनते रहिए रेडियो रंजन को और फरमाइश बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और साथ में यहाँ लिखा था एम डी महमूद जी भी जुड़ चुकल बनी केरला से। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर। और आगे यहाँ मैसेज बटे लिखा था कि अब आवाज़ सही आ रहा बा एप्लीकेशन पे, अच्छा चलिए बढ़िया बा, ठीक हो गल तो। और मैसेज के साथ रितेश कुमार जी फ्रॉम सिवान से। और अगला फरमाइश हम प्ले करें, हमारा पास पहुँचल बटे सुनील शर्मा जुड़े हुए हैं समरिया टोला से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए।
1: पीता पियों के शरारे पीछे हैं ये सावन के।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, और मैसेज है पाजी यूपी चौहान से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं थैंक यू मैम मेरा गाना बजाने के लिए। और यहाँ धर्मेंद्र कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं गुजरात से, बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं कि बरसात के दिन आए गाने की फरमाइश है, तो जस्ट अभी अभी ये गाना चल चुका है, गाना सुनना है तो गाने की फरमाइश जो है चेंज कर दिया। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सॉन्ग तेरी तस्वीर मिल गई गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए इंद्रदेव जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार जी आप सभी को, और लिख रहे हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, रेडियो रिमझिम का ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बरसात के मौसम में घर से निकल आया कुमार सानू की आवाज़ में बहुत ही अच्छी फरमाइश, और धन्यवाद करते हैं फरमाइश करने वाले भाई को। आज जितने भी गाने फरमाइश थी सब गाने बहुत ही अच्छे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे गाने की फरमाइश करने के लिए। और कुमार सानू का मतलब है म्यूजिक मैजिक मधोसी क्लासिक वेस्टर्न रॉक स्टार क्लासिक वेस्टर्न कॉम्बिनेशन, और म्यूजिक का बसा दुनिया का आठवां अजूबा हो। और कुमार सानू गॉड गिफ्टेड है एडवांस ब्रांड के। और मैसेज के साथ है सोनू जी सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद सो से जुड़े। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है शामिल करेंगे। और यहाँ लाल बाबू कुमार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, सूरत से जुड़े हुए हैं। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो बात करेंगे, सुनेंगे कौन है कहाँ से। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार
1: जी मैम, कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम हम भी अच्छे हैं, बारिश उधर हुआ है आज?
0: नहीं आज तो नहीं हुआ है बारिश, रात में हुई थी।
1: अच्छा, और सब आदमी लोग कैसे हैं?
0: सभी आरजे अच्छे हैं
1: जी। मैम गाना एक सुना दीजिए, प्यार करके देखो ना मेरी तरह, जिंदगी कभी प्यार करके देखो
0: जी। और नाम आपका क्या? पप्पू है?
1: पप्पू बात कर रहे हैं? पप्पू कुमार साह
0: जी जी,
1: थोड़ा रोना पड़ रही है
0: जी जी जी
1: देखा। और आज सुबह से तो यही सब प्यार मोहब्बत वाला गाना शुरू हुआ है, अच्छे से बहुत अच्छा अच्छा फरमाइश चल रहा है, सभी श्रोता भी अच्छे अच्छे फरमाइश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है।
0: अच्छे गाने की ही फरमाइश है तो अच्छी बात है
1: जी जी, बहुत बढ़िया है
0: जी जी
1: जी।
0: तो प्ले कर दिए गाना आपका
1: जी मैम, थैंक यू मैम,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किए, एंजॉय करिए गाने को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और भी काफी खूबसूरत गाना गाने की फरमाइश पहुंची थी कॉल के माध्यम से पुराना कुछ ने पुराना बढ़िया से पप्पू कुमार साहज की तरफ से। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ उमा शंकर मिश्रा जी है दिल्ली से लिख रहे हैं कि टिप टिप बरसा पानी, ये गाना सुना दीजिए बिल्कुल। और आगे यहाँ मैसेज है, लिखते हैं हेलो नमस्कार जी राधे राधे, और सुजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है सरफरोज अली है, गाना सुनना है इतना भी ना चाहो मुझे कुमार सानू की आवाज में। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

अरे हाँ, सोनू जी है सऊदी अरब से, लिख रहे हैं कि सोनी मैम क्या बात है, बैक टू बैक पिछले 4 गाने क्या कॉम्बिनेशन है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और धन्यवाद आप लोगों का फरमाइश करने के लिए, और अगले गाने का इंतजार है कि कैसी फरमाइश आती है। जी हाँ बिल्कुल।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
8: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए

0: अनबुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम में और वॉइस और चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज है लिखे कि तू मुझ में पहले भी था, तू मुझ में अब भी है, पहले मेरे लफ्जों में था, अब मेरी खामोशी में है। और मैसेज के साथ है, नाम है इनका रंजन कुमार जी, पंजाब से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और लिखते हैं कि सोनी मैम हमारा फरमाइश है, तो हम आपकी फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे और अगली फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज है, मैम जी जाते जाते कुछ अच्छा सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल भोजपुरी में बिल्कुल प्ले करके जाएंगे जाते जाते लास्ट में आखिरी फरमाइश। और मिश्र कुमार जी हैं मोतिहारी जिला से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि इन सभी गानों में इतनी खूबसूरत शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे दिल मदहोश हो जाता है, सुनकर आदमी उसी में खो जाता है। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का डिनर सबका इंतजाम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अच्छे गाने की फरमाइश करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनी जी हैं सऊदी अरब से। जी हाँ बिल्कुल, और गाने हैं ही ऐसे। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल। और हेलो मैम कैसी हैं, तेरे बिन जिंदगी जिंदगी ना लगे गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और नाम है इनका नाम भी मेंशन क्या करिए आप लोग, कि कौन है कहाँ से। और प्रभु निगवाले जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब भी मैसेज किया करिए आप लोग, नाम पता मेंशन किया करिए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, मंडे तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा गाने के लिए, बाकी शो में आप डेली जुड़ सकते हैं। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय सोनी का हलवा। और गणेश कुमार जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं कि आज तो लेट हो गया, कोई बात नहीं लेट हो गई तो। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है इंस्टाग्राम पे, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं राजेश कुमार प्रसाद जी। और गाना सुनना है थम के बरस जरा थम के बरस। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का अभी गाना सुन रहे थे। राजेश कुमार प्रसाद जी की फरमाइश थी और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए और गाना में गुनगुनाने के लिए। और यहाँ आगे मैसेज है व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो प्रीति रदास जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गाती है मैम आप और सरफोज अली है गोपालगंज से, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र शाह ने जुड़ चुके हैं समस्तीपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित सिंह लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग थमके बरस जरा थमके बरस, और बारिश भी हो रहा है देहरादून में सुबह से ही, फिर तो गाने में और चार चंद लग गया, बारिश हो रही था। और यहाँ उमा शंकर मिश्रा है तो बिल्कुल अगली फरमाइश आप ही के है, टिप टिप बरसा पानी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, जाने दो मुझे जाने दो, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है और अगले मंडे को प्ले होगा। फिलहाल बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

और यहाँ सुजीत कुमार जी हैं, लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी सुबह से बारिश हो रहा है, फिर तो और भी बढ़िया। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाँ मैम खुल के गाइए और ऐसे ही गाते रहिए, हो ऐसे ही गाने पर। और उमा शंकर मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ मैसेज पहुँच गया है, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए। और ये मैसेज था दिनेश मिश्रा जी की तरफ से, इंजॉय करिए गाने को, आपके भैया की ही फरमाइश है।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम में और वॉइस और चॉइस का और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी उमाशंकर मिश्रा जी की फरमाइश थी और इनके तरफ से थैंक्स का मैसेज भी पहुंच गया। यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, नमस्कार जी आप सभी को, रेडियो रंजन के इस प्रोग्राम में श्रोताओं ने आज धूम मचा दिया है सोनी मैम, और अब बस बहुत हुआ और मैं अपने काम बंद कर रहा हूँ। जहाँ कुमार सानू जी की बात हो रही हो और अलका याग्निक जी की जिक्र हो तो ऐसे हो नहीं सकता। सोनू जी है सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आप सभी से छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: वेलकम बैक 90.4 FM रेडियो रिमझिम पे और सो भट्टी और वॉइस और चॉइस के आप सभी के अपन पसंद के कार्यक्रम में और वॉइस और चॉइस। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे आगे। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम गुड आफ्टरनून, और नंद कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, हम भी जुड़ गए हैं नेपाल से। और बाल कुमार शाहनी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे अगली फरमाइश हमारे पास है और लिख रहे हैं कि मैडम जी मस्त गुनगुना रही हैं और थम के बरस। प्रीति रदास जी है लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं। और यहाँ लाइन भी है एक, लिख रहे हैं कि नजर लग जाती है जताया न कर, इश्क एक राज है बताया न कर, लाख समझाया शक करता है जमाना, जब तू पास से गुजरे तो मुस्कुराया न कर, है क्या बात है। और मैसेज के साथ है पाजी यूपी चौहान से और गाने की फरमाइश है, तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर रहे हैं और वॉइस पहुंचा हुआ है, तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
7: हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी चौहान से मैम। तो मुझे, मैं आज से गाना सुना है मैम, बांट रहा था जब खुदा मैम, हिंदी सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है मैम, शायद आपको पसंद आए मैम। और हमारे साथ में हमारे विद्या निवास चाचू हैं जो इंदौर से सुनते हैं, जिसमें रेडियो रंजन पे ऑनलाइन है मैम, सुन रहे हैं। और हमारे साथ में सुंदरू भैया हैं, हमारे संदीप चाचू हैं, और हमारे गांव में एक आशुतोष लड़का है मैम, वो बहुत ज़्यादा सुनने के लिए बोल रहा था। और एक अमरजीत भैया है मैम, और कुछ ऐसे लड़के हैं हमारे साथ बैठे हैं मैम। हम लोग को गाना सुनना है मैम, प्लीज टाइम मिले तो प्ले करिएगा, थैंक यू।
0: बिल्कुल प्ले कर दिए हैं, टाइम मिल गया है और आपकी फरमाइश, एंजॉय करिए रेडियो टीम जिम 90.4 एफएम पर।

और यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि मेरी रातों की राहत दिन का इत्मीनान ले जाना, तुम्हारे काम में आ जाए ये सम्मान ले जाना, तुम्हारे बाद क्या रखना आना से वास्ता कोई, तुम अपने साथ मेरा उम्र भर का मान ले जाना। और मैसेज कराते हैं मनीष कनौजिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो से जुड़े।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे पाजी यूपी चौहान से, गाने की फरमाइश थी और लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे बिना देरी किए और यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, बात करेंगे, सुनेंगे कौन है, कहाँ से और फरमाइश क्या है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम
0: जी, नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: संध्या कुमारी,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं संध्या जी?
1: हेमवरदान से
0: जी। कैसी हैं?
1: हम ठीक हैं, अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। इतना धीरे क्यों बोल रही हैं, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: तेज तो बोल रही
0: हूँ। ऐसे ही बोलिए।
1: बारिश आ रहा है उधर?
0: नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, हमारे यहाँ तो धूप निकला हुआ है अभी।
1: इधर तो बारिश आ रहा है।
0: तो थोड़ा बारिश इधर भी भेज दिया करिए। जा रहा है ना, ठीक है भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। गाना कौन सा सुनवा दें?
1: ये तो मेहंदी है, मेहंदी,
0: ये तो मेहंदी है, मेहंदी का रंग लाएगा ये वाला।
1: हाँ,
0: डेडिकेट भी करिएगा
1: आपको और सुन रहे रेडियो रे सब किसी को।
0: चलिए प्ले कर दिया गाना आपका, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल की, एंजॉय करिए गाने को।
1: थैंक यू।

और यहाँ रेडियो फैन पंकज जी फिर से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि दो बाल्टी हमरो यहाँ तो दो बाल्टी बरखा भलवा की का जरूर बताई। और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से शो में जुड़े खातिर और यहाँ और भी सारा मैसेज पहुँचल बाटे। और अभिमन्यु कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रवा निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बच्चे के परदादा का नाम बताइए।
1: लाला कैलाशनाथ मल्होत्रा।
2: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे थे कॉल के माध्यम से फरमाइश थी गाना का, और बिना देरी के अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वेरी वेरी सुपर सॉन्ग गाना फरमाइश करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मैसेज के साथ है नाम है इनका, घर वजोलिया से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए, नाम पता मेंशन नहीं है तो नाम जरूर मेंशन करिए आप कौन है कहाँ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि इसके नए गूथे थे जो इसके गूथे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगना भी ढीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए, शाखा पर गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। ओहो, और काफ़ी गहरा शायरी के साथ जुड़े हुए हैं मनीष कनौजिया जी, और शायरी में काफ़ी गहराई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज दिन में ज़्यादा काम होने के कारण आज का शो आधा अधूरा हो गया है, फाइनली सैड, तो उदास नहीं हुई है, कोई नहीं, आज आधा अधूरा हुआ तो फिर कल भी शो है, और मंडे टू सैटरडे रहता है तो आप अगले दिन सुन सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी है छोटपुर से मैसेज करने वाले, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि यमराज बोला प्राणी तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में, आदमी बोला मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो मैं कहीं भी रह लूँगा। बिल्कुल सही। और मैसेज के साथ है दिनेश मिश्रा जी, और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, और इंद्रदेव जी हैं और शंभु यादव जुड़ चुके हैं, शंभू जी हैं कुछ शंभु कुशवाहा बंजारी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अभी अभी फरमाइश पहुंची है तो प्ले करने की कोशिश है, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल प्ले कर देंगे, अभिमन्यु कुमार जी हैं और समय मिलते ही, बाकी यहाँ भी बहुत सारी फरमाइश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अभी किसके आसपास मेहंदी का पेड़ है और कौन कौन पेड़ के पत्ती वाली मेहंदी यूज करते हैं, तो किसके आसपास का पता नहीं, मेरे घर मेहंदी का पेड़ है और मैं पत्ता वाला मेहंदी यूज करती हूँ, और हाथ में भी और दूसरे बाल में भी मैं मेहंदी लगाती हूँ, और मेरे घर है, लेकिन सबसे बेकार लगता है उसको मेहंदी को तोड़ के लाना पेड़ से, पहले तो अच्छा लगता था अब नहीं लगता है, लेकिन है मेरे घर। और मैसेज करने वाले हैं रेडियो फैन पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके घर है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है ओल्ड इज गोल्ड गाने के, और गाने की फरमाइश के साथ है नंद कुमार शर्मा जी, तो एंजॉय करिए अपने गाने को, वो साजन बरखा बहार आई, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश करने वाले हैं नंद कुमार शर्मा जी और इन्होंने गाना सुन लिया और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहाँ से और जानते हैं इनकी फरमाइश को। हेलो, और यहाँ कॉल रिसीव करते हैं, कॉल कट चुका है, तो बढ़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, गाने की फरमाइश से रोता हूँ दुपट्टा तेरा ओढ़ के, शंभू कुशवाहा जी है बंजारी से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर प्ले कर दिए।
1: बिहार मस्ती.in

हाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जब भी तेरे बिना रात होती है, दीवारों से अक्सर बात होती है, सन्नाटा पूछता है हमारा हाल हमसे, और बस तेरे नाम से ही शुरुआत होती है। क्या बात है। और मैसेज साथ है अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और यहाँ मनीष कनौजिया जी हैं, लिख रहे हैं कि जुदाई तेरी जान ले गई, नाइस सॉन्ग। और पंकज जी हैं, रेडियो फैन पंकज जी, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, वैसे मच्छरदानी भी लगाया करिए, किसी दिन डेंगू मच्छर ना डस ले। तो मच्छरदानी हम लगाते हैं और मेरे घर बिना मच्छरदानी का कोई नहीं सोता है। फिलहाल इंजॉय करिए इस गाने को, जुदाई तेरी जान ले गई।
1: तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करते, तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करते, तुम्हें सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, पर जरा सा भी भूला नहीं हूं तुम्हें, पर जरा सा भी भूला नहीं हूं तुम्हें, वो अलग बात है कि तुम हमें याद नहीं करते।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी शंभू कुशवाहा जी की फरमाइश है जो कि है बंजारी से, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बाय बाय जी कल मिलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और रोहित जी हैं देहरादून से, अनिल जी है चोटपुर से लिख रहे हैं बाय बाय। और 3:59 हो चुका है और समय इशारा कर रहे हैं कि सो से दीजिए जाने की इजाज़त। और यहाँ एक और मैसेज है, नाम मेंशन नहीं है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग जुदाई तेरी जान ले गई, बहुत बहुत स्वागत है और फिर मिलेंगे कल आपसे। फरमाइश है तो कल प्ले करने की पूरी कोशिश रहेगी आपकी फरमाइश को, और जिनकी भी फरमाइश है आज बच चुकी है उन सभी के लिए ये आखिरी गाना छोड़ के जा रहे हैं। और इसी गाने के साथ आप सभी दीजिए मुझे आज की उस शो से जाने की इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे आप सभी से। नमस्कार।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
13: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।
14: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
15: रेडियो रिमझिम।
14: सुनो दिल।

0: जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में NH 27 पर, दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
2: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: All right.

हमारा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291।

0: टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

इस संसार भगवान के बनावल एगो अद्भुत रचना बा, जौना में तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदी पहाड़, ये सब भगवान के बनावल बा। इमे मनुष्य जमन शरीर बा, ये सब जूनी से सब प्राणी से सुंदर प्राणी बाई मनुष्य प्राणी। भगवान के ही कैसन रचना बा भैया, केहू सुखले में रहता, केहू जीवन भर पानी में आपन रह करके जीवन बितावता। एगो भक्त भगवान से कहले कि हे प्रभु, हमने राउर कर्जदार बनी। कहले कैसे,

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9493045651 या 97-0976-575।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: मान जा।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861464।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अब जीने का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
10: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
8: और 9097-6160-02।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, नाउ पिक योर फोन अप,
13: हेलो,
12: पिक इट अप, पिक इट अप,
13: हेलो,
12: Now pick your phone up.
14: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहाँ आपकी पसंद और आपकी फरमाइश से सजाती है इस सुरीले महफिल को। तो अगर आप भी अपने पसंद की गीत फरमाइश करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911 पर आप कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए अब वक्त है आज की पहली फरमाइश का। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता और कौन सा गीत बन रहा है उनकी पसंद की आवाज। आप सुनते रहिए हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी के साथ।

0: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी सोनी जी,
1: जी
0: बहुत दिनों के बाद मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
1: जी दे रहे तो भारती जी को रिकॉर्ड कर लीजिए अब आप। हाँ तो देखिए कॉल आया।
0: अच्छा तो बहुत बहुत भाग्य से मिला भाई, इसके लिए आपको सलाम, सौ सौ सलाम है ना। और आपका जो है वो क्या कौन फंक्शन था आपका, बर्थडे था ना?
1: जी जी
0: 28 को था।
1: जी 28 को ही था।
0: हम 28 को प्रोग्राम सुने की 29 को सुने हैं प्रोग्राम, पता हुआ कि आपका बर्थडे है हैं? और हवा में आपने मिठाई खिला रही हैं बादलों के साथ।
1: अब क्या करें, अब सबके पास तो पहुंच नहीं सकते ना।
0: वो बड़ा बढ़िया, वो कौन सा आदमी हो ऐसा बोल रखा था कि बादलों के साथ हवा में
1: है,
0: वो बड़ा अच्छा चुटकुला था। वो हम सुने तो हैरत हो गए, हम सोचते रह गए की सोनी जी बादल के सामने हवा के साथ मिठाई भेज रही है।
1: सबको केक चाहिए, सबके पास तो आदमी अवेलेबल नहीं हो सकता ना एक साथ में।
0: अच्छा उपाय था ये भेजने का तरीका, बहुत अच्छा मिला है ना। सुन के मतलब दंग रह गए उस दिन हम। मसाला आपका प्रोग्राम सही चल रहा है ना, इसके लिए हमारे तरफ तो बहुत बहुत दुआएं आपके तरफ है ना। आपको
1: लंबी आशीर्वाद है। जी जी बिल्कुल, आप ही लोग का आशीर्वाद है, अच्छा चल रहा है।
0: अच्छा तो चल ही रहा है, साथ में दुआ है, लंबी उम्र का भी दुआ है। आप खुशहाल रहे जहाँ भी रहे, अच्छे से रहे है ना। आज सोनी जी बहुत दिनों के बाद आप मिली है ना। आज हम मतलब आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, उस दिन रेडियो को सुने तब हमको पता चला।
1: अब ऐसे तो किसी को थोड़ी पता रहेगा, उसमें भी एक दो लोगों को पता था जिसकी वजह से सबको पता चला।
0: ना ना वो तो हो, हम पूछते रह गए बादलों के साथ हवा के साथ हो, सबको केक खिलाना, मिठाइयाँ खिलाना। हम सोचते रह गए बात कैसे सोच लिए कि हवा के साथ और बादल के साथ है ना। ये मतलब कोई किसी को दिमाग में नहीं आया ये बात। लेकिन हाँ उस दिन से खिला बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा लगा हमको। आप समझिए कि सोनी जी हम आपका मिठाई जो है खा ही दिए है उस दिन सुन के। नहीं दिल में ये भी हो रहा था कि मार्केट में अभी उठे जाए एक दो रसगुल्ला मुंह में डाल ले कह देंगे सोनी जी हम खा लिए,
1: वो भी अच्छा है।
0: अरे हमको उस दिन बड़ा प्रोग्राम हुआ, अच्छा लगा है ना।
1: मतलब आप चुपके चुपके तो सुनते हैं लाइव को?
0: हाँ लाइव तो सुनते हैं, लेकिन हम उसमें आते नहीं है।
1: वही ना बोल रहे हैं, जुड़ते नहीं है लेकिन चुपके चुपके सुनते रहते हैं।
0: हाँ हाँ सुनते रहते हैं, उस दिन कोई भी काम रहता है ना तो रेडियो लगा देता हूँ। रेडियो लगा के कोई हल्का फुल्का काम रहता है घर में मेंटेनेंस टाइप का, तो अपना काम करते रहता हूँ, ध्यान उसी पर रहता है हमको। हाँ सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका ये है ना। हेलो माय चॉइस से भी अच्छा हो प्रोग्राम को अच्छा लगता है। नहीं नहीं एक बात हमको ये है ना कि आप इतना स्पीड में आप आ जाती हैं, इतना स्पीड में हमको लगता है कि पार्टी पीपी की आप बोलती है क्या।
1: अब बताइए स्पीड में नहीं बोलेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे तो है कि हम नॉर्मल एक ही ठीक कर बात ना, वहाँ बहुत सारे लिस्नर होते हैं।
0: अरे बाबा मौसम तो हैरत हो जाता है, इसीलिए मैं सुनते हैं आप ही को स्पीड को मतलब देखता हूँ कि इतना स्पीड है, इतना लहजे में सोनी जी बोल रही है, कितना मतलब जो आवाज जो मुँह का जो आवाज निकलता है शब्दावली जो है एकदम क्लियर, या इंग्लिश से भी हो या हिंदी से भी हो सब क्लियर, ए टू जेड क्लियर। और देख के हम बहुत प्रसन्न होते हैं, इतना खुशी दिल में होता है कि हम क्या।
1: चलिए तो बात तो बहुत हो गई यार।
0: हाँ तब आपका आइए, अब मौसम ठंडा हुआ है ना तो ठंडे का मौसम का वो गाना कोई सुना दीजिए अपने चार से, कौन सा है ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए या नहीं तो सावन पे जो गाना होता है बारिश का।
1: सावन तो शुरू अगले महीने में होगा
0: जो। हाँ तब यही कोई गाना जो है बारिश वाला जो है ना, है ना कोई कोई कोई जो अपने तरफ से सुना दीजिए।
1: सावन से जुड़ा गाना सुना दे।
0: सावन तो बाद में है ना।
1: अच्छा तो अभी बारिश से जुड़ा। चलिए
0: बारिश से कोई ढूंढ के अपने तरफ से सुना दीजिएगा।
1: ओके
0: बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके तो सुनाइए मैडम।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किए।
0: थैंक यू।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
11: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
12: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
13: जी गुड मॉर्निंग मैम।
14: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
13: जी मैम सुनाता हूँ।
14: जी नाम बता दीजिए।
13: कितनो करूँ?
14: हाँ वो तो गाने का नाम है, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से? आपकी आवाज़ कट रही है।
13: जी मैम विजय रजक।
14: विजय
13: नाम हो गया, विजय रजक जी।
14: कहाँ से बात कर रहे हैं विजय रजक?
13: पटना कदम कुआ
14: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
13: जी मैम मनोज जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, राजू जी हैं, जितेंद्र जी हैं, हाँ इन सबको सुनाना है।
14: तो प्ले करेंगे
13: सरोज जी? हाँ मैम
14: जी। गाना प्ले करें आपका?
13: जी मैम।
14: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माई चॉइस में कॉल किया।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 में।
1: नमस्कार भारती जी, मैं धर्मेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
0: कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: बढ़िया है जी।
0: अभी क्या हो रहा था?
1: अभी बारिश हो रही है, बैठे हैं साइड पे आके, सामने ही हो रहा है बैठे हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: हमके बरस जड़ बाबू के पास जाना है, यही गाना सुनवा दीजिए।
0: और डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ, रंजीत तिवारी है, वरुण पांडे है, रेडियो रंजन श्रोता सुनेगा सारे आदमी।
0: ओके चलिए, तो प्ले कर दिए गाना आपका।
1: ठीक है, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707-06-575।
9: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
10: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट RJ सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
11: हेलो बेटा, रेडियो रिमझिम गोपालगंज जी।
12: जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
11: सोनी बेटा, प्यार से सत्कार भाई, सत श्री अकाल भाई।
12: सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है?
11: ठीक है बेटा, तुझी दसो भाई, थोड़ी ठीक है? थोड़े मम्मी पापा सारे ठीक है भाई?
12: सब कोई ठीक है, सब एकदम
11: चंगा भाई।
12: जी चंगा
11: बेटा, मैं पहले आपका परिचय दे दूं। परिचय देता हूँ पहले, तुम मुझे जानते हो,
12: फिर भी श्रोताओं को परिचय दे दीजिए।
11: हाँ बेटा, बताता हूँ।
12: जी जी,
11: मैं पिंड माउड़ खुद, जिला बठिंडा, पंजाब तो दीजिए मट्टू बोलना बेटा।
12: जी जी, तो आज गाना कौन सा सुनवा दे आपको
11: बेटा? आज मेरे दोस्त है, मेरे मान जो बड़े भाई पंखी लाल तेजा मोड़ी है, तो उन्होंने बेटा जन्मदिन आज बात छड़े, उन्होंने पहले अपने

0: सिम रेडियो गोपालगंज लख लख बधाइया दिना भाई ओना मट्टू भाई भी मोड़ वालों हाँ जी ते उन्होंने जन्मदिन से भाई तू गीत सुना दो आपकी मर्जी भी सुना दो को मैं बताऊ
1: बिल्कुल बताइए
0: आप बेटा और सुना दो हम तो अगर बच्चे होते हम तो अगर बच्चे होते ना वो हमारा तो पपलू लपलू खाने को मिलते लड्डू ऐसी बात तू ये गीत सुना दो बेटा
1: जी और ये गाना डेडिकेट किस रहेगा
0: हाँ बेटा मेरे मां जो बड़े भाई है प्रिंसिपल अमरजीत सिंह बाला साहब हाँ जी जवेंद्र सिंह तगड़ साहब खन्ने तो जी ते जी परमजीत सिंह बाघा पुराना जी ते मलकीत सिंह घड़ीजा ते सुखपाल सिंह नैशनल कॉलोनी बठिंडा ते सरदार भगत सिंह ढिल्लों बेटा आपको सत श्री अकाल बुला लिया बेटा
1: तो प्ले कर दे गाना
0: ठीक है बेटा धन्यवाद बेटा जी आउंदे रहो बाद बाबा नानक नु सत श्री अकाल सत श्री अकाल बेटा
1: सत श्री अकाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल
0: थैंक यू बेटा थैंक यू।

0: हेलो मैम नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं RMP से।
1: जी कैसे हैं सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे, अभी इंतजार खत्म हो गया मैम, फोन शामिल हो गया तो।
1: जी
0: जी जी जी मैम, आओ वहाँ का मौसम क्या हाल चाल है मैम?
1: आज तो काफी बढ़िया मौसम है, धूप हुआ है।
0: जी बारिश नहीं है क्या मैम? हमारे यहाँ तो अच्छा दबा के बारिश है मैम, हमारे यहाँ
1: कल हुई थी, हमारे यहाँ भी बारिश भयानक वाला दिन भर हुआ था।
0: जी जी जी जी मैम,
1: तो आज मौसम थोड़ा साफ हुआ है।
0: जी जी जी मैम
1: जी, तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: जी आज एक फरमाइश है, गाने के बोल है तुम्हें देखे मेरी आँखें,
1: मेरी
0: और सुनवाएंगे। जी जी जी, और सुनवाएंगे सबसे पहले आपको, कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
0: ओके मैम, धन्यवाद
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया साइड पेटी का पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 90971660 02।
10: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रिमझिम 90.4 FM।
11: जी जी नमस्ते नमस्कार डियर सोनी सिस्टर, कैसी हैं?
12: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं?
11: मैं तो ऑलवेज मस्त बिंदास झटका रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजा सिटी ए
12: जी। जी क्या
11: तो आज मौका मिला है तो सोचा बस सब ठीक है, ड्यूटी पे है, सोचा मौका मिला है तो थोड़ा हेलो माई चॉइस में कॉल लगाया जाए, बहुत दिन हो गया, बहुत सारे मुझे
12: बिल्कुल सही सोचे हैं।
11: जी जी तो सोचा क्यों ना थोड़ा हाजिरी लगा लिया जाए इसमें भी।
12: बिल्कुल बीच बीच में हाजिरी लगाना चाहिए।
11: तो तेरो शायरी तो नहीं सुना सकते, थोड़ा शेड्यूल बिजी है, मैं डायरेक्ट गाने का ही फरमाइश कर देता हूँ। मुझे कव्वाली सुना दीजिएगा, बहुत अच्छा कव्वाली है। तेरे चेहरे का चांद मुझे हर रात बुलाता है
12: जी जी।
11: लेकिन क्या करे, बहुत दूर है, कैसे आए यहाँ से, फ्लाइट से आना पड़ेगा।
12: फ्लाइट से आना पड़ेगा।
11: सुनवाना चाहते हैं आपके साथ एन ऑल लिसनर।
12: ओके
11: ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे।
12: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: नमस्ते
1: जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
0: गाना सुनना
1: जी? गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: रवि तिवारी, दिल्ली से।
1: क्या हाल चाल है रवि जी?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: जी बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: सैड सॉन्ग सुनवा दीजिए।
1: सैड सॉन्ग हिंदी या भोजपुरी?
0: भोजपुरी में।
1: भोजपुरी में किसकी आवाज में सुनिएगा?
0: किसी की आवाज में अपने पसंद से सुना दीजिएगा।
1: मेरे पसंद से, चलिए ठीक है फिर, तब बताइएगा सुन के कैसा लगा।
0: हाँ बताएंगे।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87894-18744।
12: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
13: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
14: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट RJ सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर, और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: हाँ प्रणाम जी।
16: जी प्रणाम, नाम बता दीजिए अपना।
15: रंकेश।
16: रंकेश, कैसे हैं रंकेश जी?
15: ठीक है।
16: चलिए
15: गाना सुने के बाद।
16: जी जी बिल्कुल सुनाएं गाना। कौन गाना सुने के बाद?
15: रक्षाबंधन के।
16: रक्षाबंधन के, रक्षाबंधन तो अगले महीने है ना?
15: हाँ अगले महीने का।
16: जी जी, तो रक्षाबंधन के कौन गाना है, कौन गाना याद हो के तो बता दी।
15: हिंदी गाना है, कौन है रक्षाबंधन के? हिंदी गाना।
16: हिंदी गाना, चलिए ठीक बात। और गाना डेडिकेट भी रहिए।
15: हाँ,
16: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
0: मनीष रजक फाइनल क्वेश्चन बोल सकते
1: हैं। जी, कैसे हैं मनीष जी?
0: ठीक है, अपना बताएं।
1: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
0: तो, क्या हो रहा है?
1: बस आप लोगों से बातें हो रही है।
0: गाना सुनना है, सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल सुना देंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: सोना के कदर सुन रहे जाने तोहरा के का मालूम।
1: एक बार और बताइए।
0: सोना के कदर सुन रहे जाने तोहरा के का मालूम।
1: सोना के कदर सुन रहे जाने। जी, और डेडिकेट भी रहेगा।
0: सबसे पहले आपको पूरा रेडियो सुनने वाले।
1: ओके, चलिए प्ले कर रहे हैं गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065775।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
7: Now pick your phone up. Hello? एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: जी नमस्कार मैडम।
8: जी नमस्कार,
9: मैं बिहार से ललन पासवान ग्राम डुमरामा से बोल रहा हूँ।
8: जी कैसे हैं ललन जी?
9: बस बढ़िया जी, आप सुनाइए।
8: हम भी बढ़िया है।
9: मौसम कैसा वहाँ का गोपालगंज?
8: आज तो मौसम ठंडा हुआ है लेकिन गर्मी है,
9: बारिश हुआ है, गर्मी मना हुआ है।
8: बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन बदली बदली है पूरा, क्या उमस जैसा होता है ना वैसे हुआ है। तो गाना कौन सा? जी जी बिल्कुल बता दीजिए नाम गाने।
9: बॉर्डर टू फिल्म का गाना सुनना था, संदेश आते हैं
8: और डेडिकेट भी करिएगा।
9: सबसे पहले आपको और बाकी जितने भी रेडियो सुनने वाले श्रोता करने सभी भाइयों को और मैं और मेरे समस्त परिवार सुनना चाहते हैं।
8: ओके तो प्ले करेगा ना?
9: जी मैडम।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय चॉइस में कॉल।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
5: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894 18744।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
12: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
13: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
14: नमस्कार जी।
15: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: जी मैं अजय प्रसाद बोल रहा हूँ दिल्ली से।
15: जी कैसे हैं अजय जी?
14: जी बढ़िया है, गाना सुनना था हमें।
15: सुनवाएंगे
14: मोर धनिया हो कायर उछल बाड़ी, भोजपुरी गाना है
15: मोर धनिया हो। ये
14: जी जी
15: किसका है, समर सिंह वाला?
14: जी कोई सा भी बजा दीजिएगा।
15: अच्छा कोई सा भी
14: जी,
15: और डेडिकेशन करिएगा
14: जी। लड्डू सा है, इंतजार जी है, ब्याज जी है, दीपक जी हैं, शंकर जी हैं, और सारे हमारे रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों के।
15: चलिए गाना प्ले कर रहे हैं
14: जी।
15: बहुत बहुत धन्यवाद, कॉल किया।

0: डॉन बात चलो।
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी शुक्रिया।
2: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, अब तो बारिश भी होने लग रहा है।
2: हमारे यहाँ तो काफी उमस है अभी।
1: हाँ जी, चार दिन से लगातार बारिश हो रहा है, घर से निकलना नहीं हुआ।
2: चलिए कम से कम मौसम ठंडा तो हो गया है।
1: जी जी जी
2: जी। तो गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: फिल्म नमक हलाल से सुनवा देंगे, आज रपट जाए तो हमें ना।
2: जी जी, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: दीपाल गोयल जी है, लोकेंद्र वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है, और तमाम साथ
2: ही तो प्ले करे गाना।
1: जी जी धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लंबाई चॉइस में कॉल की।
3: अरे अरे अरे ना ना ना।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: पिक इट अप, पिक इट अप।
13: हेलो,
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: Jab phone bande bande hai to kehte hain hello.
8: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म. एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत. आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर. अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029494911. जी हाँ 8029494911. और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार बुधवार शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक. तो चलिए दोस्तों अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का. जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़. तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर. सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर.
15: अस्सलाम वालेकुम, मैं मुन्ना दिल्ली से.
8: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में.
15: वो गाना सुने?
8: जी बिल्कुल सुना देंगे गाना.
15: और कोई अपना पसंद के वो सुना दे.
8: किकरा आवाज में सुने मैं बताई.
15: पवन सिंह के होके ना जो खेसारी के होके. हम धनेश मिश्रा भी है साथ में, ये भी सुन के
8: धनेश मिश्रा से पूछ लेम कि कैसा गाना सुनल जला रेडियो पे एक बार. ठीक बा
15: ठीक बा.
8: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करें.
15: धन्यवाद.

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगसिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
1: मनीषा कुमारी प्रयास सुंदर से
0: जी। कैसी हैं मनीषा जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: और सब?
0: सब बढ़िया है। आप लोगों से बातें हो रही है अभी? खाना वाना हुआ आपका?
1: हाँ हो गया। आपका?
0: मेरा भी हो गया है। तो गाना कौन सा सुना दे आज मनीषा जी आपको?
1: मैम एक दिन और आप कॉल ली थी तो गाना नहीं बजा।
0: हाँ तो नहीं चला है, कुछ कॉल बचे हुए हैं, 2-3 कॉल है मेरे पास, दो क्या आज चल जाएंगे। ठीक है
1: जी। तो आज दिन अपने पसंद को फरमा दी थी, आपको पसंद के बोला था फरमाने के लिए, तो अपने पसंद से फरमा दिया, जब अपने पसंद से सुनवा दीजिए।
0: अच्छा तो आज हम आप मेरे पसंद से सुनिएगा।
1: हाँ
0: ओके। तो एक हेल्प करिए कि आपको कब का गाना सुनना है, ओल्ड इज गोल्ड चाहिए, मिडिल सॉन्ग चाहिए 90s का, या फिर नया में?
1: हिंदी सुना दीजिए, पुराना।
0: हिंदी पुराना 90s का?
1: जी मैम।
0: ओके चलिए फिर ठीक है। और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी मैम, आपको और दिव्या मैम को और धरती मैम को और अपनी दीदी को और रिंचिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरती को।
0: ओके चलिए तो प्ले करेगा ना?
1: जी मैम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल की।
1: जी मैम, थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Your phone.
2: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के हेलो माई चॉइस से विदा लेने का। आपकी फरमाइशों और प्यार ने इस महफिल को और भी खास बना दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए मुझे यानी आरजे सोनी को जाने की इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, लेकर आएंगे आपकी पसंद के और भी खूबसूरत गीत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 90765-65750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
9: क्यों, क्या हुआ है?
8: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
9: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
8: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
9: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
11: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में में 9693101611।
4: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602। भोरे ब्रांच में 8207856404।
6: सिवान ब्रांच में 9942071405। मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: एपिसोड 33 3-3।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हट रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हो बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
14: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

0: मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: ओम नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
9: बोलबम, हर हर महादेव।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
11: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
12: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
10: और 90-97-61-60-02।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
14: क्या

0: बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की
2: उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी NDA की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री चौधरी आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ, आतंकवाद और अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है।
3: दो चीजों से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। एक, कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इसमें जो घुसपैठी है इससे भी समझौता हमारी सरकार कभी नहीं करेगी साथ। क्योंकि अपराध को, अपराधी को जाना होगा, बिहार छोड़ना होगा। अपराध के लिए कोई जगह नहीं है साथियों, उसी तरह घुसपैठियों के लिए भी कोई जगह नहीं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांचल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज में अगले वित्तीय वर्ष में एयरपोर्ट निर्माण शुरू हो जाएगा, साथ ही जल्द ही अररिया को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भी सौगात मिलेगी।
3: हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, इस पूरे जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ से पूरे जमीन की व्यवस्था करके दे दिया है और हम लोगों ने भी तय कर दिया है अगले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर एयरपोर्ट का काम भी शुरू करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। किसी दिन आएंगे और आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने का काम करेंगे साथियों।
2: श्री चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अब तक 4,53,000 लोगों ने आवेदन किया। इसमें मात्र 27,000 आवेदन ही लंबित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और इसके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश की सभी पंचायतों में भी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में अब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले राजमार्ग, बड़े पुलों, बाईपास और सुरंगों पर टोल टैक्स देना होगा। सरकार ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर नई टोल नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही टोल टैक्स देना होगा, निजी वाहनों को किसी प्रकार का टोल नहीं देना होगा।
3: कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। टोल टैक्स तो कॉमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है, बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाएगा।
2: इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि अलग अलग सड़कों के लिए वाहनों की श्रेणी के हिसाब से टोल टैक्स का निर्धारण किया गया है।
4: नई व्यवस्था के तहत 2 लेन से अधिक और 4 लेन से कम चौड़ाई वाले स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे की निर्धारित दर का 60% टोल लिया जाएगा। 4 लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 100% और 4.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर 50% टोल लिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्मित 250 मीटर लंबाई वाले बाईपास और सुरंगों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि टोल टैक्स सिर्फ उन्हीं रास्तों पर लागू होगा जहां वैकल्पिक मार्ग की सुविधा नहीं है। टोल की वसूली फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगी। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों, दोपहिया वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों, तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे वाहनों को टोल टैक्स से नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 3 गुना तक जुर्माना देना होगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
2: भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। अभिषेक कुमार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
5: मेरे जैसा कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। आज भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व पर भरोसा किया है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी बांकीपुर के कार्यकर्ता, बांकीपुर की जनता का।
2: गौरतलब है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को जबकि जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है। जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी और शोषित समाज दल ने सिकंदर कुशवाहा को मैदान में उतारा है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पटना में 10 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा।
6: पांचों पार्टी के जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में रहेंगे, एनडीए के सारे मंत्री रहेंगे और जो सीनियर लीडर हैं सारे लोग रहेंगे और पर्पस एक ही है, जो सरकार काम कर रही है उनसे भी फीडबैक लेना, हर एक जिला का जो सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है। और उस बैठक में नीतीश जी भी रहेंगे और मेरे ख्याल से पूरा एनडीए का उद्देश्य एक ही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है वो जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा करके अगले 5 साल में ये सरकार करके दिखाएगी।
2: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में, जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने सुपौल से दरभंगा तक पेड़ियामंच और मधेपुर होते हुए नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस संबंध में पत्र जारी कर जल्द से जल्द DPR तैयार करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया। देश में E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि E20 ईंधन पूरी तरह परीक्षण के बाद लागू किया गया है और इससे वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों और वाहन निर्माताओं के परीक्षणों में E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया। माइलेज में इथेनॉल की कमी ऊर्जा क्षमता के कारण मामूली कमी संभव है, लेकिन वाहन के प्रदर्शन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि E20 पेट्रोल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से बैजू कुमार झा।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को 24 घंटे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की सुविधा मिलेगी। आज पटना में LNJP अस्पताल के निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: हमने कहा है इन्हें कि रेडियोलॉजी जो है, सीटी स्कैन MRI, वो 24 घंटे होना चाहिए और पैथोलैब जो होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, उसको भी 24 घंटा होना चाहिए। और समाधान कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट को दवा मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, उनका सीटी स्कैन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी की सुविधा मिलनी चाहिए उन्हें, और उनका जो है डॉक्टर जो है टाइम से ड्यूटी पे रहे वो करें।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्वी चंपारण जिले के फेनहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालू पाकर गांव में मोहम्मद कलामुद्दीन नामक एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने उससे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद कलामुद्दीन पर युवकों को झांसा देकर कंबोडिया भेजने का आरोप है। इस मामले में उसे 13 जुलाई को पटना में पेश होने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंचल नगर गांव में एक निर्माणाधीन चारदीवारी के पास बम विस्फोट हो गया। धमाके में 2 लोग घायल हो गए, जिनका DMCH में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के मठियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाला सिंहमा के पास पुलिस और DIU की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के मधुबन स्थित एक किराना दुकान से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 30 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पटना के हाथीदह थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 कार से 1 क्विंटल गांजा बरामद कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 1 किलो गांजा और एक पिस्तौल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी चंपारण जिले के हरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमावर्ती इलाके से एसएसपी और पुलिस की टीम ने यूक्रेन की एक महिला को गिरफ्तार किया है। वे बिना वैध कागजात के नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी। बरौनी रिफाइनरी के समक्ष प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर सदर डीएसपी आनंद पांडे ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत भंदोसी गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी बच्चू राम को गिरफ्तार कर लिया है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन में बांका जिले को राज्य भर में पहला स्थान मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीमावर्ती जिलों को घुसपैठ मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, सरकार सीमांचल के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश में नई टोल नीति लागू, मुख्यमंत्री ने कहा, स्टेट हाईवे पर केवल कॉमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जुलाई को पटना में होगी एनडीए की बैठक। और मौसम विभाग ने कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
5: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: एपिसोड 33।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434403।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
14: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है
3: पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
3: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
4: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 8570-32042 पे।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207885604,
0: सिवान ब्रांच में 9942।

0: 0-7-1-4-0-5 मेरवा ब्रांच में 8-2-0-7-8-5-6-4-0-3।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
5: सकते हैं, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
7: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
6: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
7: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
7: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
6: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
7: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
6: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
8: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
9: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
6: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
10: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
6: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
11: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
6: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
12: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
6: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
9: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
6: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
13: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
6: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
15: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
16: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
17: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
19: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
20: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
19: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
20: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
19: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
20: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
19: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
20: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
21: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
22: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
19: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
20: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
19: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
22: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
20: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
22: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
20: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
23: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
23: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
23: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
24: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
25: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
24: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
26: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। 3 दिन से लापता युवक का उत्तर प्रदेश में मिला शव, कुख्यात अमरेश शाही की संपत्ति होगी जब्त, 15 लाख रंगदारी मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की स्कॉर्पियो के साथ 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, प्रभारी मंत्री ने किया जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक, जनता की समस्याओं पर भी की गई सुनवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिले में एक बहुत बड़ी खबर आई, बताया जा रहा है कि अचानक मोटरसाइकिल से पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी शहर में घूमने निकल गए। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने खुद बाइक से विभिन्न इलाकों का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने खुद मोटरसाइकिल चलाई जबकि जिला अधिकारी पीछे बैठे थे। दोनों सर्किट हाउस से निकलकर वेयर हाउस, पुलिस लाइन और फिर थाने दुर्गा मंदिर पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक, साफ सफाई और आम लोगों से जुड़ी समस्याओं का निरीक्षण किया गया। बाइक से निरीक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को बिना किसी औपचारिकता के शहर की वास्तविक स्थिति और आम जनता की समस्याओं की सीधे जानकारी लेना बताया जा रहा है। अब मुख्य खबरों की ओर आते हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से लापता एक युवक का शव उत्तर प्रदेश से पुलिस ने बरामद किया। मृतक विजयपुर के मझवलिया बाजार का रहने वाला डिग्री राम बताया जा रहा है। ये 3 दिन से गायब थे और इनका शव उत्तर प्रदेश के पाकहा स्थित शराब भट्टी के पास झाड़ियों में संदिग्ध स्थितियों में मिला। सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कुख्यात अपराधी अमरेश शाही के करीब 14 करोड़ रुपए के संदिग्ध संपत्ति का खुलासा कर पीएमएलए के तहत कार्रवाई के लिए ईओयू को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के इस प्रस्ताव में जमीन, मकान, ट्रक, बस, जेसीबी, स्कॉर्पियो, बुलेरो समेत जांच के दायरे में कई संपत्तियां आई हैं। पुलिस का दावा है कि अपराध से अर्जित धन से बनाई गई यह संपत्तियों पर अब विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसको जब्त भी किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के अन्य संगठित अपराधियों की भी अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। इधर मीरगंज थाना की पुलिस ने लाखों रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में चर्चित अपराधी सद्दाम नट को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन से अपराधी ने कई लोगों से रंगदारी मांगी थी। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने अब इसे गिरफ्तार किया है और इसमें आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा का आज गोपालगंज में आगमन हुआ था। इस दौरान उन्होंने सहयोग शिविर में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि हथुआ के सेमराव में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था, जहां प्रभारी मंत्री ने उसकी अध्यक्षता की और शिविर में प्राप्त आवेदनों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष बल दिया गया। सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जन को सुशासन एवं बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बताया जा रहा है कि पंचायत सरकार भवन पर हुए इस आयोजन में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को सुना गया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने जिला समाहरणालय में पहुंचकर यहां सभी विभाग के अधिकारियों के साथ जिला पदाधिकारी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और उन्होंने एक एक बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए विकास कार्यों को गति देने और जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गोपालपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए लाचपुर तकियाबारी नहर पुल सड़क के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को पकड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर वाहन चालक वाहन लेकर भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर वाहन को पकड़ा और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों की पहचान शहजाद आलम, पिता जैनुल हक, साकिन पकौली नारायण थाना फुलवरिया, फैजल रजा, पेशर सोहेल अहमद, साकिन हथुआ दक्षिण टोला थाना हथुआ जिला गोपालगंज और इमाम हुसैन पिता नसरुल्लाह मियां, साकिन इजमाली टोला थाना बड़हरिया जिला सिवान बताया जा रहा है। इनमें शहजाद आलम और फैजल रजा का कई आपराधिक इतिहास है। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर लगभग दर्जन भर मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इनके पास से चोरी की स्कॉर्पियो मिली और एक फर्जी नंबर प्लेट भी मिला है, जिसको पुलिस ने जब्त किया है और इस पूरे मामले में आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है। हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर लच्छीराम गांव के रहने वाले फल व्यवसायी गोपाल शाह पर पटना में गोली चलने की खबर आई। बताया जा रहा है कि पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की, जिससे फल दुकान में काम करने वाले एक मजदूर को गोली लग गई। घायल मजदूर को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है और पुलिस वहां की इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी राकेश कुमार पिता चुन्ना मांझी साकिन चरखरवा थाना मोहम्मदपुर बताया जा रहा है। शहर के साधु चौक के पास राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर कुछ संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में जांच पड़ताल की है। बताया जा रहा है कि मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ा किया गया था, जिसके वजह से आने जाने वालों पर सख्त निगरानी रखी गई थी। फिलहाल एनआईए या स्थानीय प्रशासन की तरफ से इसमें कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण कर वहां की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी, अग्निशमन एवं सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रखरखाव का भी गहन जायजा लिया। कुचायकोट पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी खुर्शीद आलम, दूसरा शाहिद हुसैन और तीसरी एक महिला है। इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इन लोगों पर कुचायकोट थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। जादोपुर थाना क्षेत्र के भोजली गांव में सोमवार की देर रात एक हादसे में 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार सीढ़ी से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक भोजली गांव के प्रभु राय पिता वासुदेव राय बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अर्जुन कुमार और दूसरा राजू मांझी हैं। ये दोनों बब्बन मांझी के पुत्र हैं और मोहम्मदपुर के पीपरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे 90 पर पकड़ी मोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार वाहन ने 63 वर्षीय साइकिल सवार वृद्ध को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर तक शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया है। माझा थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी नामजद आरोपी शाहिद अली को गिरफ्तार किया, जो माझा के पिपरा गांव के कयामुद्दीन हुसैन का पुत्र बताया जा रहा है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जिले के 3 परिचारियों को परिचारी प्रवर के पद पर प्रोन्नति देते हुए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक ने प्रोन्नत परिचारी प्रवर को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने नवीन दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ करेंगे तथा विभाग की गरिमा एवं कार्य कुशलता को और अधिक सुदृढ़ करें। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गंडक नहर पुल पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सोमवार की देर रात नहर में पलट गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के मदद से काफी मशक्कत के बाद वाहन को नहर से निकाला गया। पुलिस के अनुसार हादसे में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। मालिक और वाहन चालक गाड़ी में से फरार हो गए थे, उनकी भी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 3 दिन से लापता युवक का उत्तर प्रदेश में मिला शव। कुख्यात अमरेश शाही की संपत्ति होगी जब्त। 15 लाख रंगदारी मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की स्कॉर्पियो के साथ 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। प्रभारी मंत्री ने किया जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक। जनता की समस्याओं पर भी की गई सुनवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
5: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट
6: थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम, हर हर महादेव।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
12: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
27: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
28: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
27: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
28: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
27: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
28: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
29: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
27: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
30: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे समय 9:21 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि हर रोज़ की तरह आप लोग से तो बातें हर रोज़ बताई जाती है कि पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना है और पुराने गाने के साथ एंजॉय करना है। तो आप पुराने गाने यदि पसंद करते हैं तो बिल्कुल अपने पसंद को सुन सकते हैं इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश करके। तो यदि फरमाइश करना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें। मैसेज का नंबर 72 77 16 65 96 है। कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, मुझको दफना कर वो जब वो वापस जाएंगे। माय नेम इज़ दीपक एंड जेलर। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्ते, सॉन्ग दिल ने कहा, और इस मैसेज को करती है निशा शुक्लवा से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो नमस्ते सर, मैं निर्मला कुमारी जादवपुर से और मुझे सॉन्ग सुनना है, मत जा बलमुआ दिल हमार तोड़ के। तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूं तो बिल्कुल बढ़िया हूं। और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। रोहित जी देहरादून से, बारिश हो रहा है, ओहो इधर तो बारिश अभी नहीं हो रही है। और हाँ, बीती रातें 11:30 के करीब में थोड़ी सी बारिश हुई और आज पूरे दिन बादलों वाला रहा, बादल छाए हुए थे और हो सकता है कि रात में बारिश हो इधर भी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि हेलो हाय, क्या हाल है सर जी, मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है, मैं तो बढ़िया हूँ, आपने भी बताएं कि आप कैसे हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज, गाना सांसों की माला जपते जपते। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और बढ़ते हैं आगे और पहले गाने की फरमाइश पूरी करते हैं दीपक एंजेलर जी की, मुझको दफना कर जब वो वापस जाएंगे। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो एमसी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277 16 65 96। बस आपसे विनती है कि आप 90s के गाने या ओल्ड इज गोल्ड गाने की फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश हम आपको सुना सकें। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, और तो आगे मैसेज शामिल करते हैं और गाने की फरमाइशों वाला मैसेज बता देते हैं। अगली गाने की फरमाइश पूरी करेंगे, और इस गाने की फरमाइश करती हैं निशा शुक्लवांश, और गाने का बोल देती हैं क्या दिल ने कहा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स थैंक्स थैंक्स थैंक्स। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए, और इतने थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, एक से काम चल जाएगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय क्या हाल है, हमारा भी वेलकम कीजिए। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं शबीना एंड साबा फ्रॉम दुलुलिया से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, नमस्ते नमस्कार भाई शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में शगीर जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूं, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि ए दोस्त तेरी दोस्ती पर नाज है, हर वक्त मिलने की फरियाद करते हैं, हमें नहीं पता घर वाले बताते हैं, हम नींद में भी आपसे बात करते हैं। ओह अच्छी बात है। और इस मैसेज को करते हैं राघव जी। तो बिल्कुल राघव जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश क्या दिल ने कहा।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले हैं
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुआ और आगे लिखा गया कि थैंक्स, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया काफ़ी प्यारा सॉन्ग और मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिंक के भेजे हैं वो सॉन्ग चला दीजिएगा, बिल्कुल चलाने की कोशिश रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ पहले से जो हमारे श्रोतागण मैसेज के द्वारा गाने के फरमाइश किए उनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, कहा जा रहा है कि सर पुराना सॉन्ग है पवन सिंह का, तो चलिए इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश करती है निर्मला जादवपुर से, और गाने का बोल देती है मत जा बलमुआ हमरो दिल तोड़ के। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे।

अभी दर्द भरा गाना सुन रहे हैं हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे भोजपुरी में, और हमें लगता है इंदु सोनाली की आवाज़ में सुन रहे हैं, और सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए, तो आगे भी गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश करती हैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, और गाने का बोल दिया गया है इसे खेल ना समझो सनम जी, मैंने तुझे प्यार किया। डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर एसम प्रियांशी पूजा, कुछ प्यारे प्यारे रेडियो दोस्त हैं रानी रजनी संतरा कुशवाहा सविता चौहान आशा चौहान नीतू सिंह निशा सिंह निशा भारती शबीना अपी सजदा अपी गुड़िया अपी शिल्पी सिस्टर इरफान भैया कमरान भैया हरकेश भैया समीर भैया गुलाम भैया दिलीप भैया वीरेंद्र भैया लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और यहाँ पे करती हैं ओहो अपने बलमुआ जी को रासा से बांध लीजिए, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे काफ़ी दर्द भरा सॉन्ग, बिल्कुल आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिखा गया है कि कभी गम तो कभी तन्हाई मार गई, कभी याद आकर उनकी जुदाई मार गई, बहुत टूट कर चाहा जिसको हमने आखिर में उसकी बेवफाई मार गई। क्या बात है सुपर सॉन्ग पवन सिंह का, और इस मैसेज को करते हैं राघव जी। आगे बढ़े यहाँ पे, आगे मैसेज तो पहुँचते जा रहे हैं, तो लेकिन मैसेज को रोकते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रोशनी की। इंजॉय करते हैं इनके गाने के साथ हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रहा, डरे रम छिम 90.4 FM पे छोटा सा रहा लेकिन काफ़ी प्यारा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज और गाने की फरमाइश करते हैं राघो जी, और गाने का बोल देते हैं आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू बाबू क्या हाल खबर है, हम भी जुड़े हैं भाई और मेरा भी एक सॉन्ग सुना दे। फिल्म है वतन के रखवालो, स्वर है मोहम्मद अजीज़ अनुराधा पौडवाल जी और सॉन्ग जब प्यार किया इकरार किया। ओहो, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब राघव जी के गाने के साथ इंजॉय करते हैं हम सभी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

0: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अब मेरा भी गीत सुना दें भाई। तो चलिए आप ही के गीत सुनाने ही वाले थे और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और गाने के फरमाइश करते हैं मोहम्मद अजीज़ एंड अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ों में प्यार किया इकरार किया। डेडिकेट पहले मैडम जी को रोशनी हिना हाजरा शब्बा आशा सबीता सबीना गुड़िया सफाक साजा खुशी निशा ब्यूटी नीतू सिंह एंड हमारे प्रिय सोनू बाबू और दिलीप भाई फ्रॉम खिखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज कुछ पहुंचा हुआ है और अंकुश जी मैसेज करते हैं रिपीट, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है, कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है। बिक जाता है हर रिश्ता इस जमाने में, सिर्फ दोस्ती ही यहाँ नोट फॉर सेल है। थैंक यू सर गाना प्ले करने के लिए और दिल से थैंक यू आपको, और गुनगुनाने के लिए भी दिल से थैंक यू। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और काफ़ी दिन बाद जुड़े हैं कार्यक्रम में, साप्ताहिक जुड़ते रहिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4।
0: प्लीज़ हमारा भी सॉन्ग सुना दीजिए, बिल्कुल लेके करके सबकी फरमाइश पूरी करें जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए और आप सुन ही रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं

रेडियो एमसीएम 94.4 FM सुन रहे हैं, काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे अभी हम सभी और मोहम्मद अजीज एंड अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में। और इस गाने के फरमाइश किए थे वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सल ने बाल बडर से। और आगे कई मैसेज पहुँचे हैं, कुछ तो देखा जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, और हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम जी इस मैसेज को करते हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे मैसेज में लिखा गया है कि वो रात भी क्या रात होगी जिस रात उसकी बारात होगी, दिल बेचैन है अब ये सोचकर मेरी मोहब्बत अब किसी और के साथ होगी, पत्थर भी टूट गया पानी से जब किरदार हुआ अलग कहानी से, अब उसे भूल जाना ही बेहतर होगा मेरे दोस्त वरना ये लड़का हाथ धो बैठेगा जवानी से। बिल्कुल बढ़िया सोचे हैं सनोज जी, और भूल जाना ही बेहतर होगा। बड़ेरिया थाना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं अंकुश कुमार जी, और गाने की फरमाइश करते हैं सांसों की माला जपते जपते। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने और रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे आप सब भी इंजॉय करें इनके गाने के साथ और हम भी हैं।

4 FM सुन रहे हैं आप सब, और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं अभी हम सभी। और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है शुभम कुशवाहा जी की तरफ से बंजारी से, और गाने की फरमाइश करते हैं, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, बोतल तो एकदम स्थिर रहती है जहाँ रख दी जाए, बस जिसको लेना है वो नाचने लगते हैं। तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और आप ही के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को भी हम समाप्त करेंगे। और आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सनु बाबू, मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए शुक्रिया करते हुए ड्रीम स्वीट वीरेंद्र गुप्ता भैया मैसेज करते हैं। चलिए आपको धन्यवाद है, और रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और इस मैसेज को करते हैं अंकुश जी, और फिर से वही मैसेज रिपीट करते हैं, तो वही मैसेज रिपीट नहीं करना है बार बार। आपकी फरमाइश हम सभी सुन चुके हैं, और शायद आप भी सुन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और आगे मैसेज में लिखा गया है कि किसी को इतना भी हक मत दो कि फैसला वो करे कि कब आपको रोना है और कब आपको हंसना है। बिल्कुल, और इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी, और आगे कई मैसेज टाइप कर रहे हैं शायद, तो हमारा तो समय जो है समाप्ति का हो चुका है, तो हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और फिर अगले दिन मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में। तब तक आप सब सुनते रहें रेडियो 96.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: तक मैंने लाखों आदमियों के सामने शो किए, लेकिन ऐसी दाद ना किसी ने दी और ना ही शायद कोई दे सकेगा। आप हंसे क्यों?
1: हंसी, आजकल के दौर में हंसी की फसल उगती कहां है मीना जी? या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है?
2: अरे वाह वाह वाह वाह वाह बरकुरदार वाह, हमारी बात सच निकली ना, आ गया ना शेर में वजन, बात को जितना बढ़ाओगे वजन और बढ़ता जाएगा।
0: आपकी तारीफ?
1: इनकी तारीफ क्या करें मीना जी, ये तो सर।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल,

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमरीका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: मुकेश, मुकेश, ओ मुकेश ड्राइवर।
3: क्या मैडम, आप भी जो है ना नींद से जगा देती हैं।
2: उठो, हमें अभी पार्टी में जानी है पटना, गाड़ी निकालो जल्दी।
3: अरे आप मुझे नौकरी पर रखी हैं कि हमेशा के लिए नौकर बना रखी हैं?
2: ओ शट अप नॉनसेंस, जल्दी गाड़ी निकालो।
3: ए मैडम, अपनी भैया की इज्जत है।
2: वो मुझे पता है कितनी इज्जत है, जल्दी गाड़ी निकालो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: ए शंभु बाबा, अरे आजकल के सिचुएशन देखो तनी, हई आंगनबाड़ी में बड़ा कुछ पोषाहार बांटा था लेकिन मैं खा जाता रही सब।
1: ओए बबुआ, गवा गाई आंगनबाड़ी स्कूल खुल गई बा, में खिचड़ी बनता।
0: हाँ।
1: लेमन चूस मिलता।
0: लेमन चूस?
1: हाँ।
0: अरे बाप रे, कोई चूसनी है कि ना?
1: नाए बबुआ, हम जाइले तो कहला से ए बाबा ई लड़का सके बताई।
0: अच्छा रहुआ के ना
1: तहरा ना भेटा,
0: बुढ़ारी में खाए तो नस बैठ जाए। आए हाय हाय आ हा, अरे बड़ा गजन होता है।

0: भैया और का का होता?
1: Get up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहाँ आपकी पसंद और आपकी फरमाइश सजाती है इस सुरीले महफिल को। तो अगर आप भी अपने पसंद की गीत फरमाइश करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911 पर आप कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए अब वक्त है आज की पहली फरमाइश का। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता और कौन सा गीत बन रहा है उनकी पसंद की आवाज। आप सुनते रहिए हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी के साथ।

0: नमस्कार
1: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका
0: जी। सोनी जी, बहुत दिनों के बाद मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
1: दे रहे तो भारती जी को रिकॉर्ड कर लीजिए अब।
0: हाँ,
1: तो देखिए कॉल आया।
0: अच्छा, तो बहुत बहुत भाग्य से मिला भाई, इसके लिए आपको सलाम, सौ सौ सलाम है ना। और आप जो है वो क्या कौन फंक्शन था आपका, बर्थडे था ना?
1: जी जी,
0: 28 को था।
1: जी 28 को था।
0: तो हम 28 को प्रोग्राम सुने की 29 को सुने हैं प्रोग्राम, पता हुआ कि आपका बर्थडे है, हैं? और हवा में आपने मिठाई खिला रही है बादलों के साथ।
1: अब क्या करें, सबके पास तो पहुंच नहीं सकते ना।
0: वो बड़ा बढ़िया, वो कौन सा आदमी ऐसा बोल रखा था कि बादलों के साथ हवा में
1: मिठाई देना
0: है? वो बड़ा अच्छा चुटकिला था वो, हम सुने तो हैरत हो गए। हम सोचते रह रहे की सोनी जी बादल के सामने हवा के साथ मिठाई भेज रही है।
1: सबको केक चाहिए, सबके पास तो आदमी अवेलेबल नहीं हो सकता ना एक साथ में।
0: अच्छा उपाय था ये भेजने का तरीका, बहुत अच्छा मिला है ना, सुन के मतलब दंग रह गए उस दिन हम। मसाला आपका प्रोग्राम सही चल रहा है ना, इसके लिए हमारे तरफ तो बहुत बहुत दुआएं है आपके तरफ है ना। आपको लंबी
1: उम्र का आशीर्वाद है। जी जी बिल्कुल, आप ही लोग का आशीर्वाद है, अच्छा चल रहा है।
0: अच्छा तो चल ही रहा है, साथ में दुआ है, लंबी उम्र का भी दुआ है। आप खुशहाल रहे, जहाँ भी रहे अच्छे से रहे है ना। आज सोनी जी बहुत दिनों के बाद मिली है ना, आज हम मतलब आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। उस दिन रेडियो को सुने तब हमको पता चला।
1: अब ऐसे तो किसी को थोड़ी पता रहेगा, उसमें भी एक दो लोगों को पता था जिसकी वजह से सबको पता चला।
0: ना ना, वो तो हो, हम पूछते रह गए बादलों के साथ हवा के साथ हो, सबको केक केक खिलाना, मिठाइयाँ खिलाना। हम सोचते रह गए बात कैसे सोच लिए कि हवा के साथ और बादल के साथ है ना, ये मतलब कोई किसी को दिमाग में नहीं आया ये बात। लेकिन हाँ, वो दिन सिलसिला ये बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा लगा हमको। आप समझिए कि सोनी जी हम आपका मिठाई जो है खा ही दिए है उस दिन सुन के। नहीं, दिल में ये भी हो रहा था कि मार्केट में अभी उठे जाए एक दो रसगुल्ला मुंह में डाल ले, कह देंगे सोनी जी हम खा लिए।
1: वो भी अच्छा है।

0: अरे हमको उस दिन बड़ा प्रोग्राम हुआ, अच्छा लगा है ना।
1: मतलब आप चुपके चुपके तो सुनते हैं लाइव को?
0: हाँ लाइव तो सुनते हैं, लेकिन हम उसमें आते नहीं है।
1: वही ना बोल रहे हैं, जुड़ते नहीं है लेकिन चुपके चुपके सुनते रहते हैं।
0: हाँ सुनते रहते हैं। उस दिन कोई भी काम रहता है ना तो रेडियो लगा देता हूँ। रेडियो लगा के कोई हल्का फुल्का काम रहता है घर में मेंटेनेंस टाइप का, तो अपना काम करते रहता हूँ, ध्यान उसी पर रहता है हमको। हाँ सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपको ये है ना। हेलो माय चॉइस से भी अच्छा हो प्रोग्राम हमको अच्छा लगता है। नहीं नहीं एक बात हमको ये है ना, आप इतना स्पीड में आप आ जाती है, इतना स्पीड में हमको लगता है पार्टी पीपी की आप बोलती है क्या।
1: अब बताइए स्पीड में नहीं बोलेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे तो है कि हम नॉर्मल एक ही कर बात
0: ना,
1: वहाँ बहुत सारे
0: लिस्नर
1: होते हैं।
0: अरे बाबा मौसम तो हैरत हो जाए, इसीलिए हम सुनते हैं आप ही को स्पीड को, मतलब देखता हूँ कि इतना स्पीड है, इतना लहजे में सोनी जी बोल रही है, कितना मतलब जो आवाज, जो मुंह का जो आवाज निकलता है शब्दावली जो है एकदम क्लियर, या इंग्लिश से भी हो या हिंदी से भी हो सब क्लियर, ए टू जेड क्लियर, और देख के हम बहुत प्रसन्न होते हैं, इतना खुशी दिल में होता है कि हम क्या।
1: चलिए तो बात तो बहुत हो गई आज।
0: हाँ तब आपका आइए, अब मौसम ठंडा हुआ है ना, तो ठंडे का मौसम का वो गाना कोई सुना दीजिए अपने चार से, कौन सा है, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए या नहीं तो सावन पे जो गाना होता है बारिश का।
1: हाँ, सावन तो शुरू अगले महीने में होगा
0: जो। हाँ तब यही कोई गाना जो है बारिश वाला जो है ना, है ना, वही तो कोई जो अपने तरफ से सुना दीजिए।
1: सावन सावन से जुड़ा गाना सुना दे।
0: सावन तो बाद में है ना।
1: अच्छा तो अभी बारिश से जुड़ा।
0: हाँ
1: चलिए
0: बारिश से कोई ढूंढ के अपने तरफ से सुना दीजिएगा।
1: ओके
0: बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
1: जी जी बिल्कुल
0: ओके, तो सुनाइए मैडम।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किए।
0: थैंक यू।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
5: गुड मॉर्निंग मैम।
4: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैम, सुनाता मैम।
4: जी नाम बता दीजिए।
5: कितनों करूँ?
4: हाँ वो तो गाने का नाम है, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से। आपकी आवाज़ कट रही है।
5: जी मैम, विजय रजक।
4: विजय
5: नाम हो गया, विजय रजक जी।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं विजय रजक?
5: पटना कदमकुआ
4: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
5: जी मैम, मनोज जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, राजू जी हैं, जितेंद्र जी हैं, इन सबको सुनाना है।
4: तो प्ले करेंगे
5: ना? मैम
4: जी गाना प्ले करें आपका।
5: जी मैम।
4: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माई चॉइस में कॉल किया।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 में।
1: नमस्कार भारती जी, मैं धर्मेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
0: कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: बढ़िया है जी।
0: अभी क्या हो रहा था?
1: अभी बारिश हो रही है, बैठे हैं साइड पे आके, काम नहीं हो रहा है, बैठे हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: हमके बरस जड़ बाबू के पास जाना है, यही गाना सुनवा दीजिए।
0: डेडिकेट भी करिएगा।
1: रंजीत तिवारी है, वरुण पांडे है, रेडियो रंजन श्रोता सुनेंगे सारे आदमी।
0: ओके चलिए, तो प्ले कर दिए गाना आपका।
1: ठीक है, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों के ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहाँ से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
2: हेलो बेटा, रेडियो रिमझिम गोपालगंज जी।
3: जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सोनी बेटा, प्यार से सत्कार पर सत श्री अकाल भाई।
3: सत्यकाल, क्या हाल चाल है?
2: ठीक है बेटा, तुझी दसो भाई, थोड़ी ठीक है? थोड़े मम्मी पापा सारे ठीक है भाई?
3: सब कोई ठीक है, सब एकदम
2: चंगा भाई।
3: जी चंगा
2: बेटा, मैं पहले आपका परिचय देता हूँ। परिचय देता हूँ पहले, तुम तो मुझे जानते हो,
3: फिर भी श्रोताओं को परिचय दे दीजिए।
2: हाँ बेटा, बताता हूँ।
3: जी जी,
2: मैं पिंड माउड़ खुर्द जिला बठिंडा पंजाब से दिलजीत मट्टू बोल रहा बेटा।
3: जी जी, तो आज गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
2: बेटा आज मेरे दोस्त है, मेरे मान जो बड़े भाई पंखी लाल तेजा मोड़ी हरियाणा तो, उन्होंने बेटा जन्मदिन अज वाथड़े, उन्होंने पहला अपने रिमचे सिम रेडियो गोपालगंज नू लख लख वधाइया दिना भाई, उन्होंने मट्टू फैमिली माउड़ वालों। हाँ जी, तो उन्होंने जन्मदिन से भाई कोई गीत सुना दो, आपकी मर्जी भी सुना दो, मैं बताऊ?
3: बिल्कुल बताइए।
2: हाँ बेटा, और सुना दो। हम तो अगर बच्चे होते, हम तो अगर बचे होते ना, वो हमारा तो पपलू डपलू खाने को मिलते लड्डू, ऐसी बात है सुना लो बेटा।
3: जी, और ये गाना डेडिकेट किसे रहेगा?
2: हाँ बेटा, मेरे मान जो बड़े भाई है प्रिंसिपल अमरजीत सिंह बाला साहब, तेजी हाँ जी देवेंद्र सिंह तगड़ साहब खन्ने तो जी, तेजी परमजीत सिंह बाघा पुराना जी, मलकीत सिंह घड़ीसा, सुखपाल सिंह नैशनल कॉलोनी बठिंडा, सरदार भगत सिंह ढिलों बेटा, आपको सत श्री अकाल बुला पाया बेटा।
3: तो प्ले कर दे गाना।
2: ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा, जो आ रहे हो बाबा नानक जी, क्या श्रीकाल बेटा,
3: सत श्रीकाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल।
2: थैंक यू बेटा, थैंक यू।

हम बैल बने हैं धोबी के गधे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए धना धन। बचपन अपना होता तो ना करते भेजू भेजू।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
1: जी कैसे हैं सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे, अभी इंतजार खत्म हो गया मैम, फोन शामिल हो गया तो।
1: जी
0: जी जी जी मैम, आओ वहाँ का मौसम क्या क्या हाल चाल है मैम?
1: आज तो काफी बढ़िया मौसम है, धूप हुआ है।
0: जी बारिश नहीं है क्या मैम? हमारे यहाँ तो अच्छा दबा के बारिश है मैम, हमारे यहाँ
1: कल हुई थी, हमारे यहाँ भी बारिश भयानक वाला दिन भर हुआ था।
0: जी जी जी जी मैम,
1: तो आज मौसम थोड़ा साफ हुआ है।
0: जी जी जी मैम
1: जी, तो गाना जी कौन सा याद है आज आपको?
0: जी आज एक फरमाइश है गाने के, बोल है तुम्हें देखे मेरी आँखें,
1: इसमें मेरी
0: और सुनवाएंगे। जी जी जी, और सुनवाएंगे सबसे पहले आपको, कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
0: ओके मैम, धन्यवाद
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों के ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रिमझिम 90.4 FM।
2: जी नमस्ते नमस्कार डियर सोनी सिस्टर, कैसी हैं?
3: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं?
2: मैं तो ऑलवेज मस्त बिंदास झटका रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजा सिटी एरिया से।
3: जी क्या
2: तो आज मौका मिला है तो सोचा बस सब ठीक है, ड्यूटी पे है, सोचा मौका मिला है तो थोड़ा हेलो माई चॉइस में कॉल लगाया जाए, बहुत दिन हो गया, बहुत सारे मुझे
3: बिल्कुल सही सोचे हैं।
2: जी तो सोचा क्यों ना थोड़ा हाजिरी लगा लिया जाए इसमें भी।
3: बिल्कुल बीच में हाजिरी लगाना चाहिए।
2: तो शेर शायरी तो नहीं सुना सकते, थोड़ा शेड्यूल बिजी है, मैं डायरेक्ट गाने का ही फरमाइश कर देता हूँ। मुझे कव्वाली कव्वाली सुना दीजिएगा, बहुत अच्छा कव्वाली है। तेरे चेहरे का चांद मुझे हर रात बुलाता है, लेकिन क्या करे बहुत दूर है, कैसे आए यहाँ से, फ्लाइट से आना पड़ेगा।
3: फ्लाइट आना पड़ेगा।
2: सुनवाना चाहते हैं आपके साथ ऑल लिसनर।
3: ओके
2: थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे।
3: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
1: गाना सुनना
0: जी? गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
1: रवि तिवारी, दिल्ली से।
0: क्या हाल चाल है रवि जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: सैड सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: सैड सॉन्ग हिंदी या भोजपुरी?
1: भोजपुरी में।
0: भोजपुरी में किसके आवाज में सुनिएगा?
1: किसी के आवाज में अपने पसंद से सुना दीजिएगा।
0: मेरे पसंद से, चलिए ठीक है फिर। तब बताइएगा सुन के कैसा लगा?
1: हाँ बताएंगे।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
4: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: हाँ प्रणाम
3: जी। प्रणाम, नाम बता दीजिए अपना।
4: रंकेश।
3: कैसे हैं रंकेश जी?
4: ठीक है।
3: चलिए
4: गाना सुने के बाद।
3: जी जी बिल्कुल सुनाए गाना। कौन गाना सुने के बाद?
4: रक्षाबंधन के।
3: रक्षाबंधन तो अगले महीने है ना?
4: हाँ अगले महीने का।
3: जी तो रक्षाबंधन के कौन गाना है, कौन गाना याद हो के तो बता दी।
4: हिंदी गाना है, कौन है रक्षाबंधन के? हिंदी गाना।
3: हिंदी गाना, चलिए ठीक बात। और गाना डेडिकेट भी रहिए।
4: हाँ,
3: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
0: मनीष राजा फाइनल क्वेश्चन व्यवस्था
1: जी। कैसे हैं मनीष जी?
0: ठीक है अपन बताए।
1: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
0: क्या हो रहा है?
1: बस आप लोगों से बातें हो रही है।
0: गाना सुनना है, सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल सुना देंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: सोना के कदर सुन रहे जाने तोहरा के का मालूम।
1: एक बार और बताइए।
0: सोना के कदर सुन रहे जाने तोहरा के का मालूम।
1: सोना के कदर सुन रहे जाने
0: जी।
1: और डेडिकेट भी रहेगा।
0: सबसे पहले आपको पूरा रेडियो सुनने वाले।
1: ओके, चलिए प्ले कर रहे हैं गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहाँ से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: जी नमस्कार मैडम।
4: जी नमस्कार,
5: मैं बिहार से ललन पासवान ग्राम डुमरामा से बोल रहा हूँ।
4: जी कैसे हैं ललन जी?
5: बस बढ़िया है जी, आप मत सुनाइए।
4: हम भी बढ़िया है।
5: मौसम कैसा वहाँ का गोपालगंज?
4: आज तो मौसम ठंडा हुआ है लेकिन गर्मी है,
5: बारिश हुआ है, गर्मी मना हुआ है।
4: बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन बदली बदली है पूरा, क्या उमस जैसा होता है ना वैसे हुआ है। तो गाना कौन सा? जी जी बिल्कुल बता दीजिए नाम गाने।
5: बॉर्डर टू फिल्म में गाना सुनना था, संदेश से आते हैं
4: और डेडिकेट भी करिएगा
5: सबसे पहले साहब को और बाकी जितने भी रेडियो सुनने वाले श्रोता करने सभी भाइयों को और मैं और मेरे समस्त परिवार सुनना चाहते हैं।
4: ओके तो प्ले करेगा ना?
5: जी मैडम।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय चॉइस में कॉल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों के ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहाँ से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
2: नमस्कार जी।
3: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैं अजय प्रसाद बोल रहा हूँ दिल्ली से।
3: जी कैसे हैं अजय जी?
2: जी बढ़िया है। गाना सुनना था हमें।
3: सुनवाएंगे
2: धनिया हो का? मोर धनिया हो काय रुसल बाड़ी, भोजपुरी गाना है।
3: मोर धनिया हो ये
2: जी जी
3: किसका है? समर सिंह वाला।
2: जी कोई सा ही बजा दीजिएगा।
3: अच्छा कोई सा भी
2: जी।
3: और डेडिकेशन करिएगा।
2: जी लड्डू साहब हैं, इंतजार जी हैं, ब्याज जी हैं, दीपक जी हैं, शंकर जी हैं और सारे हमारे रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को।
3: चलिए गाना प्ले कर रहे हैं
2: जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय कॉल किया।

0: डॉन बात चलो।
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
1: जी शुक्रिया।
2: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, अब तो बारिश भी होने लग रहा है।
2: हमारे यहाँ तो काफी उमस है अभी।
1: हाँ जी, चार दिन से लगातार बारिश हो रहा है, घर से निकलना नहीं हुआ।
2: चलिए कम से कम मौसम ठंडा तो हो गया है।
1: जी जी जी जी,
2: तो गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: फिल्म नमक हलाल से सुनवा देंगे, आज रपट जाए तो हमें ना।
2: जी जी, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: श्रीपाल गोयल जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, रोशन देवांगन जी हैं, और तमाम साथ
2: ये तो प्ले करे गाना।
1: जी जी धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लंबाई चॉइस में कॉल की।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone bajte hai to kehte hai hello, hello.
5: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
6: अस्सलामुअलैकुम, मैं मुन्ना दिल्ली से।
5: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: वो गाना सुने?
5: जी बिल्कुल सुना देंगे गाना।
6: और कोई अपना पसंद के वो सुना दे?
5: किकरा आवाज में सुने मैं बताई?
6: पवन सिंह के होके ना, जो खेसारी के होते। हम धनेश मिश्रा भी है साथ में, ये भी सुन के
5: धनेश मिश्रा से पूछ रहे की कैसा गाना सुनल जला रेडियो पे एक बार। ठीक बा,
6: ठीक है।
5: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें कॉल करी।
6: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगसिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
0: मनीषा कुमारी करें आप सुंदर से।
1: जी कैसी हैं मनीषा जी?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी है?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: और सब?
1: सब बढ़िया है। आप लोगों से बातें हो रही है अभी। खाना वाना हुआ आपका?
0: हाँ हो गया। आपका?
1: मेरा भी हो गया है। तो गाना कौन सा सुना दे आज मनीषा जी आपको?
0: मैम एक दिन और आप कॉल ली थी तो गाना नहीं बजा।
1: हाँ तो नहीं चला है, कुछ कॉल बचे हुए हैं, 2-3 कॉल है मेरे पास, दो क्या आज चल जाएंगे। ठीक है जी।
0: तो आज दिन अपने पसंद को फरमा दी थी, आपको पसंद के बोला था फरमाने के लिए, तो अपने पसंद से फरमा दिया, जब अपने पसंद से सुनवा दीजिए।
1: अच्छा तो आज हम आप मेरे पसंद से सुनिएगा।
0: हाँ
1: ओके। तो एक हेल्प करिए कि आपको कब का गाना सुनना है, ओल्ड इज गोल्ड चाहिए, मिडिल सॉन्ग चाहिए 90s का या फिर नया में?
0: हिंदी सुना दीजिए, पुराना।
1: हिंदी पुराना?
0: हाँ।
1: 90s का?
0: जी मैम।
1: ओके चलिए फिर ठीक है। और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: जी मैम, आपको और दिव्या मैम को और धरती मैम को और अपनी दीदी को और रिंचिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजी को।
1: ओके चलिए तो प्ले करेगा ना?
0: जी मैम।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल की।
0: जी मैम, थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello. Your phone.
2: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के हेलो माई चॉइस से विदा लेने का। आपकी फरमाइशों और प्यार ने इस महफिल को और भी खास बना दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए मुझे यानी आरजे सोनी को जाने की इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, लेकर आएंगे आपकी पसंद के और भी खूबसूरत गीत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजोले बड़े है भगवान।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: राधा, ओ राधा।
1: क्या है? मैं नहीं बोलती।
0: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
1: जा, मैं नहीं सुनती।

सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: मुस्तफापुर वैशाली
1: 9162154619।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल